सुप्रभात। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 11 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं, हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ. एम. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन शिष्टाचार। वाचन स्वर अनिल भारती।
3: शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का आभूषण है। जिसके व्यवहार में शिष्टाचार और विनम्रता है, उसका सर्वत्र आदर होता है। शिष्टाचार का मूल मंत्र है अपनी नम्रता और दूसरों का सम्मान। पाश्चात्य जगत के महान कवि एडिसन ने कहा है कि विनम्रता तो शरीर की आत्मा का अलंकार है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, विनम्रता तो आध्यात्मिक शक्ति है। वास्तविक नम्रता और शिष्टता सात्विकता के तेज से उज्ज्वल होती है। विनम्रता और शिष्टाचार अंतःकरण की अभिव्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति अशिष्ट होता है, असभ्य होता है, वो कभी संवेदनशील नहीं हो सकता। ईसा मसीह कहते थे कि अपने शत्रु से भी प्रेम भाव रखो, शत्रुओं को बार बार क्षमा कर दो। किसी ने कहा है, स्वार्थी लोग यदि आपसे अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करें तो उनकी उपेक्षा कर दीजिए, किंतु जैसे के साथ तैसा करने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे आप अपने शत्रु को दुखी करने की बजाय स्वयं को दुखी कर लेंगे। वास्तव में हमारे व्यवहार की शिष्टता, शालीनता पर जीवन के विकास क्रम का, उन्नति अवनति का, प्रसन्नता खिन्नता, मान अपमान का बहुत कुछ आधार निर्भर करता है। असभ्य व्यवहार से वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे आचरण करने वालों को बदले में उपेक्षा, असहयोग और अपमान जैसी कटुता ही हाथ लगती है। हर परिस्थिति में ये घाटे का सौदा होता है। क्रोध, आवेश और असभ्य आचरण सबसे पहले स्वयं को क्षति पहुंचाता है, साथ ही दूसरों के स्वाभिमान को कुचलकर विद्रोह और बैर भाव का एक नया संकट खड़ा कर देता है। हम सभी घटनाचक्र और परिस्थितियों की उपज हैं और वातावरण, संस्कार, शिक्षा और स्वभाव के कायल हैं। ये सही है कि हमें अपने शत्रु से घृणा न कर उस पर दया करनी चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें उसके जैसा नहीं बनाया। अपने शत्रु की निंदा करने और उसके प्रति विरोध और प्रतिशोध की भावना रखने की बजाय हमें चाहिए कि हम उसके प्रति क्षमा, सहानुभूति और सहयोग की भावना रखें और उसके प्रति उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विषय में सोच विचार के लिए एक भी पल नष्ट न कीजिए। ये गुण हमारे व्यक्तित्व के आभूषण हैं और हमें इन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। मनीषियों और विद्वानों का मानना है कि व्यवहार सदैव विनम्र और शालीन होना चाहिए। सभी के साथ मधुरता, सादगी और सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जो स्वयं पसंद नहीं है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करे, जैसा कि आप अपने लिए औरों से अपेक्षा करते हैं। इसी सत्य को शिष्टाचार, सभ्यता और नागरिकता के नाम से जाना जाता है। ये मानव का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य और उसकी अनमोल

0: आपदा है, जिसमें यह भावना जितनी अधिक होगी वो उतना ही शिष्ट, शालीन और सभ्य माना जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, वाचन स्वर अनिल भारती, FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आइए इस मातृवंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, इस मातृवंदना के बाद आइए नमन करते हैं प्रातः स्मरणीय प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश को।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, आइए एक और भक्ति रचना का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 6:40 होने को हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

फिल्म संगीत के अंतर्गत चित्ररागणी सुनिएगा प्रातः 7:10 पर। प्रातः 7:30 पर श्रोता सुनेंगे शैल संगीत के कार्यक्रम में चंद्रकला जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। प्रातः 9:00 श्रोता सुन सकेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। प्रातः 9:30 पर सुनेगा रूपक आवाज जो देश बदलती है। वाचन स्वर सुषमा जोशी अनुराग वर्मा। आलेख एवं प्रस्तुति रमेश चंद्रा। यादें रेडियो की आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में ये विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 10:02 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्धवाल से रमेश चंद्रा की बातचीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 10:35 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी के श्रोताओं ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:00। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा आयुषी चौहान की भजन गायकी। बहनों का कार्यक्रम घर गृहस्थी प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर 2:30 पर सुनेगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत। 3:02 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने नए तराने। और साय 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनेगा गौरी पठारे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग गॉड मल्हार।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम एक कलाकार आप सुन सकेंगे सायं 4:30 पर आज की कलाकार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। सायं 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत प्रसारित होगा सायं 5:45 पर। कृषि जगत किसान साथी अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:00। शाम 7:50 पर प्रसारित होगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। रात्रि 8:00 सुनेगा हिंदी वार्ता, साहित्य के अनूठे चितेरे विष्णु नागर, वार्ताकार होंगी डॉक्टर ममता सिंह। रात्रि 8:10 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सरकार के 12 साल।

स्पॉटलाइट कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:15 पर रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम शेरी नशिस्त। आपकी फरमाइश ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात्रि 10:30 पर।

0: सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और

फिल्म संगीत के अंतर्गत चित्ररागनी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा, एस डी बर्मन का संगीत बद किया फिल्म गाइड से लता की आवाज में एक और चित्ररागनी।

0: चित्ररागनी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन्य जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता और राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनका संकलन करेंगे। प्रदेश के सभी 11,733 BLO के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। साथ ही प्राप्त फॉर्मों को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी किया जाएगा। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से BLO को सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक अ कॉल विद BLO सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। अभियान में वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ITBP, SDRF और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। 30 सदस्यीय कोर टीम सहित पोर्टरों के साथ कुल 85 सदस्य इस अभियान का हिस्सा हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कल अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता, हिमालयी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नंदा देवी क्षेत्र विश्व की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी धरोहरों में से एक है और इसके वैज्ञानिक अध्ययन से पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के आकलन के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाया जाता है। इस दौरान विशेषज्ञ वन्य जीवों, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कर आवश्यक आंकड़े एकत्र करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं तथा कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है।
2: हमारी टीमें तैनात है, कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। और जो डेंजर जोन है वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर्स भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है।
1: प्रशासन ने यात्रियों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड में हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध खैरालिंग मेला पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। 2 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ज्योतिर्मठ उप जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा भर्ती मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को बाहर की दवाइयां न लिखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को अनावश्यक रूप से अन्य अस्पतालों के लिए रेफर न किया जाए और यथासंभव उपचार स्थान स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। श्री उनियाल ने ज्योतिर्मठ उप जिला चिकित्सालय में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, शौचालयों की नियमित सफाई, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता तथा मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सर्व सेफ फूड परियोजना का विस्तार किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और एक निजी कंपनी के संयुक्त सहयोग से संचालित इस पहल के तहत राज्य के 8 जिलों में 1,500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और व्यावसायिक कौशल से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विक्रेताओं के व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सर्व सेफ फूड परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। तब से ये कार्यक्रम देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा चुका है और इसके माध्यम से 1,20,000 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पौड़ी गढ़वाल जिला मुख्यालय में 11 जून को विशेष आधार नामांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनका आधार कार्ड किसी कारणवश अब तक नहीं बन पाया है। जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग के संयुक्त रूप से शिविर आयोजित कर रहा है। शिविर में आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के आवेदकों को मतदाता पहचान पत्र, ऑनलाइन CRS पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र, फोटो व बारकोड, QR कोड युक्त ऑनलाइन स्थायी निवास प्रमाण पत्र व मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। NTA के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जुडिशियम 2.0 सम्मेलन से जुड़ी खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, त्वरित न्याय के लिए सरकार तत्पर। वहीं SIR को लेकर दैनिक जागरण लिखता है, आज से SIR शुरू, BLO घर घर बांटेंगे गणना फॉर्म। नीट UG 2026 को लेकर प्रकाशित खबर में अमर उजाला लिखता है, दोबारा परीक्षा के लिए 551 शहरों की सूची जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन्य जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता, और राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, शैल संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चंद्रकला जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, शैल संगीत के कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं चंद्रकला जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: श्रोताओं, शैल संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद्रकला जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सवेरे के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
7: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
9: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
8: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
10: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
8: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
11: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
12: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द है, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत

जरूर मुकरे होंगे लोग अपनी जबान देखकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं होती। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, देहरादून। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का आज के अंक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं, आपकी दोस्त और कार्यक्रम की होस्ट भारती। श्रोताओं, आज का दिन यानी 8 जून का दिन भारतीय प्रसारण इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन यानी 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, जिसे हम बाद में आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी का ये सफर कितना हसीन, कितना खास रहा है, क्योंकि इस सफर ने हमें जोड़ा है, पीढ़ियों को जोड़ा है, सूचनाओं को घर घर पहुंचाया है और मनोरंजन के साथ साथ समाज को जागरूक भी किया। जरा उस दौर को सोचिए जब न मोबाइल थे, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया। तब लोगों की सुबह रेडियो की मधुर धुनों से होती थी और शाम समाचारों के साथ बीतती थी। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक एक छोटी सी रेडियो मशीन लाखों दिलों की धड़कने बन गई। भाई, रेडियो ने न सिर्फ खबरें सुनाई बल्कि देश की संस्कृति, लोक परंपरा, संगीत, साहित्य और जनभावनाओं को भी एक मंच दिया। दौर कोई सा भी रहा हो, तब के दौर से लेकर आज के डिजिटल युग तक, रेडियो ने हर बदलते दौर के साथ खुद को ढाला और इसकी जो आत्मीयता है वो आज भी वैसे ही बनी हुई है। क्योंकि आकाशवाणी का जो ये सफर है ना, जिसे हम 90 सालों का सफर कहते हैं, ये 90 सालों का सफर हमें बताता है कि तकनीकी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, आवाज़ के रिश्ते की गर्माहट कभी कम नहीं होती। एक अनदेखी आवाज़ जब दिल से निकल तक श्रोताओं तक पहुँचती है तो वो केवल प्रसारण नहीं बल्कि भावनाओं का सेतु बन जाती है। विश्वास और विश्वसनीयता और जनसेवा की इसी परंपरा को बढ़ाते हुए आकाशवाणी आज भी करोड़ों श्रोताओं की पसंद बनी है। श्रोताओं, आज का ये दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। रेडियो के सुनहरे अतीत को आइए सलाम करते हैं। हम वर्तमान में भी उसी के साथ चल रहे हैं, वर्तमान का उत्सव मनाते हैं और भविष्य की नई उड़ानों का स्वागत करते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने मूल मंत्र के साथ आकाशवाणी यूं ही जन जन की आवाज बनी रही।

0: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल।
1: मनोरंजन और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है। और श्रोताओं, आइए अब आपको शहर देहरादून और उत्तराखंड से जुड़ी खबरें सुनाते हैं अखबार के पन्नों की सुर्खियों से, और देखते हैं क्या खास है आज अखबार के पन्नों में शहर उत्तराखंड और देहरादून से। आज से SIR शुरू, BLO घर घर बांटेंगे गणना फॉर्म। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पित्तोवाला में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाला दबंग दारोगा निलंबित। मसूरी में अब सामान्य दिनों में भी लग रहा जाम, पार्किंग का बना संकट। खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, अचार और पनीर के नमूने लिए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जांच में रवाना हुआ विशेषज्ञ दल। 25,000 सालाना कमाने वाली महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ग्राम्य विकास विभाग ने सभी जिलों में ऐसी महिलाओं का मांगा है ब्यौरा। राजौरी, सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी बलिदान हुए।

लंबित मांगों के लिए आयुर्वेद डॉक्टरों का आज से आंदोलन। मौसम की बात करें श्रोताओं, तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। इसी बीच पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। श्रोताओं, ये थे आज अखबार के पन्नों की सुर्खियां, और अब वक्त है जानने का कि आज का दिन यानी कि 8 जून का दिन इतिहास के पन्नों पर क्यों है खास। आज ही के दिन 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1658 में अगर देखें तो औरंगजेब ने आगरा के किले पर शाहजहां को कैद किया। वहीं 1824 में नोह कुशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया, और 1929 में ब्रिटेन में पहली बार किसी महिला की मंत्रिमंडल में आज ही के दिन नियुक्ति हुई। आज ही के दिन 1936 में भारत के सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया। और आज ही के दिन 1948 में देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। 1949 में आज ही के दिन स्याम का नाम बदलकर थाईलैंड किया गया। और आज ही के दिन 1984 में ऑस्ट्रेलियाई न्यू साउथ वेल्स प्रांत में समलैंगिकता को कानूनन घोषित किया गया। आज ही के दिन 1986 में पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वाल्डहेम ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुने गए। और 1996 में ब्रिटेन में 10वीं यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई। साथ ही 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नज़ारा फिर देखा गया। तो श्रोताओं, ये थे इतिहास के पन्नों पे आज के दिन जो तिथियां घटित हुई, जो दिन विशेष रहा उस दिन की जानकारी। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं, मनोरंजन की ओर सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: अभिजीत भट्टाचार्य और अनुसरा मनी की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना और फिल्म थी चेन्नई एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियंस डे। हर साल मनाया जाता है 8 जून को, और इस दिन को मनाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। आप सभी जानते हैं कि महासागर पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को ढकते हैं, जलवायु को संतुलित करते हैं और करोड़ों लोगों को भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं। साथ ही जैव विविधता का विशाल भंडार है महासागर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी के बीच में महासागरों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़े। विशेषकर हम जो समुद्री प्रदूषण की बात करते हैं उसमें प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, समुद्री जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं और जलवायु परिवर्तन और महासागरों के बीच का जो संबंध है उसे समझ सकते हैं। वाकई श्रोताओं, इस दिवस की जो पहला विचार आया 1922 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, और बाद में यूनाइटेड नेशन ने 2008 में इसे आधिकारिक मान्यता दी और 2009 से 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाने लगा। और वाकई श्रोताओं, जिस तरह नदियां जीवन की धारा है, उसी तरह महासागर पृथ्वी की उड़ान है। विश्व महासागर दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि अपने जल स्रोतों और समुद्री पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे।
1: जरा ठहर

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अभिनय के साथ साथ फिटनेस को लेकर भी एक नई पहचान बनाई है। योग और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, प्रतिभा और बहुमुखी व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को मैंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था और मॉडलिंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बाजीगर इनकी पहली फिल्म थी, इस फिल्म से इनका डेब्यू हुआ बॉलीवुड में। इनके साथ शाहरुख खान और काजोल थी और पहली ही फिल्म में उन्होंने दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान खींच लिया। उसके बाद मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, धड़कन, रिश्ते, फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने की और अपनी अभिनय का लोहा मनवाया। विशेष रूप से धड़कन फिल्म में उनका जो किरदार था उसे दर्शकों ने खूब सराहा। और आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और अभिनय के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि फिटनेस को लेकर वो हमारी रोल मॉडल भी रही हैं। 2007 में ब्रिटेन के एक लोकप्रिय रियलिटी शो की विजेता बनकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया और आज भी आप उन्हें टेलीविजन पर जज, प्रस्तोता और उद्यमी के रूप में देख सकते हैं। लगभग 3 दशकों का जो सफर रहा शिल्पा शेट्टी का, उन्होंने साबित किया कि मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की जो इच्छा है वो किसी भी कलाकार को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रख सकती है। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप सभी को सुनाते हैं शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया ये मधुर गीत, फिल्म है धड़कन।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आपको कैसा लगता है? कार्यक्रम संबंधी सुझाव आप हमें भेज सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून, पिन है 248001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं namaskardehradun@gmail.com पर, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। साथ ही आप हमें 7088000731 पर कार्यक्रम संबंधी सुझाव व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 7088000731। श्रोताओं, आपके सुझाव हम आपका पत्र मिला कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी दोस्त भारती को दें अनुमति। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुनते रहें आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, फैशन बदलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी पुरानी नहीं पड़ती। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी हाँ श्रोताओं, कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं पड़ती, जैसे दादी की कहानियाँ, माँ के हाथ का स्वाद, आकाशवाणी और आकाशवाणी से प्रसारित हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म का नाम है दीवाना।

दीवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू की आवाज़ में। शब्द रचना समीर की और संगीत बद किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, नदीम श्रवण हिंदी फिल्म संगीत की सबसे लोकप्रिय संगीतकार जोड़ियों में से एक थी। इनमें एक का नाम था नदीम अख्तर सैफी और श्रवण राठौर। 1970 के दशक में ये जोड़ी साथ आई थी और 1990 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती दौर तक बॉलीवुड के संगीत पर ये छाई रही, या यूं कहें कि इस जोड़ी ने धूम मचा दी। साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, परदेस, धड़कन और राज जैसी फिल्मों में इन्होंने यादगार संगीत दिया। वाकई श्रोताओं, ये वो गीत हैं, वो नगमे हैं जो बीते कल की याद हैं तो आज की मुस्कान भी है। कभी ये दिल को गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं तो कभी अनजान में ही कदम धड़कने लगते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के युगलसर में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम राजकुमार। श्रोताओं, आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। जी हाँ, यादों की वो सुरीली पगडंडी जहाँ पर हर मोड़ पर एक खूबसूरत धुन आपका इंतज़ार कर रही है। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक अल्पविराम के बाद।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा।

जी भावनाओं की गहरी नदी, एक आवाज की विविधता से संगीत को समृद्ध करते तो दूसरे दिल की सच्चाई से गीतों को अमर बना देते। आज भी इनके गीत बजते हैं ना, तो लगता है कि संगीत का वो स्वर्णिम दौर फिर से हमारे बीच लौट आया है। एक ऐसा ही गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है दो जासूस और आवाजें मोहम्मद रफी और मुकेश की।

लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो।

0: जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। और बात करते हैं गीतकार शैलेंद्र की। ऐसे गीत लिखे उन्होंने कि बहुत सारे गायकों ने उन गीतों से अपनी पहचान बनाई। और उनके लिखे गीतों में सबसे अधिक स्वर देने की यदि हम बात करते हैं तो मुकेश का नाम सबसे पहले आता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि शैलेंद्र और राज कपूर की जोड़ी बेहद सफल थी और राज कपूर के लिए अधिकांश गीत मुकेश ही गाया करते थे। और इसीलिए शैलेंद्र के कई अमर गीत मुकेश की आवाज़ में ही लोकप्रिय हुए। हालांकि मोहम्मद रफ़ी, लता जी और मन्ना डे, किशोर कुमार, आशा भोसले ने भी बहुत खूबसूरती से गीत को गाया, लेकिन शैलेंद्र के शब्दों में जीवन की सादगी और गहराई थी और उन शब्दों को मुकेश की दर्द भरी आवाज़ मिली तो हिंदी फिल्म गीतों को बहुत से ऐसे नगमे मिले जो आज भी हर दिल की धड़कन बने हुए हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत फिल्म संगम से आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र की शब्द रचना और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, कहते हैं ना कि अच्छे गीतों की उम्र नहीं होती, वो समय के साथ कैलेंडर से नहीं बल्कि दिलों की धड़कन से अपना सफ़र तय करते हैं। और आज के इस खास सफ़र में हमने यादों की वही पुरानी संदूकशी खोली जिसमें हिंदी फिल्मों के सदाबहार नगमे थे। और यदि आप इस वक्त चाय की चुस्कियाँ ले रहे हों या अपने सफ़र पर निकल गए हों, तो आइए एक और खूबसूरत सदाबहार गीत के साथ आपके इस पल को खास बनाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल सुर में ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म है प्रेम कहानी, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्रेम कहानी के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का आज के सफर यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रूपक, आवाज जो देश बदलती है। वाचन स्वर सुषमा जोशी, अनुराग वर्मा, आलेख एवं प्रस्तुति रमेश चंद्रा।
1: प्रस्तुत है रूपक, आवाज जो देश बदलती है।

0: जन जन की वाणी आकाशवाणी, देश के कोने कोने तक पहुंचती वाणी, शहर से लेकर गांव तक, पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक, मैदान से लेकर समुद्र तक पहुंचती वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: अजी सुनते हो, ये क्या सुबह रोज रोज उठते ही रेडियो चालू कर देते हो? आजकल कौन सुनता है रेडियो?
0: अरे भाग्यवान, रेडियो नहीं, ये आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी? हाँ वही, जिसके चलते आपकी चाय ठंडी और मेरी बातें अधूरी रह जाती हैं।
0: लेकिन इसकी बातें कभी अधूरी नहीं होती। कभी देश की खबर, कभी संगीत, कभी किसानों का साथी, कभी जवानों का हौसला,
1: और कभी कभी तो मुझे आपकी दूसरी पत्नी भी लगती है।
0: नहीं भाई, तुम तो हो इस घर की रानी और आकाशवाणी है दिल की कहानी।
1: अच्छा ये बताइए, ऐसी क्या खास बात है इस आकाशवाणी में?
0: आज इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं। सोचो कितनी पीढ़ियां इसकी आवाज सुनते हुए बड़ी हुई। जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब घर घर में एक ही मेहमान आता था, रेडियो यानी आकाशवाणी।
1: मतलब आपकी तरह बिना बुलाए?
0: अरे उस जमाने में लोग रेडियो पर अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार किया करते थे।
1: अरे वाह, और आजकल देखो ना, लोग खाने के टेबल पर भी मोबाइल में लगे रहते हैं।
0: इसीलिए तो कहता हूँ, रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं है और आकाशवाणी तो रिश्तों की आवाज है। आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि देश को जोड़ा भी है। जानती हो, किसानों, छात्रों, महिलाओं और सैनिकों के लिए उनके सबके पसंदीदा खास कार्यक्रम।
1: अच्छा, तो आकाशवाणी सबकी सुनती भी है और सबको सुनाती भी है।
0: बिल्कुल, और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है।
1: तो बताओ ना इसकी खूबियां, पर देखो उबाऊ लेक्चर मत देना वरना मुझे नींद आ जाएगी, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ।
0: लेक्चर नहीं पगली, किससे सुनाऊंगा। मैंने इसके लिए बहुत सारे लोगों से बात की है और उनकी रिकॉर्डिंग भी की है।
1: अच्छा, तो सुनाओ ना।
0: सीमा पर हम सब की रक्षा कर रहे सैनिकों के मनोरंजन के साथ उनका उत्साह बनाए रखने के लिए आकाशवाणी की भूमिका पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव।
2: आकाशवाणी का सैनिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब एक सैनिक पहाड़ों पर, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, तब वो सैनिक आकाशवाणी के साथ जुड़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो देश के साथ जुड़ा है। आकाशवाणी उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसको प्रेरणा देता है, उसको शक्ति देता है, ताकि वो अपने आप से जुड़ा रहे, और ये जुड़ाव ही उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत करता है। तभी वो अकेले में भी आकाशवाणी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता है। ये कभी अपनों की याद नहीं आने देता। तो आकाशवाणी का सैनिक के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जो उसके अकेलेपन को भर देता है, जो उसको करुणा और प्रेम के भाव से ओतप्रोत कर देता है। आकाशवाणी एक माध्यम है देश को जोड़ने का, अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का। सैनिक भी इस आकाशवाणी से जुड़े हैं और आकाशवाणी सैनिकों के मनोबल में बहुत बड़ा योगदान देती है।
1: हाँ, आकाशवाणी सैनिकों के लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं, उनके परिवारों के साथ, हम सबके साथ भावनात्मक जुड़ाव का सेतु भी है।
0: एक समय था जब गांव, दूर दराज के इलाकों और छोटे कस्बों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और जानकारियां आसानी से नहीं पहुंच पाती थी।
1: कितना मुश्किल हो जाता होगा ना ऐसे हालात में।
0: हाँ, और ऐसे हालात में कैसे आकाशवाणी मुसीबत का साथी बना? पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय।
3: भारत जैसे विशाल देश में जहाँ भाषाएं बदलती हैं और रास्ते दुर्गम हो जाते हैं, वहाँ आकाशवाणी की आवाज हर घर, हर खेत और हर जगह तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आकाशवाणी का योगदान अतुलनीय है। आपको याद होगा, एक दौर था जब पोलियो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था। दो बूंद जिंदगी का नारा आकाशवाणी के माध्यम से देश के जन जन तक पहुँचा। नतीजा यह हुआ, आज हमारा भारत पोलियो मुक्त है। इतना ही नहीं, दूर दराज के गांव में जहां आज भी अंधविश्वास या जानकारी का अभाव है, वहां आकाशवाणी एक सच्चे डॉक्टर दोस्त की भूमिका निभाता है। मैं समय समय पर आकाशवाणी में अपने कार्यक्रम देता रहा हूं और मेरा अनुभव है कि इससे न केवल अच्छा समाज बन रहा है बल्कि एक स्वस्थ समाज भी बन रहा है। स्वस्थ भारत जैसे कार्यक्रमों के जरिए डॉक्टरों को सीधे स्टूडियो में लाया जाता है, लोग फोन करके सीधे विशेषज्ञों से अपनी बीमारियों पर बात करते हैं और मैं भी इस तरह के कई प्रोग्राम आज तक दे चुका हूँ। आकाशवाणी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर बात करता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में अवसाद और मानसिक तनाव से जूझ रहे युवाओं को रेडियो के माध्यम से सही सलाह दी जाती है। मैं सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आकाशवाणी से कर चुका हूँ और हजारों लाखों लोगों को रेडियो के माध्यम से जागरूक कर चुका हूँ। कुल मिलाकर आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि देश का एक ऐसा स्वास्थ्य रक्षक है जो मुफ्त में हर भाषा में हर वक्त हमारी सेवा में तत्पर है। जब तक रेडियो की यह आवाज गूंजती रहेगी हमारा देश जागरूक और स्वस्थ बनता रहेगा।
1: सच में स्वास्थ्य केवल इलाज नहीं समय पर जानकारी भी है। सच ही है अच्छी सेहत की शुरुआत एक सही जानकारी से ही होती है।
0: देखो हमारे तन की सेहत के अलावा हमारे मन की सेहत के लिए जरूरी संगीत और लोक संगीत को भी आम जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने और तमाम लोक कलाकारों को स्थापित और प्रतिष्ठित किया। भारत की पहली संगीत संयोजिका पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बड़थवाल।
4: आकाशवाणी से लोक संस्कृति संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते थे और लोक संगीत उसमें विशेष है। इसमें जो है आकाशवाणी नजीबाबाद से तो शैल संगीत, ग्राम जगत, फरमाइशी कार्यक्रम, गिरिगुंजन जैसे कार्यक्रम होते थे और वो भी रिकॉर्डिंग के लिए भी हम बहुत सुदूर इलाकों में जाते थे जहाँ से कलाकार जो अच्छे समृद्ध अपनी शैली में है वो लोग यहाँ आने में थोड़ा सा उनको असुविधा होती थी, आने जाने का साधन नहीं होता था, तो उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए भी हम लोग बहुत सुदूर इलाकों में जाते थे और फिर जो है लोक संगीत की सभाएं भी हम लोग करते थे विधिवत बहुत सुदूर इलाकों में भी, और जहां पर भी हमको निमंत्रण मिलता था हम जाते थे वहां पर और बहुत सारी हमने कार्यशालाएं करी हैं लोक संगीत की। और इसके अलावा धारावाहिक भी हमारे यहाँ से प्रसारित होते थे लोक संगीत के और उसमें विशेष रूप से सृजनात्मक प्रसारण धरोहर बहुत जिसकी अहम भूमिका है लोक संगीत को संरक्षण करने में।
1: लोक संगीत के संरक्षण के साथ साथ सुना है आकाशवाणी ने साहित्यकारों को भी मंच दिया।
0: बिल्कुल सही सुना है और इसके साथ भाषाई शुद्धता भी सिखाई। लेखक और साहित्यकार पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी।
5: आकाशवाणी में साहित्यकारों के लिए एक अच्छा मंच भी दिया और अच्छे श्रोता पाठक इकट्ठे किए। अगर आकाशवाणी ना होता तो जो साहित्यकारों की वाणी है और साहित्यकारों का लेखन है वो लोगों तक कैसे पहुंचता? आकाशवाणी ने पहुंचाया उसको, घर घर, दरवाजे दरवाजे, हर कमरे में आकाशवाणी बज रहा है। जो सर्व भाषा सम्मेलन है उसने तो एक तरह की नई रामलीला बना दी आकाशवाणी में। मैंने सब कवियों को इकट्ठा करके आप उनसे बुलवाते थे तो एक नई रामलीला हो जाती थी। तो एक बहुत बड़ा योगदान है आकाशवाणी का भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए। नए श्रोता भी पैदा किए, नए लेखक भी पैदा किए, नए विवेकवान लोग पैदा किए हैं आकाशवाणी ने। आकाशवाणी का मैं तो इसलिए कृतज्ञ हूँ, आकाशवाणी में लोगों को शुद्ध बोलना सिखाया, उच्चारण कैसे हो हिंदी के शब्दों का और कैसे शब्दों को व्युत्पत्ति को पहचानना चाहिए, ये आकाशवाणी ने हमको सिखाया। और आकाशवाणी ने लोक भाषा के शब्दों को भी हिंदी का हिस्सा बनाया। तो आकाशवाणी का तो बहुत सारा रोल हमारे जीवन में रहा है। हिंदी भाषा माध्यम से नहीं पनपती, हिंदी भाषा लेखकों के विचार से पनपती है। तो लेखकों के विचारों में जो माध्यम परिवर्तन न पैदा करे वो बलशाली माध्यम नहीं है। आकाशवाणी एक बलशाली माध्यम के रूप में हमारे समाज में आया। आकाशवाणी में हमारे उच्चारण को, हमारे शब्द और शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ संरचना, इन सब से आकाशवाणी ने हमको परिचित कराया। तो आकाशवाणी का बहुत सारा भूमिका है, आकाशवाणी आज भी हमारे लिए महत्व का है।
1: बिल्कुल, तुम्हें नहीं लगता कि भाषा की शुद्धता तन मन की सेहत के साथ साथ हम सबको पालने वाली इस धरती, इस पर्यावरण की शुद्धता और इसके संरक्षण की भी जरूरत है?
0: भाई आज के समय में तो सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है। पर्यावरणविद पद्मश्री कल्याण सिंह रावत।
6: पर्यावरण के क्षेत्र में आकाशवाणी ने बहुत सारे समस्याओं को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके समाधान के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके समाधान किया गया। हिमालय और नदियों और जंगलों की आवाज को योजनाकारों तक पहुंचाया है और भारत सरकार की जो योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो काम किया गया वो बहुत ही प्रशंसनीय है।
1: ऐसा है क्या?
0: आकाशवाणी ने किसानों के मित्र और मार्गदर्शक की तरह खेतीबाड़ी से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुत किया है कृषि वैज्ञानिक और उत्तराखंड रत्न डॉक्टर लक्ष्मीकांत।
7: आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ की अभी भी 50% आबादी खेती पर निर्भर करती है। साथ ही कृषि जो है एक बहुत ही जटिल व्यवसाय है जिसमें किसानों को मौसम की मार, कीड़े, रोग, उन्नत बीजों, उर्वरकों, खाद, बाजार भाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी के समाधान में आकाशवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम चाहे वो ग्राम जगत हो या कृषि जगत हो या कृषि संबंधी जैसे कार्यक्रम जो कि किसानों तक वैज्ञानिक और व्यावहारिक जानकारी को उन्हीं की स्थानीय भाषा में पहुंचाते हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण अवयव जो है जैसे मौसम का पूर्वानुमान, फसल की सुरक्षा, पशुपालन, बागवानी तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी नियमित रूप से प्रसारित की जाती है। इससे किसान को सही समय पर सही निर्णय लेने में बड़ी मदद मिलती है और वो उत्पादन को बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है। विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों के साक्षात्कार, जो कृषि विज्ञान संवाद तथा सफल किसानों के अनुभव भी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं जिससे किसान नई तकनीकों को अपनाने और नवाचार करने में प्रेरणा मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं या असामान्य मौसम के समय में भी आकाशवाणी किसानों को त्वरित चेतावनी तथा सलाह पहुंचाने में एक विश्वसनीय माध्यम सिद्ध होती है। आकाशवाणी केवल सूचना का ही नहीं माध्यम है बल्कि किसानों का ये मित्र है, मार्गदर्शक है और सहयोगी है। इसने कृषि के विकास में और किसानों की समृद्धि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वाह, आकाशवाणी ने जीवन के हर पहलू से जुड़े विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: सच में क्या दिन थे वो भी जब लोग बिना का गीत माला सुनने के लिए काम छोड़ दिया करते थे
1: और लड़कियां शायद रेडियो के सामने बैठकर गाने सुनते हुए सपने देखती होंगी, है ना?
0: हाँ, और लड़के रेडियो के बहाने पड़ोस में जाने के मौके खोजते थे।
1: वाह, तो जनाब का इतिहास बड़ा रंगीन रहा है।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, हम तो बस आकाशवाणी के सच्चे श्रोता थे। आकाशवाणी ने हर वर्ग और देश दुनिया के लोगों का अपने कार्यक्रमों से खूब मनोरंजन किया है। अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
8: आकाशवाणी ने 90 वर्षों तक सब लोगों का, विश्व के, हिंदुस्तान का, सबका मनोरंजन किया है और खासकर मेरे बचपन की इतनी सारी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। वो भूले बिसरे गीत, कुंदन लाल सहगल की आवाज, सुबह उठते थे और पापा समाचार लगाते थे रेडियो में, देवकी नंदन पांडे के समाचार सुनिए। और जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी आई तो हमने एक नाटक किया था M.K. रैना के निर्देशन में, चेरी ऑर्चर्ड, उसका हमने रेडियो पर, और बिल्कुल अलग था, स्टेज पे करने की बात अलग थी और रेडियो पे जब हमने ये चेरी का बगीचा किया उसको आज भी लोग याद रखते हैं, बहुत सुनहरी यादें। हाँ, एक और बात, मैं IPL का मैच देख रही थी और एक बात बता दूं आपको, जो बचपन में रेडियो में जो मैच सुनने का, देखने का नहीं सुनने का, मतलब सुनते थे वो पूरा नजारा आंखों के सामने कि कैसे बिशन सिंह बेदी ने क्या बॉलिंग की और सुनील गावस्कर ने ये बॉल पे 100 रन मारे, क्या कमेंट्री सुनाते थे लोग, लाइव में उतना मजा नहीं है। माफ करना जिन बच्चों ने रेडियो में मैच की कमेंट्री नहीं सुनी है तो आपने मैच का मजा नहीं लिया है।
1: मनोरंजन के बारे में तो तुमने बताया, अब कुछ और भी बताओ ना, कुछ नया सा।
0: अरे, आकाशवाणी ने खेलों को भी बढ़ावा दिया और खिलाड़ियों को पहचान दिलाई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा।
9: आकाशवाणी ने जो है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया है और हमारा पल पल साथ दिया है, चाहे कोई न्यूज हो, बधाई हो या किसी भी तरीके की चीजें हो, तो एक यादगार जो है वो हमारे लिए आकाशवाणी बन गया है और 90 साल पूरे करना अपने आप में बेमिसाल है। मैं यही आकाशवाणी से उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इंडियन स्पोर्ट्स के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे।
1: कितना कुछ किया है आकाशवाणी ने खिलाड़ियों के लिए भी, क्या हम महिलाओं के लिए भी आकाशवाणी ने कुछ किया है?
0: अरे, ये वो यात्रा है जिसमें हर आवाज को अवसर मिलता है। ये संवाद बना, सहारा बना और लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड, श्रीमती राधा रतूड़ी।
10: आकाशवाणी ने दशकों से भारतीय महिलाओं के जीवन को बदलने में एक मूक क्रांति की भूमिका निभाई है। आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि महिलाओं का एक सच्चा साथी और मार्गदर्शक रहा है। आकाशवाणी के विशेष महिला कार्यक्रमों महिला जगत, घर गृहस्थी, जनानों का वास्ता, गृह लक्ष्मी और सखी सहेली और अन्य ऐसे ही कार्यक्रमों ने घरेलू महिलाओं को घर की चहार दीवारी से बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। रेडियो पर कृषि, लघु उद्योग, डेयरी फार्मिंग, सिलाई कढ़ाई, जैविक खेती और हस्तशिल्प से जुड़ी जानकारियों ने ग्रामीण महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का हौसला दिया। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आकाशवाणी ने हमेशा एक मजबूत ढाल बनकर महिलाओं को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी। एक दौर था जब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपनी सेहत और शिक्षा पर खुलकर बात नहीं कर पाती थी। आकाशवाणी ने मातृ स्वास्थ्य, पोषण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों और अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी को महिलाओं तक पहुंचाया। आज रेडियो की बदौलत ही हजारों महिलाओं ने अंधविश्वास को छोड़कर विज्ञान और शिक्षा का रास्ता चुना है। इतना ही नहीं, आकाशवाणी ने महिलाओं को केवल श्रोता नहीं बनाया, उन्हें अपनी आवाज उठाने का मंच भी दिया। जब एक आम महिला रेडियो पर आकर अपनी सफलता की कहानी सुनाती है तो देश की लाखों अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है।
1: इतना कुछ किया है, थैंक यू आकाशवाणी इतना सब करने के लिए।
0: और सुनो, आकाशवाणी केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि विश्वसनीयता का प्रतीक है, जिसके कैनवास पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। संयुक्त निदेशक श्री के एस चौहान, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड।
11: भारत जैसे विशाल देश के हर कोने तक सटीक, विश्वसनीय और जनहितकारी जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी का भूमिका सर्वोपरि है। डिजिटल क्रांति और सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पलवर में खबरें बदल जाती है, वहां आज भी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा प्रतीक आकाशवाणी है। आज जहां फेक न्यूज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, वहीं आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार पूरी तरह जांचे परखे और प्रमाणित होते हैं। देश की जनता इस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। भारत के दूरदराजों के गांवों, पहाड़ी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां आज भी इंटरनेट या टीवी का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, वहां आकाशवाणी के सिग्नल्स पहुंचते हैं और देश के हर नागरिक को मुख्यधारा से जोड़े रखता है। आकाशवाणी सिर्फ खबरें नहीं देता बल्कि किसानों के लिए कृषि दर्शन, छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और महिलाओं, युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रसारित करता है। जब बाढ़, भूकंप या चक्रवात जैसी आपदाएं आती है और बिजली व मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाते हैं, जब आकाशवाणी ही वो इकलौता माध्यम होता है जो लोगों तक राहत, बचाव और चेतावनी की जरूरी सूचनाएं पहुंचाकर लाखों जाने बचाता है। आकाशवाणी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भारत की प्रगति, एकता और सूचना क्रांति का एक मजबूत स्तंभ है। नए जमाने के पॉडकास्ट और डिजिटल एप्स के रूप में इसने खुद को बदला जरूर है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है, देश को जागरूक और सूचित रखना। बदलते वक्त के साथ तकनीकी बदल सकती है, लेकिन सूचना के क्षेत्र में जो विश्वसनीयता आकाशवाणी की है वो हमेशा अमर रहेगी।
1: यानी कि सिर्फ काम की बात।
0: तुम्हें पता है, हमारा भारत जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां जीवित हैं, वहाँ भाषा को सम्मान और मंच देने का काम आकाशवाणी दशकों से कर रही है। लेखक, साहित्यकार और शिक्षक डॉक्टर डीएस पोखरिया, उत्तराखंड राज्य प्रतिनिधि, सदस्य साहित्य अकादमी।
12: आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आकाशवाणी 23 अलग अलग भाषाओं में लगभग 180 बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा के विकास और उसके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसने देश के कोने कोने तक हिंदी की पहुंच बनाई है। हिंदी भाषा के मानकीकरण और उसके उच्चारण की शुद्धता बनाए रखकर इसे परिष्कृत रूप में श्रोताओं तक पहुँचाया है। इसमें आकाशवाणी आकाशवाणी के हिंदी समाचार व कार्यक्रम वाचकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आकाशवाणी ने भारत के इतर हिंदी क्षेत्रों जैसे दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में श्रोताओं में हिंदी सीखने और समझने की ललक उत्पन्न की है। आकाशवाणी से प्रसारित हिंदी के विभिन्न कार्यक्रमों, गीतों, समाचारों, रेडियो, नाटकों और साहित्यिक और शैक्षिक वार्ताओं को सुनकर स्वाभाविक रूप से बड़ी सहजता से लोगों ने हिंदी सीखी। मनोरंजन के विविध कार्यक्रम जिनमें गीत, संगीत, हास्य कार्यक्रम, नाटक के माध्यम से पूरे भारत के जनमानस को हिंदी से जोड़ा। आकाशवाणी भारतीय साहित्य और संस्कृति के विविध रूपों के संरक्षण का भी प्रधान माध्यम बनी। साहित्य के विविध विधाओं के प्रसारण से और भारतीय सामान्य जन के मन में साहित्य और संस्कृति के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई। आकाशवाणी ने संस्कृत निष्ठ हिंदी के स्थान पर जन संचार की व्यावहारिक और सरल हिंदी का विकास किया। हिंदी के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में निबद्ध किया। शहर और गांव के बीच की भाषागत दूरी को मिटाकर हिंदी को एक सर्व स्वीकार्य संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया। आकाशवाणी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी प्रमुख योगदान दिया। सुदूर ग्रामीण अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, मौसम, साक्षरता, नारी चेतना, राष्ट्रीय जागरण, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से ही लोगों तक पहुँचे हैं। सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय उन्नयन के कार्यों में आकाशवाणी ने सदा सतत सेतु का कार्य किया है। उसने राष्ट्र के साहित्य और संस्कृति के गौरव और मान तथा कलाकारों के सम्मान को सदा अक्षुण रखा है।
1: अच्छा ये बताओ, आकाशवाणी ने हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ किया है?
0: बहुत कुछ किया है। लो सुनो, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्षा मधु भट्ट को
13: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम उस अमूल्य योगदान को नमन करते हैं जो आकाशवाणी ने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक भाषाओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में दिया है। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों से लेकर लोक कथाओं, रीति रिवाजों और पर्व त्योहारों तक आकाशवाणी ने उत्तराखंड की जो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है उसको जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। उत्तरायणी मेला हो, चाहे नंदा देवी राजात मेला हो, गौचर मेला हो, पूना गिरी माँ भगवती का मेला हो और अनेकों ऐसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन रहे हैं, उनकी झलक और उनके महत्व को भी आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देकर आकाशवाणी ने न केवल लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष जन सेवा, संस्कृति संरक्षण और लोक चेतना की प्रसार की एक गौरवशाली यात्रा की प्रतीक है।
1: आज मैंने जाना आकाशवाणी का सफर इतना शानदार रहा है। अच्छा ये बताओ, श्रोता क्या कहते हैं इस सफर के बारे में?
0: लो सुन लो, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीके चक्रवर्ती से।
14: बहरहाल मैं 70 साल से तो सुन ही रहा हूँ आकाशवाणी को और बचपन से लेके अब तक। आकाशवाणी जो चैनल है वो हर तरह का डोज आपको देता है, सूचना, मनोरंजन, एजुकेशन, हर तरह से। और मैं जो रिटायर्ड होने के बाद जितना भी टाइम मेरे पास बचता है मैं अधिकांश टाइम आकाशवाणी को सुनता रहता हूँ क्योंकि उसमें हर तरह का मुझे सुख मिलता है। कहीं जाता हूँ तो मेरा ट्रांजिस्टर मेरे साथ जाता है।
15: सुबह मंगल धुन से लेकर रात तक जब भी समय मिलता है मेरा रेडियो मेरे डाइनिंग टेबल पे भी मेरे साथ जाता है और फिर वहां से क्योंकि मैं प्रोग्राम नहीं मिस करना कहता हूँ इसलिए वो रेडियो लगभग मेरे साथ साथ ही रहता है रात के 9 बजे तक।
14: आकाशवाणी नहीं सुनेगा तो
15: शायद मेरा जीवन दूभर हो जाएगा।
1: वाओ, तुम्हें तो कितना कुछ पता है, लेकिन हर साल मेरा जन्मदिन ही याद नहीं रहता और यहाँ तक कि आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून भी बहुत अच्छे से पता है।
0: अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरे जीवन का FM हो।
1: अच्छा, और आप?
0: मैं वही तुम्हारा पुराना ट्रांजिस्टर जो कभी कभी अटक जाता है। जानते हो, जब मैं छोटा था दादी रात में रेडियो पर भजन सुनती थी, पिताजी समाचार सुनते थे और माँ नाटक।
1: थैंक यू डब्बू इतना सब कुछ बताने के लिए, और थैंक यू आकाशवाणी।

0: आप सुन रहे थे रूपक, आवाज जो देश बदलती है। वाचन स्वर सुषमा जोशी और अनुराग वर्मा। आलेख एवं प्रस्तुति रमेश चंद्रा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूपक, आवाज जो देश बदलती है। आलेख एवं प्रस्तुति रमेश चंद्रा। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR, प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि ठीक 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी के घर गृहस्थी। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:30। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर और 2:30 पर सुनेगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। गाने, नए तराने, फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:02 पर।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
1: श्रोताओं, एक बार आपको याद दिला दें कि शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गौरी पठारे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत करेंगी राग गॉड मल्हार। ठीक 4:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। एक कलाकार और आज की अभिनेत्री होंगी डिंपल कपाड़िया। 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा।
5: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
6: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
5: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:00 को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
7: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की प्रदेश के 10 शहरों में भूकंप की संवेदनशीलता का अध्ययन करेगा। प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब 24 घंटे यात्रियों को गर्म पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने उप जिला चिकित्सालय ज्योतिर्मठ का निरीक्षण कर मरीजों व तीमारदारों से संवाद किया और पौड़ी जिले के कलजी खाल विकासखंड में हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध खैरालिंग मेला पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:02 का समय। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से रमेश चंद्रा की बातचीत।
8: कुर्मा चल के दार खंड भूमि च पावन महार।
9: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को। आप आकाशवाणी नजीबाबाद की संगीत संयोजिका रही हैं, उससे पहले आप संगीत शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
10: धन्यवाद आपका।
9: आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा को किस तरह से देखती हैं?
10: पुराने जो दिन होते हैं, मधुरतम दिन या कैसे भी दिन हो, है ना, वो सब चीज तो याद आते रहते हैं पूरी उम्र भर
9: जी।
10: तो इस तरह से जो है, पहले दिल्ली रेडियो से हम लोग सुनते थे तो पहाड़ों पर वो सुनाई नहीं देता था
9: जी,
10: तो वो प्लेन्स में ही सुनाई देता था, ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। लेकिन जब आकाशवाणी नजीबाबाद स्टेशन बना तो उसके बाद जो है घर घर रेडियो सुनाई देने लगा
9: जी।
10: और मैंने तो ये देखा कि गांव में जो है एक रेडियो रखा रहता था और चारों तरफ से सारे लोग बैठे रहते थे और सुनते रहते थे बहुत अच्छे से
9: जी।
10: और काम भी कर रहे हैं और अपना रेडियो भी सुन रहे हैं, क्योंकि श्रवण है ना उसकी विधा, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। देखने वाला हो तो फिर काम ऐसे रह जाता है
9: जी।
10: तो ये सर्वगुण संपन्न है रेडियो।
9: आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
10: जी, वो तो ये है कि जब मैं छोटी थी तो तभी मेरे को ना गाते, मतलब पिताजी जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे तो उनके वो गाके करते थे, तो मैं उनके साथ गाती रहती थी। तो तब तक क्या हुआ कि लैंसडाउन में हम लोग रहे तो वहां पर एक कंपटीशन हुआ छोटे बच्चों का, 5 साल तक के बच्चों का, और मेरा उसमें फर्स्ट आई। मैं उसमें राधा बनी और मैंने राधा वाला जो नृत्य था वो करा और उसमें फर्स्ट आई मैं। उसके बाद मेरा एडमिशन वहां GGIC में हो गया और फिर धीरे धीरे करके मैं फिर सब जगह जो है स्टेट रैली या जो भी रीजनल रैली वगैरह जो भी होते थे उनमें मैं फर्स्ट आती रही, तो सब बहुत खुश होते रहे। इसके बाद 6ठी क्लास में जब मैं आई तो उसमें भी मैं फर्स्ट आई। जैसे घर में आई मैं अपने, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा अब बहुत बड़ी हो गई है तू, और अब स्टेज पर नृत्य नहीं करना और गाना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय मतलब गाना बजाना ना महिलाओं के लिए प्रतिबंधित था, अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गई बुरी तरह से। अब जब बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई तो बुखार टूटता ही नहीं था, तो पिताजी ने कहा क्या करूं क्या करूं, बहुत परेशान हो गए पिताजी। तब हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मुरादाबाद की रहने वाली थी, उनको जब पता लगा कि मैं बीमार पड़ गई और उसके पिताजी ने मना कर दिया गाने के लिए, फिर वो घर में पिताजी से मिलने के लिए आई। उन्होंने कहा कि आप इसको मारना चाहते हो, आपने इसको जो है मना कर दिया। पिताजी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो समाज के साथ हूं ना, मेरे को वो समाज से दूर कर देंगे और मैं कैसे रहूंगा फिर ऐसे, मेरा हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे वो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा करिए आप इसको बाहर ले जाइए और इसके बाद जो है इसको क्लासिकल सिखवाइए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, पर बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पिताजी फिर मेरे को लेके इलाहाबाद नजीबाबाद ऐसे जाते थे और वहां मैं सीखती थी। 4 बजे सुबह उठ करके रात के 12 बजे तक मैं रियाज करती थी वहां गुरु जी के यहाँ। और उसके बाद जब मैं समाज से छुप करके जहाँ पांडा होता है, जहाँ सामान रखा रहता है अपने घरों में, वहां वहाँ छुप करके मैं टॉर्च जला करके तब वहाँ पर पढ़ती भी थी और वहाँ पर मैं रियाज भी करती थी और फिर स्कूल जाके स्कूल से फिर होमवर्क करना, फिर सारा काम करना। और उसके बाद जो है जब मैं 10वीं क्लास मैंने करी तो मैंने डिग्री हासिल कर ली थी, 6th ईयर मैंने क्लासिकल म्यूजिक में कर लिया था। और फिर जब अपनी स्कूल में टीचर बन के आ गई मैं हाई स्कूल पास, तो फिर सारे समाज में पड़ा हुआ कि क्या हुआ ये लड़की जो है साड़ी पहन के कहाँ जा रही है। तो किसी ने

0: ताकि ये जब मेरे को मना कर दिया था ना, जिंदा रखना था मुझे, तो फिर मुझे जो है मेरी जो गुरुजी थी सुमित्रा भूलिया जी, वो अभी भी मेरे को बहुत प्यार करती हैं, तो मेरे को मिलती हैं। उन्होंने मेरे को नाटक करवाया, फिर
1: जी
0: उन्होंने कहा कि तेरे में बेटा ये भी गुण है, तू ये नाटक कर, गाना मत गा, चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं जो है जब टीचर बन के आई, तो किसी ने कहा अरे साड़ी पहन रही, नाटक हो रहा होगा स्कूल में। तब किसी ने कहा कि अरे इंटर में चली गई भाई, अभी 11th में पढ़ रही है, तो उसके जो है ड्रेस बदल गई उनकी। तब तक किसी ने बोला कि नहीं वो टीचर बन गई, मास्टर नहीं बन गई वो। तो उन्होंने कहा मास्टर नहीं ऐसे कैसे बन सकती भाई, हाई स्कूल करके कोई मास्टर नहीं बनता है क्या? तब उनको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है, वरना उस समय कला अध्यापक बोलते थे, किसी को पता नहीं था कि संगीत विषय क्या होता है। तब उन्होंने कहा कि बेटा हमारे बच्चों को भी पढ़ा, जो लोग मना करते थे वही बोलने लगे फिर कि बेटे हमारे बच्चों को भी पढ़ा। तो हजारों बच्चों को पढ़ाया, आज बहुत बड़े बड़े पद पर हैं वो, कितने बार मेरे को मिलते रहते हैं, अब सोशल मीडिया है तो उसमें सब मिल जाते हैं।
1: अभी आपने कहा कि जो लोग मना करते थे कि लड़कियों को गाना बजाना नहीं सिखाना है, और बाद में वही लोग अपने बच्चों को गाना बजाना सीखने के लिए आपके पास भेजने लगे, तो मन में कैसा भाव आया?
0: मतलब लगा ना कि कितना वो हुआ समाज में, कितनी तब्दीली हुई, तो ये अच्छा ही बात है। मतलब हर चीज को मैंने जो है दृढ़ संकल्पित थी मैं उसके लिए, मैं टूटी नहीं और मैंने उसको अपनाया। लक्ष्य जब हमारा सामने होता है ना और हम बिल्कुल डिगते नहीं है, तो किस चीज का डर? सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है ना, तो अगर वो रूठ गया तो सब रूठ गए। जब वो है साथ में तो फिर क्या है, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं बिल्कुल बहुत तटस्थ थी इसके लिए और मैंने वो करा। फिर ईश्वर जो है रास्ता भी देता है, बहुत चीजें ऐसी होती है जिनको गुप्त भी रखना होता है ना। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो एक प्रिंसिपल थी मुरादाबाद की थी, वो उन्होंने फिर मेरा एक फॉर्म भरा उन्होंने और मेरे को बोला कि माधुरी दरा चल इसमें सिग्नेचर कर। मैंने कहा दीदी ये क्या है? कहने लगी कि कुछ भी है, आकाशवाणी नजीबाबाद में एक पोस्ट है और तू उसके लिए अप्लाई कर इसमें सिग्नेचर। मैंने कहा जी मैं बिना पिताजी से पूछे कैसे कर सकती हूँ, मेरे को पिताजी डांटेंगे बोलेंगे, बिना पूछे तो कुछ भी कर रही है। तो इसलिए जो है उन्होंने फिर अपनी कसम दे दी मुझे, तेरे को मेरी कसम कर इसमें, मुझे पता है तेरा सिलेक्शन होगा वहाँ। उन्होंने देखा ना कितनी मेहनती है। फिर मैंने सारा प्राइवेट करा, बीए एमए सब कुछ प्राइवेट करा, इंटर से सारा प्राइवेट करा मैंने। तो फिर उन्होंने कहा फिर वो जो है अब मेरे को तो काटो तो खून नहीं, और मेरी हालत इतनी खराब हो गई ना, अब मैं पिताजी से कैसे बोलूंगी कि मैंने वहां अप्लाई कर दिया है, और बहुत परेशान थी। तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकती थी मैं, ना माँ से बोल सकती, ना किसी से बोल सकती थी। फिर उसने रास्ता भी दिया, मैं अपनी बहनों को नजीबाबाद एग्जाम दिलाने ले जा रही थी म्यूजिक का, और वहां से जब हम लौट रहे थे तो पिताजी ने पढ़ा आकाशवाणी नजीबाबाद, माधुरी तेरे लिए नहीं है यहाँ कोई जगह। मैंने कहा पिताजी एक पोस्ट है यहाँ, तो अप्लाई कर दे तू। और मेरी हालत खराब, मैं कैसे बोलूंगी मैंने अप्लाई कर दिया। और तब तक क्या हुआ, ट्रेन आई है, ट्रेन का सायरन बजार, बस आई गई, बात हो गई, उससे आगे पिताजी ने कुछ पूछा ही नहीं। मतलब अपना आशीर्वाद दे दिया उन्होंने कि अप्लाई कर दे। और उसके बाद तब फिर मेरे को लेके जब मेरा वहाँ आकाशवाणी के लिए जब मेरा इंटरव्यू और वो हुआ प्रैक्टिकल टेस्ट, वो लखनऊ हुआ, पिताजी मेरे को लखनऊ लेके गए और तब फिर प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, और उसके बाद जो है फिर इंटरव्यू भी उसी दिन हो गया। मैं जब वहां पर गई तो वहां अंदर ना कैमरा लगा हुआ था, तो जब मैं ऊपर जा रही थी तो वहां पर एक गमला ना गिरा हुआ था, और वो गमला गिरा हुआ था तो उसकी सारी मिट्टी भी गिरी हुई थी। तो मैं वहां पर जो गेट कीपर बैठे थे, मैंने कहा भाई जी मैंने कहा ऐसे करो आप इस गमले को ठीक कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर सब दिख रहा होगा शायद, हालांकि मेरे संगीत से कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन एक वो होता है, और गाइड कैप्टन भी रही मैं, तो ये सब चीजें मेरे को स्कूल में सीखी मैंने सब चीजें। तो फिर जो है जब मैं अंदर गई तो मैं उनको प्रणाम करा, उन्होंने कहा आप बैठिए, फिर मैं बैठ गई। वो पूरे हिंदुस्तान से आए होंगे, 4-5 लोग थे, वो एक नजीबाबाद के स्टेशन डायरेक्टर थे एस के शर्मा जी, और बाकी सब बाहर के थे, कलकत्ता और दक्षिण भारत सब जगह के ना। तब फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करना शुरू करा, और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चन पूछ दिए उन्होंने। तो शर्मा जी ने मुझसे पूछा कि आप जो है कोई लोकगीत गाइए वहाँ का, वहाँ पर भी मुझे रास्ता मिल गया एक कि लोकगीत सबसे पहली चीज है, कहीं की पहचान लोकगीत ही है। तब फिर मैंने वो गाया, जब मैंने छोटे में जो है गेंद के मेले में जब मैं गई थी तो वहां पर भौंती देवी आई हुई थी, तो उनसे मैंने वो सुना था, तो जिया बोई नागेणा जिया ढोल बाजे, ये वाला मैंने लोकगीत था जी।

0: बाजे, ये वाला मैंने सुना है।
1: वाह,
0: तो उन्होंने कहा कौन से राग में है, मैंने कहा ये भूपाली राग में। तो कहने लगे कि अच्छा दूसरा गीत गाइए। फिर उन्होंने ऐसे से मेरे से पूछना शुरू कर दिया, तो मुझे रास्ता भी मिला कि लोकगीतों में भी राग होते हैं, रागों के मूल में लोकगीत ही है।
1: जी
0: तब फिर मैंने उसमें PhD भी उसी में करी, और फिर जो है मेरा सिलेक्शन जब उसमें हुआ, फिर वहां पर एक आए, वहां मुरादाबाद के कोई टीचर थे वो, उन्होंने कहा आप लैंसडाउन से आई हैं। मैं अकेली थी वहां और बाकी सब जेंट्स थे,
1: जी
0: 1500-1600 लोग आए थे पूरे हिंदुस्तान से। तब उन्होंने कहा कि आपने, मैंने कहा हाँ जी, आपको कैसे पता? कहने लगी कि जी आपका सिलेक्शन होना है। वो जो जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा था ना, उन्होंने बोला गया काहे के लिए जा रहे हो तुम, सिलेक्शन उसका होना है।
1: जी
0: मतलब इतना विश्वास था उनको, है ना। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर अखबार में छपा कि भारत की पहली महिला संगीत संयोजिका बनी
1: जी
0: गढ़वाल से। फिर मेरे से सारे मिलने आए, फिर नजीबाबाद में जितने लोग थे, मतलब गढ़वाल के या कुमाऊं के या जौनसार के, सब लोग मेरे को मिलने आए वहां पर। और तब उन्होंने मतलब बहुत खुश हुए सब लोग ना। और तब उसके बाद मैं घर घर गई, और घर घर से फिर वो घूंघट में रहती थी महिलाएं, उनको भी वहां से बोला मैंने उनके घर में जाकर कि आप अपनी बहू को वहां भेजिए, मैं हूँ वहां पर,
1: जी
0: आप भेजिए, आप में आपकी बहू में ये सब कुछ हुनर है, तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे थे वहां पर जिनको पास करा, और आज जो है इतने बड़े बड़े कलाकार वो बन गए हैं। तो ऐसे ही घर घर से उठा के लाई होंगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं महिला है,
1: जी
0: तो उन्होंने फिर भेजने में कोई वो नहीं करी आनाकानी,
1: जी
0: तो उन्होंने भेजा खुशी खुशी ना। और फिर गांव गांव में गई, वो भी रिकॉर्डिंग के लिए। हजारों तो किलोमीटर पैदल ही गई मैं, क्योंकि उस समय आने जाने का कोई साधन ही नहीं था।
1: जी
0: घाटियों में नहीं जाती थी आवाज रेडियो
1: जी
0: की ना, केवल ऊंचे स्थानों पर जाती थी।
1: जी
0: तो पर यह है कि लोग वहां भी घाटियों से उठ के वहां जाते थे फिर रेडियो सुनने के लिए।
1: जी अभी आपने कहा कि आप भारत की पहली संगीत संयोजिका बनी, बात करें आकाशवाणी की, संगीत के प्रसार एवं संरक्षण में क्या भूमिका आप देखती हैं?
0: संगीत जो है ना बहुत पहले से बना है आकाशवाणी, और प्रसार माध्यम है, प्रचार माध्यम है, सब चीज का माध्यम है।
1: जी
0: उस समय नियम भी बहुत अच्छे अच्छे थे। इस तरह से जो है मैंने खुद ये चीज देखी है कि मैं गांव गांव में गई, वहां से उनको रिकॉर्डिंग करके आई, उनकी आवाज में ही वो संरक्षित है आकाशवाणी में,
1: जी
0: संग्रहालय में। जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनकी भी आवाजें संरक्षित हैं। तो क्या नहीं करा आकाशवाणी ने, सब कुछ करा महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए, बहुत कुछ करा। किसी को अगर किसी चीज में अपना जीवन संरक्षित करना है वो करा, न्यूज भी सब सुनाई उन्होंने, क्या नहीं था। कृषि जगत भी उन्होंने समेटा, और ग्राम जगत हो गया, महिला जगत हो गया, फिर मनोरंजन तो था ही था,
1: जी
0: फिल्में गाने में बजते थे, लेकिन स्थानीय जो थे हमारे लोक संगीत, उसके लिए बहुत बड़ा काम करा
1: जी।
0: रेडियो ने।
1: अभी आपने चर्चा में कहा कुछ ऐसे कलाकार जिनको गाना आता था, बजाना आता था, लेकिन उनको ताल की जानकारी नहीं थी,
0: हाँ।
1: और आप उनके फॉर्म फिल करवा लेती
0: हाँ।
1: थी, बाद में ऑडिशन के द्वारा वो आकाशवाणी से जुड़ जाते थे,
0: हाँ।
1: तो उस भाव को किस नजरिए से देखती हैं?
0: देखिए गुण ही सबसे बड़ी चीज। अगर कोई बहुत बढ़िया बजा रहा है, तो ऐसे भी होते हैं कि जिनको सब कुछ आता है लेकिन उनका हाथ उतना सधा हुआ नहीं होता। और उनका हाथ इतना सधा हुआ था कि जैसे गाना शुरू करा और उनके हाथ से खुद ही वो ताल बज जाती थी उनके साथ से। उन्होंने वैराग्य भाव से साधना करी है, उसमें उनको पैसा भी मिला, लेकिन नाम उनको यहीं से मिला
1: जी।
0: रेडियो से, और नाम और पहचान आकाशवाणी ने ही दी, और संरक्षित भी किया उनका जो कार्य था। एक कलाकार के लिए तो बहुत बड़ी चीज है
1: जी।
0: उस जमाने में जो है, रेडियो खुल गया तो फिर उनके लिए तो चमत्कार हो गया, फिर उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिल गया।
1: जी
0: और फिर सबसे बढ़िया चीज, अरे हमारी बेटी का गाना आ रहा है, चुपो चुपो चुपो उसका गाना आ रहा है,
1: जी
0: खुश होके बोल रहे थे लोग। उसी समाज में कितना परिवर्तन हुआ
1: जी, जिस समाज से महिलाओं को संगीत की शिक्षा देने के लिए बहुत ज्यादा विरोध किया जाता
0: हाँ,
1: था।
0: हाँ। और उस समय जो है छोटी लड़कियों की शादी भी हो जाती थी, पर संगीत के लिए थी मैं समर्पित, मुझे शादी भी नहीं करनी। तो मैंने शादी भी छोटी उम्र में बिल्कुल नहीं करी, 11-12 साल की तब मेरे लिए रिश्ता आ गया था, उसमें भी अडिग रही मेरे को करनी नहीं है
1: जी, संगीत को आपने साधना माना।
0: हाँ बस साधना, मेरे बस वैराग्य भाव से वही था मेरे साथ और कोई नहीं था।
1: 70 का दशक या उससे पहले की बात करें, जिस दौर में आने जाने के संसाधन बहुत
0: कुछ नहीं
1: सीमित
0: थे।
1: थे,
0: हाँ।
1: और कला के संरक्षण की बात करें, लोगों को पता ही नहीं
0: पता ही
1: था
0: नहीं
1: कि हम
0: था।
1: अपनी जो कला है उसको कैसे और लोगों तक पहुंचाएं। जब आपके द्वारा वो कलाकार आकाशवाणी से जुड़े और वो कला बहुत से लोगों तक पहुंची रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, उस भाव के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: गांव के जिन्होंने जो है कभी गर्मी तो देखी नहीं, प्लेन भी नहीं देखा कभी नहीं,
1: जी
0: और वो चमोली गढ़वाल से और इतने दूर से नीतिमाणा से वो आ रहे हैं हमारे नजीबाबाद, एक दिन तो आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था, एक दिन उनकी रिकॉर्डिंग होती थी।
1: जी
0: तब क्या होता था, गर्मी में झुलस जाते थे। तब उनको कितनी बार तो ऐसा हुआ कि जब उनकी स्थिति बहुत वैसे रही, 3 बजे तक मैं उनकी रिकॉर्डिंग निपटा देती थी। तो 3 बजे उनको बस मिल जाती थी, तो वो गुरुद्वार से आगे तक चल जाते थे, वो तो वहां रह लेते थे। वो जब वो वहां से वहां तक आते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि क्या होगा, और वो जो है ना ये खाना वहां से ला रहे हैं बेचारे वहां तक। और जब मैं उनसे बोलती थी कि ये गाओ सब वो करते थे लोकगीत, तो गाया उन्होंने बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो है ये जब खाना वाना खा लिया, तुमने खा रहे हो क्या, तो कहने लगे हाँ जी लाए हैं। मैंने कहा खोलो जरा, खोला तो वहां ना वो बिल्कुल झुलस गया खाना, क्योंकि वो ठंड से आए और यहाँ गर्मी में सब खत्म। तब बेचारे ऐसे रह जाते थे। तो उनको जो है वो फिर उनको खाना भी मैंने घर से मंगवाया होगा, फिर दिया होगा उनको। तो ये कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि कैसी जिंदगी जीते हैं वो और कहाँ तक आए वो। और यहाँ पर जो है तब उन्होंने ऐसे देखा रहते थे, पैसे मिले हमको और ये मिले, बहुत खुश हो जाते थे, बहुत खुश। और जो है एक तो ऐसा कलाकार था कि जब उसको मैंने कहा अपना रोल नंबर बताइए, जब उनका ऑडिशन हो रहा था, जो नंबर आपको दिया हुआ है वो नंबर बोलिए,

0: नेचर ट्यून बजी, मनुष्य को जो है ना उसी समय जो है एक जैसे होती ना अंदर आत्मा से जुड़ जाता है वो चीज,
1: जी
0: तो वो चीज जब उसमें वंदे मातरम जब ये बज रहा है वहां पर तो
1: जी
0: उसी से बहुत खुशी हो जाती थी और ऐसे झूमने लग जाते थे। और जो बुजुर्ग थे उनका तो बस वो रेडियो ही था, सब कुछ
1: जी
0: सब कुछ उनका रेडियो था, खान पान रहन सहन सब वही था। और उसके बाद जो है फिर उनके मनपसंद के गाने भी बज रहे हैं, उनके हर चीज बज रही है, तो वो तो है ही, संस्कार भी वहीं से मिले
1: जी
0: और जीने का तरीका भी वहीं से मिला।
1: जी
0: और जब उनकी भाषा में रेडियो में बात हो रही है तब तो और प्रफुल्लित हो जाते थे वो, उनका नाम आ रहा है जब चिट्ठी पढ़ते समय ये फरमाइश है वो ये मांगना चाह रहे हैं तो उसे बहुत खुश, बहुत खुश कि मेरी चिट्ठी पढ़ी जा रही है, कितनी बड़ी बात होती है।
1: अभी आपने कहा कि वो कलाकार प्रकृति की गोद में रहते थे, या आकाशवाणी केंद्र जहाँ तत्कालीन समय में स्थित थे वहां तक आने में काफी समस्याएं होती थी। रिकॉर्डिंग के बाद जब अपनी रिकॉर्डिंग को वही कलाकार सुनते थे तो उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह की रहती थी?
0: रोने लग जाते थे, ये सच बात है कि नहीं, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा होता था कि 20-20 किलोमीटर पैदल आते थे वो लोग, ऐसे ऐसे भी जगह वहां बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ धूप लगी हुई है भयंकर, उनकी तो हालत खराब हो जाती थी।
1: जब आप आकाशवाणी से जुड़ी और संगीत को आपने आगे बढ़ाने में आकाशवाणी के द्वारा योगदान देना शुरू किया,
0: म्यूजिक कंपोजर का काम तो मैं करती ही थी, उसके साथ साथ जो है मेरे को क्योंकि खाली बैठने की आदत नहीं थी और सबसे बड़ी चीज यह है आदत से मजबूर थी मैं, न खाना न सोना, मेरी ये आदत थी 4 बजे मैं उठ जाती हूँ अभी भी और रात के 12 बजे सोती हूँ मैं, केवल 4 घंटे सोती हूँ मैं। मैं 9 बजे ऑफिस चल जाती थी और रात के 11 बजे तक मैं वहाँ रहती थी ऑफिस में।
1: आपने म्यूजिक का कंपोजिशन किया है, किस तरह का म्यूजिक कंपोजिशन आप करती
0: नहीं, सुगम संगीत वाले जो है ना तो उनको सिखाया, कोई भी भजन गीत भजन गजल जो भी है वो जिसमें पास हो रखा है तो उसको सिखाया और फिर उसको रिकॉर्ड करा। देशगान जो वहाँ के जो कवि थे मैंने कहा ऐसे मत बैठो और देशगान लिखो, ऐसे ऐसे बढ़िया देशगान उन्होंने लिखे, पढ़ाया सब कुछ सिखाया। पहला गीत था वो मैंने वहीं गाया था वो लखनऊ, एक तो मांगल लोक गीत ही था क्योंकि सबसे पहले शुरुआत मांगल से ही करी मैंने, तो यह था।

0: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से। संगीत के क्षेत्र में लंबा अनुभव है आपका, आपने हजारों गीतों की, लोक गीतों की धुन बनाई है। कौन सी सबसे बड़ी शिक्षा है जो संगीत ने आपको सिखाई है?
1: सबसे बड़ी शिक्षा तो उसने मेरे को ये दी, संग ही जो रहता है वो है संगीत। ये परिभाषा मेरे पिताजी ने दी, चाहे वो दुखी है, चाहे वो सुखी है, चाहे वो झुंड में है, चाहे वो अकेला है, चाहे वो बीमार है, चाहे, मैंने कहा मैं इनको सुधारूंगी। तब फिर मैंने अपने घर में सारी महिलाओं को बुला के लाई, उनके घर घर जाकर के उनको बुला के लाई, मैंने कहा तुम गाना गाओ यहाँ, है ना, मैं तुमको सिखाऊंगी। तब मैंने उनको मांगल सिखाए, आज वो लखपति बनी हुई है, आज घर घर मांगल गाए जा रहे हैं। तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा सम्मान यही तो है।
0: अभी आपने मांगल और संस्कार गीतों की बात की,
1: हाँ।
0: आकाशवाणी ने भी मांगल और संस्कार गीतों के संरक्षण और प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया,
1: हाँ।
0: है।
1: यही तो रिकॉर्ड करती थी मैं, उनको सिखाया पहले और विधिवत उसको गवाया, और फिर ढोल दमाऊ वादकों को भी पास करा, और फिर उनको जो है मशकबीन वालों को भी, और वो जो है आज मेरे को कहीं मिलते हैं ना तो मैं तो पहचान नहीं पाती, पर उनको सब पता है, उनको बुला करके मांगल गवा।
0: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल से। डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, जब आप इतनी मेहनत कर रही थी कलाकारों के ऊपर जो बहुत बहुत सीमांत क्षेत्रों से आते थे, और उनको जो आकाशवाणी केंद्र है वहां तक आने में बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तत्कालीन समय में तो परिवहन की सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हुआ करती थी, उस दौर में जो आकाशवाणी आपके साथ ही हुआ करते थे, उनकी भी तो कुछ प्रतिक्रिया रहती होगी?
1: उनको पता था कि बस वो तो स्टूडियो में चली गई तो बस अब वहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं, खाने से कोई मतलब नहीं, कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। साथ साथ 8-8 घंटे मैंने एक्स्ट्रा काम करा, लेकिन कभी नहीं, कभी छुट्टियों में भी गई मैं।
0: कुछ ऐसी अविस्मरणीय बातें आकाशवाणी से जुड़ी हुई
1: ऐसी भी थी कि जैसे मैं वो भी रिकॉर्डिंग पे गई ना, तो एक गांव में गई मैं, वहां से जो है वहां से लौट रही थी मैं, तब तक क्या हुआ कि जाते समय तो कोई बारिश नहीं हुई, और जब लौट रही थी मैं तो पैदल ही पैदल तो जाना था, मेरे साथ एक लड़का था, वो मेरा टेप रिकॉर्डर भी बहुत बड़ा होता था उस समय में ना, तो वो टेप रिकॉर्डर वो मेरे साथ लेके जा रहा था। और जब उस गांव से हम लोग वापस आ रहे थे, वहां पर मतलब वो भी रिकॉर्डिंग में मैं सब रिकॉर्डिंग करके ले आती थी ना उनकी, तो ब्याली सैया रे के बासा रे तू, ब्याली सैया रे के बासा रहे तू, ऐसे बहुत सारे लोग भी, मतलब मेरे को कंठस्थ हो जाते थे वो
0: जी।
1: तो वहां से जब लौट रही थी मैं तो वहां इतनी भयंकर नदी आई हुई थी, किस समय कोई नदी नहीं थी, और बारिश हुई होगी भयंकर, वहां नदी आ गई, सारी रात भर मैं वहीं बैठी रही
0: जी।

0: बाघ आता तो क्या करता, कुछ भी आ सकता था, भालू आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। सुबह 5 बजे फिर वहां से मैं चली और नदी पार करते, तो थोड़ा पानी कम हो गया था, जहाँ ठहरी हुई थी उस गांव में गई। फिर मैं ऐसा भी मैंने देखा, ऊपर एक गांव से आ रही थी दूसरे गांव में, तो मुझे प्यास लगी तो वहां पर झरना बह रहा था, तो मैं उसमें पानी पीने लगी। तब तक ऊपर से ना छड़ छड़ छड़ छड़ आवाज आई,
1: जी
0: तो जो मेरे साथ था उसने कहा मैम ऊपर जो है ना भालू है, कि भालू की वो नीचे आ रहा होगा भालू, और वही छड़छड़ाहट हो रही है। तो उसने कहा कि आप ना जब वो आप ना नीचे की तरफ भागो मेरे साथ। और उसके बाद मैं कह रही भगवान अब क्या होगा, भगवान क्या होगा, मैं कह रही भगवान ये धरती माता मेरे को बचा ले। तो मैंने कहा चल नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ भागने लगे हम। और मैंने कहा तब देखो तो कहाँ है वो भालू, तो उसने कहा कि भालू ऊपर चला गया। ऐसा भी था कि मैं एक नीति घाटी में गई और वहां उन्होंने एक लोकगीत मेरे को सुनाया, पूरे रात भर एक ही लोकगीत गाते रहे।
1: जी, ये आकाशवाणी के दौर के आपकी मधुर यादें हैं।
0: हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे कंठस्थ हो जाते थे, और फिर जब मैं रात में घर में बैठी रहती थी ना, तब मैंने वो सारे लिख दिए। और अब मैंने जो है 24 किताबें लिखी, लॉकडाउन हुआ तब मैंने टाइप करना सीखा
1: जी,
0: और उसमें मैंने 15 किताबें उस समय लिखी, और बाकी किताबें फिर मैंने लिखी। और मैंने PhD भी करी उसी सब्जेक्ट में, गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनिया, ये मेरा विषय था।
1: जी
0: और इसमें भी मेरे को बहुत बड़ा, वहां पर जो मेरे वाइवा लेने आए थे उन्होंने भी मेरा बहुत सम्मान करा।
1: आकाशवाणी के लोक संगीत में या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप?
0: इस समय लोक संगीत है, चलो उसको साज के साथ जोड़ करके और उसको विधिवत अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको विकृत नहीं कर, मतलब ये एक चीज, एक ये पथ प्रदर्शक, ये ज्ञान वर्धक तो करता ही है इंसान को, लेकिन पथ प्रदर्शक भी यही है, प्रेरणा भी यहीं से मिलती है।
1: यदि आकाशवाणी के 90 वर्षों पर आपको एक धुन रचनी हो तो वो धुन क्या होगी?
0: धुन तो मैं सोचती हूँ ना अपने राग रागनियों में ही
1: साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ।
0: कोई भी गीत है जैसे, उसकी धुन हम राग रागनियों पे ही बनाएंगे। लोक ही राग रागनियों के मूल में भी है, राग रागनियों से हमारा लगाव होता है तो स्वाभाविक आ जाता है। जो कोमल प्रकृति का राग है, जैसे करुण रस प्रधान है, तो उसमें कोमल प्रकृति का राग ही आ जाता है।

0: डायलिसिस कोई भी कर सकते हैं।
1: अगर आज के समय में आपको आकाशवाणी के बारे में कुछ कहना चाहें,
0: मैं तो कहती हूँ कि आकाशवाणी ने शुभमस्तु शुभमस्तु।
1: अगर समय पीछे ले जाए आपको और हाँ। फिर से आपको आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर बनने का मौका मिले तो कौन सा बदलाव अब करना चाहेंगी आप?
0: अब बदलाव ये करना चाहूंगी, जो हमारा लोकगीत है उसको हम जो है राग रागनियां जो हमारी हैं उनकी बंदिश भी बना सकते, तो उससे क्या होगा सबको पता लगेगा कि अरे ये कौन सी भाषा का है भाई।
1: संगीत आपके लिए क्या है?
0: संगीत मेरे लिए मेरा जीवन है।
1: जो श्रोता हमारा कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी आप?
0: संदेश ये है कि कभी डिगना नहीं, और जब हम डिगते नहीं है तो हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।
1: अगर ये माइक आज बोल पाता तो आपके लिए क्या बोलता?
0: ये तो मेरा जीवन साथी भी है, तो मतलब क्या नहीं था ये, क्या नहीं था, सब कुछ था ये तो।
1: कार्यक्रम के समापन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें जो हमारी चर्चा में छूट गई हो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें?
0: ऐसे तो हजारों बातें हैं। एक बार जॉन सार बाबर में भी गई थी मैं, नीति ब्लॉग में जब हम गए वहां तो हमने नीचे गाड़ी रोकी तो फकीर सिंह जी मेरे साथ थे और राम सिंह रावत और मैं थे उसमें। तब जो है फकीर सिंह जी ऊपर गए कि ये कौन सा गाँव है, उन्होंने कहा कि ये नीति गाँव है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके गाँव में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम अपने गाँव में किसी को आने नहीं देते। अब देखो कितना बड़ा चमत्कार है रेडियो। वो मेरे पास आए कहने लगे कि मैम वो तो ऐसे से बोल रहे हैं, मैंने कहा उनसे बोलो कि आकाशवाणी नजीबाबाद से माधुरी दीदी आई हैं। तब उनसे ऊपर गए वो, फिर उन्होंने बोला कि आप उनको जानते हैं, आशा आकाशवाणी से माधुरी दीदी आई हैं, दीदी आप आ जाओ
1: जी।
0: कहने लगे मेरे को दीदी आप आ जाओ। मैं फिर वहां तक गई और मैंने कहा वो शिवराम सिंह रावत जी है उनको भगा दूं क्या मैं
1: जी।
0: तो मैंने कहा दीदी उनको भी ले आओ, वो भी आ गए। और मैंने कहा जो मेरे हमको यहाँ तक लाया हम यहीं रह जाएंगे, मैंने कहा तो फिर उसको भगा दूं क्या मैं, नहीं दीदी वो ड्राइवर को भी ले आओ। और तो गए हम और फिर तो 3-4 दिन रहे, मतलब एक रात नहीं सोए हम
1: जी,
0: ना दिन में सोए ना रात में सोए। और रावत जी जो है वो स्पूल वाला जो टेप रिकॉर्डर होता था उसमें बजा रहे थे और वहीं पर सो जा रहे थे। मैं फिर रावत जी को बोलती थी फिर दोबारा लगाओ दूसरा लगाओ, अब वगैरह मैं पूरी रात भर जगती रही क्योंकि उन दिनों बसंत वाले दिन थे, तो उन दिनों जो है रात भर वहां पर लोकगीत भी चलते हैं, वो सारे लोकगीत मैं रिकॉर्ड कर लेती थी ये सब चीजें। और तब फिर ऐसे ऐसे करके रास्ते में बहुत कुछ हर गांव में कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला
1: जी।
0: और फिर उनको भी ऊर्जा मिली, उनको बहुत बड़ी ऊर्जाएं मिली कि अगर मैं रेडियो नहीं सुनती अगर वो तो उनको मेरा नाम कहाँ से पता लगता
1: जी।
0: है ना, ऐसे बहुत कुछ दिया है रेडियो ने। उससे क्या हुआ जब मैंने ये किताबें लिखी ना तो ईश्वर ने मेरे को इसीलिए घुमाया कि तू जो है ये सब अपने दिमाग में रख ले। वो किताबों में मैंने सारा चीज लिखी और उसमें जो दुर्लभ चीजें थी शोधात्मक जो सामान है वो सब कुछ मैंने किताबों में लिखा है।
1: डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, अगर आकाशवाणी एक इंसान होती
0: हाँ।
1: तो आप

0: के बारे में क्या कहती?
1: जो एआई बोलेगा वही है एआई भी। मतलब ये जो है, कभी बारिश में भी भीग के जा रही हूँ कोई मतलब नहीं है, शीत वर्षा ग्रीष्म की कोई चिंता ही नहीं थी, न खाने से मतलब न किसी चीज से मतलब
0: जी
1: ना। फिर जो है, और सबसे इतना लगाव था, सबसे इतना लगाव, और महिला होने के कारण ना वहां की जो महिलाएं थी ना, इतना ज्यादा वो हो जाती थी, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा। कुमाऊं में गई, कहां नहीं गई मैं, हर जगह गई, पिथौरागढ़ गई,
0: जी
1: आखिरी कोने तक गई मैं वहां,
0: जी
1: मेरा गढ़वाल, मेरा कुमाऊं। जब आज से मेरे को बहुत याद आती थी ना अपने पहाड़ की, तब मैं आकाशवाणी ने मेरा वो इच्छा पूरी आकाशवाणी से ही हुई।
0: जी
1: मैं अपने मायके भी नहीं जा पाई, इतना काम करती थी मैं हर जहां जाती थी मैं सोचती थी मेरा मायका ही। फिर मेरा
0: जी
1: उनसे उतना ही लगाव होता था। चार पांच कमरे थे मेरे, तो बच्चे सब बाहर ही रहते थे, तो फिर उनको बोलती थी कि यहाँ लगा लो और यहीं सो जाओ।
0: डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी, जो श्रोता संगीत सीखना चाहते हैं, तो आकाशवाणी के जो लोक संगीत के कार्यक्रम हैं या संगीत के कार्यक्रम हैं, किस तरह से उनके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं?
1: वो ये है कि जो लोक संगीत है उसको विधिवत जो है रिकॉर्डिंग तो होती है यहाँ पर, अच्छी होती है। गीत रचना है, रचना तो जो है रचनाकार की हो गई, वो लोकगीत नहीं बन सकते। लोकगीत तो वो है जो आम समाज ने बनाई, वो मेरा करके नहीं होता, वो हमारा करके होता है, सब सामूहिक रूप से होती है, और वो हजारों साल पुराने होते हैं, और वो वाचिक परंपरा उनकी रही है, मौखिक परंपरा। कान

0: लो, अगर इसमें मैंने गाया तो बोले गाई तो उनका है, भोटिया जनजाति का
1: जी,
0: सबको पता लग जाएगा, उनकी पहचान है वो, लोग गीत बनता है।
1: कार्यक्रम के समापन में आपकी दो लाइनें हो जाएं।
0: बारह

0: लो।
1: पद्मश्री डॉक्टर माधुरी वर्धवाल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को आपने अपने जीवन की जो संगीत साधना है और आकाशवाणी में जो सेवा की आपने, उससे जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम यादें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम यादें रेडियो की। पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बर्दवाल से रमेश चंद्रा की बातचीत।
3: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनका संकलन करेंगे। प्रदेश के सभी 11,733 BLO के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। साथ ही प्राप्त फॉर्मो को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी किया जाएगा। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के लिए बायोमास पैलेट से 24 घंटे गर्म पानी की क्रांतिकारी और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की जा रही है। ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ये सुविधा पिरूल, चीड़ की सूखी पत्तियां और खच्चरों की लीज से तैयार बायोमास पैलेट से चलने वाले गीजर के माध्यम से संचालित की जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम ये व्यवस्था केदारनाथ और लिंचौली में जल व्यवस्था सुचारू करने जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल केदारनाथ को पैदल मार्ग से खच्चर की लीद एकत्र करने और रुद्रप्रयाग के जंगलों से स्वयं सहायता समूह पिरूल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पर्यावरण के अनुकूल पहल न केवल केदारनाथ क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। NTA के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसका उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी देना है जहां उनका परीक्षा केंद्र स्थित होगा। प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजनों को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में देहरादून में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के व्यापक प्रचार प्रसार व जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से योग को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ावों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि अभियान का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। अभियान की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपी गई है। इसी क्रम में गंगा घाटी क्षेत्र में नगर पंचायत गंगोत्री और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने करीब 70 से 80 सूखा कूड़ा, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर व अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्र की। प्रदेश के 90 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 29 ट्रेडों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। करीब 8,164 सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देहरादून निरंजनपुर स्थित नोडल ITI के प्राचार्य मनमोहन कुड़ियाल ने बताया कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 10:35 का समय हुआ है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। कार्यक्रम में ये पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं। स्वर है किरण उल्फत गोयल का।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। आइए अब सुनते हैं रुचिका रानी की आवाज में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए रुहेलखंडी लोकगीत लोक संगीत के कार्यक्रम में FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी देहरादून है।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुँच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव OTT और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। श्रोताओं 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी के।

प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। श्रोताओं, ये आवाज की दुनिया है, शब्दों का संसार है, भावनाओं का सैलाब है और श्रोताओं का बेशुमार प्यार है जिसने बनाया है आकाशवाणी का सफर खुशनुमा। मैं आकाशवाणी हूँ, अतीत की बातों से वर्तमान तक, सूर्योदय से तारों की छांव तक, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, लोक परंपरा, रीति रिवाज के साथ मनोरंजन को लेकर भारतीयता की पहचान हूँ मैं आकाशवाणी हूँ। सैनिकों का जोश और जुनून, बच्चों की मुस्कान, युवाओं की शान, बहनों की रसोई की खुशबू, बुजुर्गों का अनुभव, हाँ, हर जन की आवाज हूँ मैं आकाशवाणी हूँ। कवियों की कल्पना, शायरों की शायरी, कभी खत्म नहीं होने वाला उपन्यास, हर त्योहार की बहार, लोकगीतों की बहार, मैं आकाशवाणी हूँ। गांव

श्रोताओं, आज आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के अवसर पर इस कार्यक्रम में होंगे 90 वर्षों की संक्षिप्त जानकारी। साथ ही हमारे श्रोता जुड़ेंगे अपने बधाई संदेश के माध्यम से। जी हाँ, आप भी जुड़ सकते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर, हमें बधाई संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं कार्यक्रम में वो पहला गीत जिसने आकाशवाणी के सफर को मनोरंजन की सुर पिरोई थी।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी की आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, आप भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बधाई संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7088000731 है और लगातार हमारे श्रोताओं के हमें मैसेज मिल रहे हैं, बधाई संदेश मिल रहे हैं।
1: जय हिंद। नमस्कार, मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। आकाशवाणी का सैनिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब एक सैनिक पहाड़ों पर, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, तब वो सैनिक एक आकाशवाणी के साथ जुड़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो देश के साथ जुड़ा है, उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसको प्रेरणा

देता है, उसको शक्ति देता है ताकि वो अपने आप से जुड़ा रहे, और ये जुड़ाव ही उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत करता है, तभी वो अकेले में भी आकाशवाणी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता है। ये कभी अपनों की याद नहीं आने देता। तो आकाशवाणी का सैनिक के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जो उसके अकेलेपन को भर देता है, जो उसको एक करुणा और प्रेम की भाव से ओतप्रोत कर देता है। आकाशवाणी एक माध्यम है देश को जोड़ने का, अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का। तो सैनिक भी इस आकाशवाणी से जुड़े हैं और आकाशवाणी इस सैनिकों के मनोबल में बहुत बड़ा योगदान देती है। जय हिंद, जय भारत।

0: श्रोताओं, रेडियो की कहानी कभी कभी जादुई सी लगती है। जब एक कोने से रेडियो से आवाज आती है, ये आकाशवाणी है, तो यूं लगता है कि छोटे से डिब्बे में बैठा इंसान बातें भी करता है, मनोरंजन भी करता है और जानकारी भी देता है। ये कितना कमाल है जिसने रेडियो को बनाया था। जी हाँ, वो रेडियो जिसने अपनी बात बीते दिनों की बात और सूचनाओं का आदान प्रदान किया, और इस सबसे महकता आंगन, गीतों की मिठास, महिला कार्यक्रमों में पकवानों की खुशबू, कृषि जगत, ग्रामीण अंचल से चौपाल तक और लोकगीतों की बहार, नाटक, रूपक, हर प्रकार की किरदार, जी हाँ भला, ये सब आकाशवाणी से ही सुनने को मिलते हैं। और हमारे श्रोता हमें लगातार मैसेज करते हैं और हमारे श्रोताओं की लगातार हमें मैसेज भी मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये मैसेज।
1: आकाशवाणी आज अपने गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे आकाशवाणी परिवार को इस सुनहरे वर्ष पर बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि प्रसार भारती आकाशवाणी के माध्यम से इसी प्रकार से आगे कार्य करती रहेगी, जनता की सेवा में तल्लीन रहेगी और जनता की आवाज बनती रहेगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी ने जनता और सरकार के बीच में जो सेतु का काम किया है, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और जनता के आवाज को सरकार तक पहुंचाने का जो माध्यम सशक्त रहा है, वो आकाशवाणी रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में आकाशवाणी ने बहुत सारे समस्याओं को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनके समाधान के लिए विभिन्न विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके हिमालय और नदियों और जंगलों की आवाज को योजनाकारों तक पहुंचाया है, और भारत सरकार की जो योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो काम किया गया वो बहुत ही प्रशंसनीय है।
0: आप थे पद्मश्री कल्याण सिंह रावत।

0: डॉक्टर बी के एस संजय हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पद्मश्री अवार्डी, अध्यक्ष एम्स गुवाहाटी। हमारा आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को बधाई है कि वो इस मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और जन जन तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आकाशवाणी इसी तरह से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता रहे।
1: श्रोताओं, रेडियो की कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे इंसान को सूचनाओं की जानकारी की इच्छा हुई, वैसे वैसे सूचना परक माध्यमों का विस्तार हुआ और ऐसे में रेडियो का जन्म हुआ।

श्रोताओ, दुनिया में रेडियो प्रसारण की बात करें तो फरवरी 1920 में जेम्स फोर्सी मार्कोनी ने रेडियो के प्रसारण की शुरुआत की थी और उसके बाद दुनिया भर में रेडियो प्रसारण करने केंद्र खुलते चले गए। सबसे पहले पिट्सबर्ग अमेरिका में और उसके बाद लंदन में इंग्लैंड में खोला गया रेडियो प्रसारण केंद्र और इसके साथ साथ दुनिया भर में रेडियो को लेकर हलचल होने लगी कि ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अच्छा माध्यम है। और भारत में भी रेडियो के प्रसारण को लेकर हलचल आरंभ हुई और रेडियो प्रसारण आरंभ हुआ था 1921 में बम्बई से। जी हाँ, और इसके बाद 23 जुलाई 1927 को तत्कालीन वॉयस लॉर्ड इरविन ने मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब से रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण का उद्घाटन किया।

0: नमस्कार। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर मैं आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: आप थी मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड राधा रतूड़ी। श्रोता, 1930 में भारत सरकार के उद्योग एवं श्रम मंत्रालय द्वारा प्रसारण के अधिकार अपने हाथ में लिए गए और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से रेडियो की प्रसारण आरंभ होने लगे। और 8 जून यानी कि आज ही के दिन 1936 को लॉर्ड लिन लिथगो ने इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया और यहीं से रेडियो प्रसारण की आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

0: बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
1: आप थी उत्तराखंड रत्न डॉक्टर लक्ष्मीकांत।

मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार के सदस्यों को

श्रोताओं, इसके बाद अनेक रेडियो प्रसारण केंद्र भारत में आरंभ होने लगे। 24 अक्टूबर 1936 को सूचना एवं प्रसारण विभाग स्थापित किया गया। नवंबर 1947 में महात्मा गांधी ने रेडियो को दैविक शक्ति के रूप में मानते हुए एक चमत्कारिक ताकत कहा था। 1957 में विविध भारती नाम से रेडियो कार्यक्रम आरंभ होने लगे और तब ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया और यहीं से आकाशवाणी शब्द का प्रयोग प्रचलन भी आरंभ होने लगा।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम उस अमूल्य योगदान को नमन करते हैं जो आकाशवाणी ने देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक भाषाओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में दिया है। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों से लेकर लोक कथाओं, रीति रिवाजों और पर्व त्योहारों तक आकाशवाणी ने उत्तराखंड की जो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है उसको जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही सफल प्रयास किया है। उत्तरायणी मेला हो, चाहे नंदा देवी राजात मेला हो, गौचर मेला हो, पूर्णा गिरिमा भगवती का मेला हो और अनेकों ऐसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन रहे हैं, उनकी झलक और उनके महत्व को भी आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया है। दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देकर आकाशवाणी ने न केवल लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष जन सेवा, संस्कृति संरक्षण और लोक चेतना की प्रसार की एक गौरवशाली यात्रा की प्रतीक हैं। आकाशवाणी के योगदान और 90 वर्ष पूर्ण होने पर मैं हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं और साथ ही में हमारे जो श्रोतागण दूरस्थ क्षेत्रों से इस कार्यक्रम को, बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रमों को आकाशवाणी के माध्यम से सुनते रहे हैं, मैं उनको भी इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
1: और लगातार हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर बधाई संदेश हमें भेज रहे हैं। चलिए आपको भी कार्यक्रम में जोड़ते हैं और हमारे श्रोता जो बधाई हमें संदेश लिख रहे हैं, आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार सुरलकर। साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम रियाज, रेफाकत मोहम्मद रिहान, संबीन परवीन और माहिरा नूर। और साथ ही बधाई संदेश हमें लिख भेजा है आप हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगपाल सिंह डागला, जीएस नायक, शुभ और समस्त डागला परिवारजन। साथ ही ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है मोटक का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम पटेल, ज्योति शुभ की देवी किशन, भावना मन मानसो कनिका पटेल।

0: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मुझे बहुत खुशी मिल रही है ये बता कि आकाशवाणी, जी हाँ आकाशवाणी 90 वर्ष पूरी कर चुकी है। उनको ढेरों बधाई कि आकाशवाणी ने 90 वर्षों तक सब लोगों का, विश्व के, हिंदुस्तान का, सबका मनोरंजन किया है। और खासकर मेरे बचपन की इतनी सारी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, वो भूले बिसरे गीत, कुंदन लाल सहगल की आवाज, सुबह उठते थे और पापा समाचार लगाते थे रेडियो में, देवकी नंदन पांडे के समाचार सुनिए। और जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी आई तो हमने एक नाटक किया था एम के रैना के निर्देशन में, चेरी ऑर्चर्ड। उसका हमने रेडियो पर, और बिल्कुल अलग था, स्टेज पे करने की बात अलग थी, और रेडियो पर जब हमने ये चेरी का बगीचा किया, उसको आज भी लोग याद रखते हैं, बहुत सुनहरी यादें। हाँ, एक और बात, मैं आईपीएल का मैच देख रही थी और एक बात बता दूं आपको, जो बचपन में रेडियो में जो मैच सुनने का, देखने का नहीं, सुनने का, मतलब सुनते थे, वो पूरा नजारा आंखों के सामने कि कैसे बिशन सिंह बेदी ने क्या बॉलिंग की और सुनील गावस्कर ने ये बॉल पे 100 रन मारे, क्या कमेंट्री सुनाते थे लोग, लाइव में उतना मजा नहीं है। माफ करना जिन बच्चों ने रेडियो में मैच की कमेंट्री नहीं सुनी है, तो आपने मैच का मजा नहीं लिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आकाशवाणी को।
1: और ये मैसेज है हमारे श्रोता, लिखते हैं आप हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और इनके परिवारजन, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष। साथ ही मैसेज है श्रोता, लिखते हैं रामगंज खंडवा से विजय बहोबिया, कविता सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सोलोनी और पेंटर बाबू। साथ ही ये बधाई संदेश हमें लिख भेजा है, आप हैं जीटीबी मार्केट अहमद मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर साहब अंसारी, परवीन, रवीना और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता, लिखते हैं आप हैं बुलराणा वड़सिंह की महाराष्ट्र से।

मानकर शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार साथ ही ये मैसेज लिखते हैं। आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलाज सलमा अरहम और साथ में मोहम्मद आलम हाशमी। और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु लाडी, विशाल शालिनी और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजित कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत गुर, कीरत गुरु, शब्द सिंह, राहुल।

0: रेसलर पूजा ढाडा अर्जुन अवार्डी और आकाशवाणी ने जो है भारतीय स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया है और हमारा पल पल साथ दिया है, चाहे कोई न्यूज हो, बधाई हो या किसी भी तरीके की चीजें हो, तो एक यादगार जो है वो हमारे लिए आकाशवाणी चैनल बन गया है और 90 साल पूरे करना अपने आप में बेमिसाल है। आपको बहुत बहुत बधाई और मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इंडियन स्पोर्ट्स के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। धन्यवाद।
1: और ये बधाई संदेश हमें लिख भेजा है आप हैं श्रोता गुबला झारखंड से, एस एम जावेद शंकता अंजुम और साथ में नजबुल हुदा। बधाई संदेश हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं आप हैं करताल जिला रंगारेडी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल बहेश्वरी प्रवाली का विष्णुवर्धन और विघ्नेश। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जिन्होंने मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता रश्मि नीलम और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा राल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा मंजू निशान कौशिक की दीपाली युवन और आर के राजा। श्रोताओं आकाशवाणी को हमारे श्रोताओं का लगातार प्यार मिलता है, चाहे वो हमारे बधाई संदेश हो, चाहे श्रोताओं की फरमाइश हो, चाहे उनकी पसंद के दूसरे कार्यक्रम हो, लगातार हमारे श्रोता उन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं।

0: 90 वर्ष आकाशवाणी के पूरे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको और आपके सभी सुनने वालों को दिल से बधाई देता हूं और ये खुशी महसूस करता हूं कि 90 वर्ष का जो जश्न मनाने का हमें मौका मिला है। उम्मीद ये करते हैं कि अगर मतलब जिंदगी में सही सलामत रही, 100 साल का जश्न भी हम मनाएंगे।
1: ये थे हमारे नियमित श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी मुरादाबाद से। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं, सिंधोली बरेली से इशरत अली, सुभान अली, शहजान अली और साथ में इनकी परिवारजन, ये बधाई संदेश हमें लिख भेजा है आपने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, साथ में सीटी छाबड़ा। साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं करनाल से गुरविंद्र सिंह पादा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंद्र सिंह पादा और साथ में जी एम एस राम गढ़िया। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गांव जाखोद राजस्थान से शंभोदिया, खटक, पिमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा। और लगातार हमारे श्रोताओं की बधाई संदेश मिल रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के अवसर पर। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनसुरेहन। साथ ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं जेलो रायगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू और साथ में तरुण यादव। साथ ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आपने मैसेज लिखा है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदेल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी आर्ज और साथ में इनके परिवारजन।
2: वर्ष पूरे हो रहे तो आकाशवाणी को हम बधाई देंगे, उसने बहुत सब कुछ किया और अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिन पे दिन अच्छे मनोरंजन से अवगत करा रही है, शिक्षा सूचना से, और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हम लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो आकाशवाणी ऐसी चीज है कि इसके माध्यम से सभी को मतलब लाभ होता है।
1: आप थे मध्य प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता मांगीलाल। और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान ने। ये बधाई संदेश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप है नजीबाबाद से आरजी मनोज वर्मा। और साथ ही ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप ही कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।

श्रोताओं, इस प्रकार से भारत में अनेक प्रसारण केंद्र आरंभ हुए और आकाशवाणी से प्रसारण आरंभ होने शुरू हुए। तो 15 सितंबर 1948 को केंद्रीय समाचार संगठन का आरंभ हुआ, जिसने समाचार प्रसारण आरंभ किए थे। विदेश प्रसारण सेवा आरंभ होने से विदेशों में भी प्रसारण सेवा का विस्तार हुआ। 7 जुलाई 1957 को कार्यक्रम विनिमय एकांश की स्थापना हुई। वहीं 8 अक्टूबर 1957 को ऑल इंडिया रेडियो नाम आकाशवाणी हुआ। साथ ही जून 1974 से संस्कृत में आकाशवाणी से समाचार बुलेटिन आरंभ हुए थे। 1 नवंबर 1967 से विज्ञापन सेवा आरंभ हुई थी और अप्रैल 1976 को आकाशवाणी और दूरदर्शन अलग अलग संगठन हुए थे।

श्रोता सुन रहे कार्यक्रम गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और लगातार हमारे श्रोताओं की हमें बधाई संदेश मिल रहे हैं और ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नीति नोमया, किरण शर्मा। साथ ही मैसेज लिखते हैं आप हैं उन्नील, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया, धाकर धूला, परवीन रियांश, प्रतीक वाकतरिया। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आयन राज, रोहित और साथ में पीयूष कुमार। मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, लाडू कोल मल्होत्रा, साथ में हैं पापा इनके नाना चंद मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का। साथ ही मैसेज हमें लिख भेजा है आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आर सी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और साथ में हैं बुपुल कामड़े। साथ ही मैसेज हमारे श्रोता लिखते हैं गांव बडाकर निम्नाबाद, जिला जिंद हरियाणा से जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह और साथ में इनके परिवारजन, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू बोलू, राहुल दशमी, प्रियंका सृष्टि, बनियार, शौर्य, दिनेश और साथ में इनके परिवारजन, कांट से ही मोहम्मद फुरकान सिद्दीकी और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गांधी चौक पाड़वी राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी मनीष पवार, आपने चंद पंक्तियाँ लिखी हैं। सुरमई सुरों की पावन धारा, 9 दशकों का सफर तुम्हारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, गूंज रहा है नारा प्यारा। बचपन की वो याद पुरानी, दादी नानी की सुंदर कहानी, विविध भारती के मीठे तराने, हर दिल से इसकी महतरानी। खेल खलिहान चौपालों तक ज्ञान की ज्योति जलाई, देश की सबसे विश्वसनीय आवाज़ तुमने हर घर पहुँचाई। 90 वर्षों का अनुपम उत्सव हम सब मिलकर आज मनाते हैं, सदा अमर रहे गूंज तुम्हारे हृदय से हम बधाई गाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर सी पंक्तियों के लिए। साथ ही बधाई संदेश लिखते हैं आप हैं देहरादून चक्राता रोरिदगा मोहल्ला से सुनील चावला, मीना और साथ में इनके परिवारजन। साथ ही ये बधाई संदेश हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आपने मैसेज लिख भेजा है नंगल खेड़ा फगवाड़ा से बालकृष्ण शर्मा, परवीन मुनीश और साथ में हैं राहुल शर्मा, गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, इब्राहिम सद्दाम।

0: कुमार सेन, बैडमिंटन कोच और देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्डी, आकाशवाणी के 90 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं विशेष रूप से आकाशवाणी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जिस तरह से खेलों को और हमारे खिलाड़ियों का मनोबल को वो बढ़ाने का काम करती है, इसी तरह से वो आने वाले समय में भी और अधिक इसमें काम करेगी और इससे डेफिनेटली हमारे जो खिलाड़ी हैं, उदीयमान खिलाड़ी हैं, और हमारे खेल को इससे बहुत फायदा होगा।
1: साथ ही बधाई संदेश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है। आप हैं नगीना बिजनौर से, मिसबा शमसी देहरादून से, श्रुति शर्मा। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम डॉक्टर आमिर दानिश राज और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिख रहे हैं, आप हैं पटियाला से मुकेश बत्ता और इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता लिखते हैं धांडी नादूरा से श्री कृष्ण बाठे और इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लगातार लिख रहे हैं, ये मैसेज लिखते हैं, आप हैं करूला मुरादाबाद से अयुब खान इरम गुड़िया और साथ में शोएब खान, सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान बारसी, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से आप है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मेघ मूणत और साथ में चेतन हटा, जिला मुरादाबाद गांव महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद, मोहम्मद दानिश और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है, आप है रघुवीर नगर से दीरलावर खान, हसीना बानो, एली जैन और इनकी परिवारजन।

श्रोताओं, रेडियो के साथ साथ सामुदायिक रेडियो का भी प्रसारण आरंभ हुआ था 1993 में, जब 18 घंटे की FM प्रसारण की शुरुआत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हवाई तरंगों पर सभी का अधिकार है। और उसके बाद अनेक सामुदायिक रेडियो केंद्र देहरादून समेत अनेक भारत भर में खोले गए। श्रोताओं, और 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी दिल्ली से फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ और उसके बाद अनेक रेडियो चैनल भी आरंभ हुए। श्रोताओं, रेडियो आज दुनिया भर में ग्लोबल हो रहा है, डिजिटल होता जा रहा है और इसमें नए नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं। इसी तरह प्रसारण आप तक पहुंचता रहे। श्रोताओं, रेडियो प्रसारण को लेकर हमारे श्रोताओं ने आज के इस प्रोग्राम के लिए बधाई संदेश लिख भेजे हैं। आप हैं लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी रीति कुरादित्य कसाना। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने ये मैसेज लिख भेजा है, करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, अल्ताफ आशिक हुसैन और साथ भी मुन्ना अंसारी। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले और इनके परिवारजन। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं तेलंगाना स्टेट करीमनगर से लक्ष्मी नारायण विजय अभिनय और साथ में हैं साई किरण। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका गव्या भाई, सुचा सिंह पाठक और साथ में इनके बहुत सारे मित्र। साथ ही मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिला किशनगंज बिहार से श्रोता हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, आप हैं गंज डिडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और साथ में इनकी परिवारजन। मॉडल टाउन करनाल से सुधी नूतन और साथ में इनके परिवारजन। हैदराबाद बी एन टी नगर से मोनिका बालू और विनय कुमार।

आप हैं यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़सी और विनोद खड़से। साथ ही मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा कुल से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। साथ ही मैसेज लिखने वाली श्रोता आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और साथ में इनकी परिवारजन। साथ ही मैसेज लिखने वाली श्रोता आप हैं गाँव ककराली पंचकूला से वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्मी और उनकी परिवारजन। हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार हमें मैसेज लिख रहे हैं और श्रोता वहाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और साथ ही बधाई संदेश प्रेषित करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आकाशवाणी के इस अवसर पर आपने हमारे प्रोग्राम में प्रतिभा किया और हमें बधाई संदेश प्रेषित किए। श्रोतम, आकाशवाणी के प्रसारण का ये गौरवशाली पल है जिसमें अतीत का आभास है, वर्तमान की अनुभूति और भविष्य की संभावना है, जो इस प्रसारण यात्रा को सुगम और सरल बनाती है। और इस प्रसारण तक आप तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी के हर कर्मचारी और अधिकारी का योगदान रहता है, जिसमें कार्यक्रम तकनीकी प्रशासनिक विभाग के साथ साथ हमारे वार्ताकार, साहित्यकार, कलाकार, आकस्मिक उद्घोष, कंपियर, बीए के साथ साथ आप सभी श्रोता भी शामिल हैं, जो इसे रेडियो के प्रसारण को आप तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्रोताओं, इसी तरह आपका और हमारा ये साथ बना रहेगा और ये आकाशवाणी के प्रसारण का सिलसिला युगों युगों तक चलता रहेगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी के, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी मंजुला नेगी की। यह आकाशवाणी देहरादून है। 12
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

0: की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. The Prime Minister said the journey of Garib Kalyan has become a collective movement towards human empowerment and realizing the dream of a Vikasit Bharat. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, becoming the last state or union territory to do so. The National Health Authority and the Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding for the implementation of the world's largest publicly funded health assurance scheme. The MOU will be signed in the presence of Chief Minister Shubhendu Adhikari and Union Health Minister JP Nadda in Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the three-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association CPA India region in Chandigarh this afternoon. Our correspondent reports legislators from across the country will attend the CPA conference being hosted by the Haryana Assembly. Lok Sabha Speaker Om Birla and other dignitaries will address the inaugural session during the

0: Three-day conference, deliberations will be held on topics like the role of legislatures in the nation-building Vikasit Bharat 2047, artificial intelligence and making democratic institutions more effective. The National Testing Agency NTA has issued the city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. Registered candidates can now check their allotted exam city by logging in to the official website using their application number and password. According to a public notice issued by the agency, the re-examination will be conducted in pen and paper mode from 2 p.m. to 5:15 p.m. across 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA clarified that the exam city intimation slip is not the admit card and is being issued solely to inform candidates about the city where their examination center will be located. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. This red-letter day marks a special moment in the cultural information and broadcasting history of the country, where a voice was born that would echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcasts its programs in over 100 countries. The Enforcement Directorate is conducting searches at four locations across the Mizoram-Myanmar border, Tripura-Bangladesh border and West Bengal in a money laundering case linked to a drug trafficking network. The case is related to NCB seizure of over 49 kilograms of methamphetamine and 40 grams of heroin by the Agartala Zonal Unit. The investigation has revealed an organized cross-border syndicate sourcing methamphetamine from Myanmar, illegal earnings of more than 142 crore rupees linked to the drug trafficking network have been identified so far. In the Philippines, five people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. And with that, we end this news bulletin.
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन्य जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की प्रदेश के 10 शहरों में भूकंप की संवेदनशीलता का अध्ययन करेगा। प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब 24 घंटे यात्रियों को गर्म पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने उप जिला चिकित्सालय ज्योतिर्मठ का निरीक्षण कर मरीजों व तीमारदारों से संवाद किया और पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड में हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध खैरालिंग मेला पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए आयुषी चौहान के गाए भजन।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आयुषी चौहान की गाई भजन। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

घर गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रतिभा नैथानी का नमस्कार। बहनों, हम स्त्रियां परिवार की धुरी हैं। परिवार के सभी सदस्य इस धुरी के इर्द गिर्द रहें, यह इच्छा प्रत्येक महिला की होती है। लेकिन कभी काम के बोझ के कारण तो कभी कुछ अन्य कारणों से परिवार के सदस्य अपना समय अलग अलग बिताने लगते हैं। ऐसे में हम बहनों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहे, तो इसका सबसे सरल उपाय है परिवार के साथ समय बिताना। बहनों, परिवार के साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपसी संबंध को गहरा करता है। व्यस्त दिनचर्या में से कुछ पल निकालकर अपने प्रियजनों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप अपने परिवार के साथ इन बेहतरीन तरीकों से समय बिता सकते हैं, जैसे भोजन साझा करें, दिन में कम से कम एक बार, जैसे रात का खाना या सुबह का नाश्ता सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाएं और पूरे दिन की बातें साझा करें। गेम नाइट, हफ्ते में एक दिन ऐसा तय करें जिसमें आप फोन वगैरह से दूर रहेंगे और लूडो, कैरम या ताश जैसे बोर्ड गेम्स खेलें। वॉक या आउटिंग, शाम के समय आसपास के किसी पार्क में सब लोग एक साथ टहलने जाएं या वीकेंड पर पिकनिक का प्लान बनाएं। घर का काम एक साथ करें, जैसे खाना बनाने या बगीचे में पौधे लगाने या सिंचाई करने जैसे काम सब मिलकर करें। इससे काम भी जल्दी होता है और साथ में वक्त भी बीतता है। मूवी या शो देखना भी एक अच्छा तरीका है। रात को सब लोग मिलकर कोई अच्छी पारिवारिक फिल्म या वेब सीरीज देखें। परिवार के साथ समय बिताने से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और बच्चों को बेहतर भावनात्मक विकास मिलता है। यह सदस्यों के बीच विश्वास और अपनत्व की भावना पैदा करता है, जिससे संपूर्ण पारिवारिक जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है।

अपनों के साथ समय बिताने से प्यार और अपनापन बढ़ता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का संबल बनता है। हंसी मजाक और सुकून भरे पल बिताने से शरीर में खुशी वाले हॉर्मोन्स, जिनको एंडोर्फिन कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं, जिससे तनाव और चिंता दूर होती है। तो बहनों, इस चर्चा के बाद अब समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

0: वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर।

0: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: बहनों, उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जो राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध यह राज्य अपने शानदार हिल स्टेशनों, साहसिक गतिविधियों और आध्यात्मिक स्थलों के माध्यम से हर साल करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्तराखंड को भारत का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ पर स्थानीय संस्कृति और गढ़वाली कुमाऊनी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और पर्यटकों को पारंपरिक जीवन शैली का अनुभव मिलता है। रोजगार और पर्यटन के आपसी संबंध को और अधिक विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर आशा बाला। तो आइए सुने डॉक्टर आशा बाला जी को।
5: उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यहाँ वैदिक संस्कृति के कुछ अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवता या देवी का मंदिर है। इस राज्य में भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक नगरों में से एक हरिद्वार में प्रतिवर्ष करोड़ों पर्यटक आते हैं। हरिद्वार के निकट स्थित ऋषिकेश भारत में योग का एक प्रमुख स्थल है, और जो हरिद्वार के साथ मिलकर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल का निर्माण करता है। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री जैसे धामों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ है, यही वजह है कि उत्तराखंड को पर्यटन का स्वर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड हिमालय राज्य होने के कारण नदियों, पर्वतों, झरनों, झीलों, आकर्षक दृश्य तथा स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण से युक्त है। यहाँ की भूमि के कण कण में देवताओं का वास है। आदिकाल से ही यह क्षेत्र तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यात्री यहाँ से सुखद और यादगार अनुभव के साथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचते हैं। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, शांत वातावरण, अद्भुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को आर्थिक उन्नति का शुभ अवसर प्रदान करती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि उत्तरांचल की आर्थिकी का मुख्य आधार पर्यटन है। विगत कुछ वर्षों में उत्तराखंड में पर्यटन को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। पर्यटन हेतु एक बेहतर स्थान के रूप में राज्य ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। देवभूमि उत्तराखंड मंदिरों, मठों, पर्यटन स्थल के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ नैनीताल, मसूरी, देहरादून, कौसानी, रानीखेत जैसे अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो वहीं विश्व धरोहर उद्यान, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आदि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किए जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में पर्यटन विकास को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सके, संगठनात्मक रूप से पर्यटन सेवाओं का विस्तार किया जा सके तथा इसके माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। पर्यटन उद्योग विभिन्न आर्थिक सेवाओं का सम्मिलित रूप है। इसमें होटल व रेस्टोरेंट, परिवहन, यात्रा संचालन आदि व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से पर्यटकों पर पूर्णतया आश्रित हैं, जबकि बहुत सी अन्य सेवाओं का पर्यटकों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। पर्यटन से किसी भी क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों को रोजगार प्राप्त होता है तथा पलायन में भी कमी आती है। एक निर्यात व्यापार की तरह यह उद्योग विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है, जो जो कि व्यापार संतुलन को सुधारने में भी सहायक होता है। साथ ही पर्यटन उद्योग में आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सभी वस्तुएं और सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। पर्यटन उद्योग का अस्तित्व एवं आय पर्यटकों द्वारा किए गए व्यय पर निर्भर करती है, न कि व्यापार के प्रबंधन के स्तर पर। पर्यटन व्यवसाय के विकास में अनेक पर्यटक सहभागियों जैसे ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी और परिवहन सेवा संचालक आदि के समग्र प्रयास सम्मिलित होते हैं। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग के प्रभावशाली विकास के लिए पर्यटन विकास परिषद की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य विश्व पर्यटन के मानचित्र पर उत्तराखंड को एक अग्रणी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। वहीं राज्य में स्थानीय समुदाय तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पर्यटन के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का विकास करना भी शामिल किया गया है। पर्यटन को रोजगार तथा आय के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। पर्यटन के विकास के लिए पुरस्कार और सम्मान योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में पर्यटन से संबंधित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास, उत्तराखंड अतिथि तथा उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा पोषित प्रसाद तथा स्वदेश दर्शन योजनाओं के माध्यम से भी राज्य में स्थानीय पर्यटन का विकास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन उद्योग विकसित करने के उद्देश्य से 13 जनपदों में 13 पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई है। उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की नीति में निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, मानव संसाधन का विकास, प्रचार प्रसार, तीर्थाटन विकास, सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, इको पर्यटन, मनोरंजन पर्यटन, आरामदायक पर्यटन, संस्थागत पर्यटन आदि का विकास, पर्यटन आधारित शिल्प तथा ग्रामीण पर्यटन आदि कार्यक्रम विकसित करने का प्रयास किया गया है। दीक्षित रिपोर्ट 2005 के अनुसार उत्तराखंड में मुख्यतः धार्मिक, आरामदायक एवं अवकाश तीन वर्गों तथा विशेष रुचि वाले पर्यटक, साहसिक व प्रकृति प्रेमी ही आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आध्यात्मिक विकास को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा, गंगोत्री के शीतकालीन वास स्थल मुखबा, केदारनाथ व बद्रीनाथ पुनर्निर्माण की योजनाओं को मूर्त रूप मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार भी पर्यटन विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और अब पर्यटन उत्तराखंड में आर्थिकी का बड़ा जरिया बन गया है। उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और स्थानीय निवासियों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। ऋण और अनुदान योजना के जरिए पर्यटन से जुड़ी 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की योजनाओं पर वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना राज्य के स्थानीय लोगों और युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए सबसे सफल योजनाओं में से एक है। योजना में युवाओं को यात्री वाहन खरीदने या होटल, रिजॉर्ट, ढाबा और स्थानीय कैफे खोलने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण और पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान परियोजना लागत का 33% तक दिया जाता है। होमस्टे विकास योजना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए सरकार ने होमस्टे को प्रोत्साहित किया है। योजना के तहत स्थानीय लोगों को अपने घरों में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। नई पर्यटन नीति 2023 नीति का लक्ष्य राज्य के अनछुए क्षेत्रों में पर्यटन को फैलाना, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन का विकास करना है। श्रेणी आधारित अनुदान इस योजना में दिया जाता है। सबसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन इकाई लगाने पर पूंजी निवेश का 50% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। राज्य में लगभग 46 रोपवे परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे निर्माण के साथ साथ संचालन में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। योग और वेलनेस पर्यटन राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और वेलनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन के द्वारा रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, जो धार्मिक सांस्कृतिक मेले एवं त्यौहार, साहसिक एवं जल क्रीड़ा, प्राकृतिक एवं जीव जंतु पर्यटन, दृश्य अवलोकन, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण पर्यटन के रूप में मौजूद है। उत्तराखंड के ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे चार धाम तीर्थ स्थल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माने जाते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, बैजनाथ, पिरान कलियर, हेमकुट साहिब, नंदा देवी, ओली, मालदेवता, टोंस घाटी, धनौल्टी, टिहरी, जिम कार्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, विंसर वन्यजीव अभ्यारण, नंदा देवी नेशनल पार्क, मालसी डियर पार्क, गोविंद वन्यजीव सेंचुरी से लेकर मसूरी, नैनीताल, फूलों की घाटी, अल्मोड़ा, कौसानी और ओली जैसे पर्यटक स्थलों से आज एक और पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में पर्यटकों को सुविधाजनक पर्यटन सुविधाएं मुहैया कराते हुए रोजगार के नए द्वार खुले हैं, जिनमें निजी होटल, पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और रैन बसेरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में पर्यटन के माध्यम से स्थानीय जनहेतु रोजगार की उपलब्धता करवाने तथा पलायन रोकने के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी आवश्यक है। राज्य में रोजगार स्रोतों के अभाव तथा क्षेत्रीय पलायन जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा उनके समाधानों पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा उन समाधानों को पर्यटन के माध्यम से प्राप्त करने के प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। इसके साथ ही पर्यटन का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक हो जाता है, ताकि सभी विकसित तथा संभावना युक्त पर्यटन स्थलों को समान महत्व प्राप्त हो सके। किसी एक क्षेत्र पर ही पर्यटकों का अत्यधिक बोझ पड़े, इसके लिए पर्यटन क्षेत्र की पहचान, परिवहन व निवास हेतु सुविधाओं का विकास तथा निजी व सरकारी तंत्र की सजगता भी आवश्यक है। राज्य में पर्यटन सेवा संचालकों द्वारा पर्यटकों के समक्ष राफ्टिंग, एंगलिंग, काइकिंग तथा ट्रैकिंग जैसे तथा ट्रैकिंग के साथ साथ कैंपिंग, पक्षी अवलोकन तथा अन्य प्रकार के साहसिक क्रियाकलापों के समृद्ध विकल्प रखने चाहिए। साथ ही पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे को विकसित करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इससे पर्यटक स्थानीय संस्कृति की दैनिक जीवन संबंधी गतिविधियों का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यह उनके प्रकार के अनेक आकर्षणों को परस्पर समृद्ध कर पर्यटन को विकसित करने का एक माध्यम बनेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार, दीनदयाल उपाध्याय गृह विकास आवास, उत्तराखंड अतिथि तथा उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान आदि राज्य पोषित तथा प्रसाद और स्वदेश दर्शन जैसी केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से भी स्थानीय पर्यटन का विकास किया जा रहा है। वहीं पर्यटन सेवा के विकास के लिए विभिन्न पूंजी निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु होटल मैनेजमेंट तथा कैटरिंग संस्थान स्थापित किए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटकों के आवास हेतु निजी होटल, पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला और रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है। साथ ही पर्यटन संपर्क केंद्र और सूचना केंद्रों की भी स्थापना की गई है। परिवहन सेवा को सुगम तथा सुचारू बनाने के लिए राज्य में बस सेवा के अतिरिक्त रेल तथा हवाई सेवा के विकल्प हैं। राज्य में वर्ष दर वर्ष पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अधिकांश विदेशी पर्यटक अवकाश तथा प्राकृतिक पर्यटन तथा इसके पश्चात स्वास्थ्य व योग के लिए यात्रा करते हैं। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना पर्यटन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और स्थानीय निवासियों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पर्यटन से जुड़ी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं पर वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान प्रदान किया जाता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्थानीय लोगों और युवाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को यात्री वाहन जैसे टैक्सी और बस खरीदने या होटल, रिजॉर्ट, ढाबा और स्थानीय कैफे खोलने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण और पूंजीगत अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाती है। परियोजना की लागत का 33% सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। होम स्टे विकास योजना यानी ये होम स्टे विकास योजना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें स्थानीय लोगों को अपने घरों में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के नए स्रोत तैयार हो रहे हैं। नई पर्यटन नीति 2023 के तहत राज्य के अनछुए क्षेत्रों में पर्यटन को फैलाना, इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन का विकास करना है। श्रेणी आधारित सब्सिडी के तहत राज्य को ए बी सी श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी सी सबसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में श्रेणी सी में पर्यटन इकाई लगाने पर पूंजी निवेश का 50% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इसमें स्टाम्प शुल्क में 7% छूट, मार्केटिंग प्रोत्साहन और कौशल प्रशिक्षण की सुविधा शामिल है। अन्य प्रमुख पहलों में रोपवे परियोजनाओं को लिया जा सकता है। पूरे राज्य में लगभग 46 रोपवे परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे निर्माण के साथ साथ संचालन में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। योग और वेलनेस पर्यटन राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और वेलनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में पर्यटन विकास के समक्ष चुनौतियों के रूप में राज्य का अधिकांश पर्वतीय स्वरूप होना माना जाता है। यहाँ की आर्थिकी को अधिक सशक्त करने के लिए और विराट प्रयास करने की आवश्यकता है। पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों का विकास होना, पर्वतीय क्षेत्रों में उपयुक्त सेवाओं की कमी और प्रचार प्रसार सेवाओं का विकास करना भी सरकार के समक्ष एक चुनौती है।
4: पर्यटन के जरिए स्वरोजगार, डॉक्टर आशा बालाजी से अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता कि किस तरह से उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। होम स्टे के माध्यम से लोग पर्यटकों को घर जैसी सुविधाएं देकर खूब अच्छी कमाई कर रहे हैं और इस कार्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। तो इस वार्ता के बाद अब समय है एक गीत का, तो आइए सुने ये गीत।

बहनों, इस गीत के साथ ही आज का घर गृहस्थी कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी बहन प्रतिभा नथानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम घर गृहस्थी। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:05 हुए हैं। दीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। देहरादून जिले के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मौजूदा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री जोशी ने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह भी किया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जल जीवन मिशन का सबसे ज्यादा फायदा पर्वतीय जिलों को मिल रहा है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 76,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसमें 1,244 योजनाएं बननी थी, जिनमें से 1,140 पूरी हो चुकी हैं। शेष इस

0: के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी।
1: जल जीवन मिशन, जिसमें सभी रूरल हाउसहोल्ड को फंक्शनिंग टैप वाटर कनेक्शन दिया जाना था, ये हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रहा है। इसमें अभी तक 76,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, हमारे सभी रूरल हाउसहोल्ड को इसमें सेचुरेट किया जा चुका है। साथ ही यदि स्कीम्स की बात करें तो 1,244 स्कीम्स इसमें बननी थी, इसमें से 1,140 स्कीम हमारी पूर्ण हो गई हैं, लगभग 92% स्कीम्स में कार्य पूर्ण हो गया है। शेष स्कीम में भी इस वर्ष के अंत तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें शिकायत समाधान के लिए पूरा तंत्र है, DWSM यहाँ पर बैठता है, उन शिकायतों को देखा जाता है। कुछ जगह पर फंडिंग चैलेंज आने की वजह से ठेकेदारों के द्वारा काम बीच में स्लो कर दिए गए थे, परंतु अभी उनके द्वारा लगातार काम में तेजी लाई जा रही है, और जहां जहां भी स्रोत का इश्यू है या अन्य इश्यू है उनको भी रिजोल्व करा के इन स्कीम्स को टाइमली कंप्लीशन कैसे हो उस पर कार्य किया जा रहा है।
0: पौड़ी जिले में भू कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धुमाकोट तहसील के ग्राम लुविंठा मल्ला में भू कानून के उल्लंघन से जुड़े एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने लगभग 27 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्जा ले लिया है। धुमाकोट के उपजिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित प्रकरण में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदने का मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण तथा जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके तहत भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में राजस्व विभाग ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जिले में भू कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के विरुद्ध प्रशासन का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देहरादून जिले में कालसी विकास खंड के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप के तहत सितंबर 2024 में स्थापित इस यूनिट ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट में कोल्ड और हॉट प्रेस्ड तकनीक से सरसों तेल का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना सहायता, बैंक ऋण और महिलाओं के अंशदान से शुरू हुई ये पहल आज स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का स्थायी स्रोत बन चुकी है। एक रिपोर्ट।
3: फेडरेशन से जुड़े 14 ग्राम संगठन, 120 स्वयं सहायता समूह और 764 महिलाएं उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। यूनिट से प्रतिमा करीब 70,000 रुपए की आय हो रही है, जबकि स्थापना के बाद से अब तक 24 से 25 लाख रुपए मूल्य का सरसों तेल बेचा जा चुका है। इसके अलावा 4 से 5 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है। महिलाओं द्वारा तैयार सरसों तेल हिलांस ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध है। उत्पाद की गुणवत्ता के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ने यूनिट से 1,700 लीटर सरसों तेल की खरीद की है, जिससे महिलाओं को 5 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई। वहीं IIT रुड़की को भी यहां से नियमित आपूर्ति की जा रही है। तेल उत्पादन के साथ निकलने वाली सरसों की खल भी आय का अतिरिक्त स्रोत बन रही है, जिसे किसानों और पशुपालकों को 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों से भी उत्पाद की बिक्री की जा रही है, जिससे बाजार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रीप के जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि कालसी की यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विभिन्न संस्थानों से मिल रहे सहयोग के कारण उत्पादों को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। यह पहल आत्मनिर्भर उत्तराखंड और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है।
0: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर उन्हें एकत्रित करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्राप्त फॉर्मों को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी करेंगे। अगर कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से BLO को सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक अ कॉल विथ BLO सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। देहरादून जिले के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था पारस मणि। शब्द थे इंदिवर की और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म का नाम है घर। गीत है गुजार कर, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत लिखा है नीरज ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम गैम्बलर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है। 1:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी। परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
2: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
2: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी
3: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।

0: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
2: मंगला।
3: हाँ?
2: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
3: ठीक है।
2: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
3: हाँ हाँ।
2: उठाकर मुझे दे।
3: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
2: हाँ।
3: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
2: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
3: अरे वाह।
2: और ये इसकी पूंछ।
3: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
2: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
3: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
2: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
3: ठीक है।
2: अब बना।
1: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
3: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
3: ठीक है।
2: चल चल चल चल, चल।
3: हाँ,
2: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
3: हाँ, ठीक है।
2: चल, चल, चल, चल, चल, चल,
0: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राज वर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राज वर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
4: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
4: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेंसन,
5: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
5: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेंसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
5: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सकें। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार। उमंग, उमंग,
7: उमंग। यह था एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2 बजने को है अब समाचार होंगे।
8: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
9: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प सबका साथ सबका विकास का मंत्र गरीब कल्याण गरीब की सेवा उसके जीवन में बेहतरी देश का विकास देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया
10: जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ
8: Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Mr. Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment opportunities through welfare schemes like the PM Awas, Jan Dhan, Mudra and PM Swanidhi. The minister said that by integrating the country's poor to the economic mainstream through basic infrastructure, social security and a better standard of living, a strong foundation for a developed India is being built. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri

0: by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a six-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना

0: ये योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर

0: में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
1: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को

0: भावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों, जय हिंद। सैनिक साथियों, स्वतंत्रता की कीमत हमेशा ऊंची होती है। यही कारण है कि हमारे सैनिक साथी देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। और बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में की भूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है, जहां हर दूसरे घर में देश की सेवा के लिए मातृभूमि की सेवा चुनते हैं। ऐसे ही वीर सैनिक थे वीरेश्वर गोस्वामी। आज के इस कार्यक्रम में इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे। पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: नमस्कार। मैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। आकाशवाणी का सैनिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जब एक सैनिक पहाड़ों पर, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, तब वो सैनिक एक आकाशवाणी के साथ जुड़ा होता है, तो उसको लगता है कि वो देश के साथ जुड़ा है। उसके मनोबल को बढ़ाता है, उसको प्रेरणा देता है, उसको शक्ति देता है, ताकि वो अपने आप से जुड़ा रहे। और ये जुड़ाव ही उसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा से ओतप्रोत करता है। तभी वो अकेले में भी आकाशवाणी के साथ, निडरता के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करता है। ये कभी अपनों की याद नहीं आने देता। तो आकाशवाणी का सैनिक के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जो उसके अकेलेपन को भर देता है, जो उसको एक करुणा और प्रेम की भाव से ओतप्रोत कर देता है। आकाशवाणी एक माध्यम है देश को जोड़ने का, अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का। तो सैनिक भी इस आकाशवाणी से जुड़े हैं, और आकाशवाणी इस सैनिकों के मनोबल में बहुत बड़ा योगदान देती है। जय हिंद, जय भारत।
1: सैनिक साथियों, बीरेश्वर गोस्वामी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पांडीखोला में हुआ था। बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। यही कारण है कि वर्ष 2023 में असम रेजिमेंट में ये शामिल हो गए और जून 2024 में इन्हें कमीशन मिला। इन्हें अपने कार्यों का अच्छा अनुभव था। यही कारण है कि जून 2026 में जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए इन्हें भेजा गया और ये ऑपरेशन शेरावाली से जुड़ गए, जो राजौरी के डोरीमार मजार क्षेत्र में जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश के लिए चलाया गया था। चर्चा भी जारी है, सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, बीरेश्वर गोस्वामी के मन में जोश था, जुनू था और इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त करना था और इसके लिए ये सर्च अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, ड्रोन और अन्य संसाधनों की मदद से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और ये जब 6 जून 2026 को घने जंगल वाले क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान खोजी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तभी संकरी पहाड़ी की धार पर उनका पैर फिसल गया। जी हाँ, चर्चा करेंगे, सुनते हैं कार्यक्रम में पहले ये गीत।

सैनिक साथियों, मातृभूमि के सपूत अपने कार्यों में कभी पीछे नहीं हटते बल्कि हमेशा आगे बढ़ते हैं। और इस तरह जब ये संकरी पहाड़ी की धार पर आगे

पड़े तो इनका पैर फिसल गया और ये गहरी खाई में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। और सैनिक साथी इस प्रकार से लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी देश के लिए शहीद हो गए। सैनिक साथियों, मातृभूमि के सपूत को हम सलाम करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

सैनिक साथी इस गीत के साथ ही सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: यह था फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: यह आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजना की समीक्षा की। कहा, सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री के सचिव डॉ SN पांडे ने पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासन के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर सुझाव लिए। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के तहत BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर उन्हें एकत्रित करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। पौड़ी जिले में भू कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। इसी क्रम में धुमाकोट तहसील के ग्राम लुइंठा मल्ला में भू कानून के उल्लंघन से जुड़े एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने लगभग 27 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्जा लिया। देहरादून जिले में कालसी विकास खंड के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी। रीप परियोजना के तहत सितंबर 2024 में स्थापित इस यूनिट ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये स्वर थी कुणाल कांजावाला और जयेश गांधी की फिल्म का नाम था अक्सर। गीत था समीर कर, संगीत हिमेश रेशमिया का था। आइए आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से समीर की शब्द रचना

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के, फिल्म का नाम था मोहब्बतें।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: समय 3:31 हुए हैं। श्रोता सुन रहे गारी रहे तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं शंकर एहसान लोय के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा गीत। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

ये सौरतेल का याग्निक सुखविंदर सिंह और साथियों की फिल्म का नाम था बीवी नंबर वन। श्रोताओं, गाने नए तराने प्रसारित किए जा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गीत समीर का, संगीत संजीव दर्शन का, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। फिल्म का नाम आशिक।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: आइए सुनते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत। आवाज़ें M.M. करीम, पलक मुच्छल और साथियों की फिल्म का नाम है बाहुबली। गीतकार हैं मदन करकरे और संगीतकार हैं M.M. करीम।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक कलाकार। आज के कलाकार होंगे अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया। शाम 4:02 पर आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गौरी पथारे का ख्याल गायन। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के 13 केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। इसकी औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में हुई, जहां ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म सौंपा गया। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने गणना फॉर्म सौंपा। उधम सिंह नगर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने कलेक्ट्रेट में SIR को लेकर नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। SIR को समावेशी पारदर्शिता से आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में पिछले साल आपदा से क्षतिग्रस्त चार धाम यात्रा मार्ग के गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे सुधार व पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सचिव डॉ SN पांडे ने पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासन के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर सुझाव लिए। पौड़ी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 26 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराते हुए संबंधित अधिकारियों को शेष प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने जिले में कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:03 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए गौरी पथारे का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग गौड़ मल्हार।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गौरी पथारे का गाया राग गौड़मल्हार। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4

कार्यक्रम में कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोतो, हमारी आज की कलाकार हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री, जिन्होंने 16 साल की उम्र से फिल्मों में अभिनय शुरू किया था। उनका नाम है डिंपल कपाड़िया। इनके पति का नाम अभिनेता राजेश खन्ना। और श्रोतो, हम आपको बताना चाहेंगे डिंपल कपाड़िया का जन्म आज के दिन 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला की दिन की

0: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक कलाकार, आज के कलाकार अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया। श्रोताओं, डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक उद्यमी थी जो मुंबई के सांताक्रूज में रहती थी। और श्रोताओं, इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो डिम्पल कपाड़िया की फिल्मों की शुरुआत तब हुई जब ये 16 साल की थी। तब राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉबी में इन्होंने अभिनय किया था और इनके साथ अभिनेता थी ऋषि कपूर। श्रोताओं, ये फिल्म बॉबी उस समय सुपर डुपर हिट रही थी। सुनवाते हैं इनकी फिल्म से ये कार्यक्रम का अगला गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम।
2: देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कैसी हूँ?

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में कलाकार, राज की कलाकार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया। जी हाँ श्रोताओं, फिल्म बॉबी मीनू ने ईसाई लड़की बॉबी बंगराजा की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनके अभिनय को खूब सराहना मिली थी। इसके लिए इन्होंने फिल्म बॉबी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। और श्रोताओं, इस फिल्म की सफलता के बाद डिंपल कपाड़िया ने फिल्मों से संन्यास ले लिया।

स्वतः पारिवारिक कारणों से फिल्मों से दूरियां बनाने के बाद एक बार फिर से डिंपल कपाड़िया ने फिल्मों में वापसी की और 1984 में आई फिल्म जख्मी शेर में अभिनय किया। और स्वतः इस फिल्म के बाद उन्होंने 1985 में आई फिल्म सागर में अभिनय किया और इसके बाद स्वतः इस फिल्म को ऑस्कर की आधिकारिक पुष्टि के लिए भी चुना गया था। और इसके बाद स्वतः इन्होंने फिल्म दिल आशना है, क्रांतिवीर जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, इनके द्वारा अभिनीत समानांतर फिल्में भी खूब लोकप्रिय रही हैं, जिनमें रुद्रालय लेकिन जैसी फिल्में आम रही हैं। साथ ही ये लगातार आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। फिल्मों में योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सन 1974 में फिल्म बॉबी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। 1986 में फिल्म सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1993 में फिल्म रुद्रालय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। 1995 में फिल्म रुद्रालय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। और वहीं वर्ष 1995 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया फिल्म क्रांतिवीर के लिए। श्रोताओं, आज इनके जन्मदिन के अवसर पर सुनवाते हैं इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म का नाम सागर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज की कलाकार थी अभिनेत्री डिंपल कपाटिया। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। 5 बजने को है समय समाचारों का।
1: आकाशवाणी है, अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार, दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं

0: सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा, उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
1: थैंक यू खान साहब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी फॉर अ लाइव कमेंट्री ऑफ द प्रेस्टीजियस मोस्ट ऑनर्ड डिफेंस एंबेसडर्स सेरेमनी 2026।
0: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
1: एंड द गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as we were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into the national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassadors Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honor our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the land.
0: Raksha Alankaran Samaroh 2026 ka ayojan Bharat ke Ganatantra Mandap mein kya ja raha hai? उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधा कृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
1: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that the beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I had mentioned, full and brimming with its capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty. Poetry in the stone, carved hundreds of years ago, but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall. And as we were talking about the gallantry awards, there are going to be 51 gallantry awards which shall be presented today, comprising 5 Kirti Chakra, 28 Shaurya Chakra, 12 Veer Chakra, out of which 1 Shaurya Chakra posthumously, 3 Veer Chakra posthumously, and 2 Kirti Chakra posthumously. It is a poignant moment. The Gallantry Awards of India stand as a testimony to the valor, bravado, and indomitable spirit of our brave men and women in uniform, and our soldiers coming from the tri-services, the Army, the Air Force, and the Navy, as well as from the Police Forces of India. In the khaki, olive blue white khaki, the uniform they donned, the vow they took, commitment to the nation to safeguard the frontiers always and ever. And a grand fanfare now welcoming our Honorable President of India, Srimati द्रौपदी मुर्मू।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आगमन की सूचना, उनके सुरक्षा गार्ड उनके आगे चलते हुए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आ चुकी है राष्ट्रपति भवन के सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री का खड़े होकर स्वागत किया और साथ ही माननीय राष्ट्रपति के स्वागत में भी सभी लोग खड़े होते हैं। रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अब

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho, Alankaran Samaro aarambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karyakram aarambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karyakram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट
2: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं
3: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख
2: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तालियों के साथ
3: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट
3: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए अभियान के दौरान भारी गोलीबारी ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया साथियों पर घातक फायर कर रहे 3rd आतंकी का भी खात्मा किया निर्भीकरण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला
0: A brisk, quick walk up to the Honorable President, that is Lieutenant Colonel Nitesh Bharati Shukla, proudly receiving the Medal of Honor Shaurya Chakra for his bravery, courage and indomitable spirit. And now,
3: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal. The Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
2: Major Aditya Pratap Singh ko ab shaurya chakra.
3: Major Aditya Pratap Singh ne Arunachal Pradesh ke seemavarti ilake mein bhari ghuspaith tatha bade hamle ki khabar milne par ek operation aarambh kiya. 72 ghante ki nigrani kar aatankwadiyon ko dhoond nikala. Mahaz 30 meter se bhayankar golibari ke bavjood निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वांटेड उग्रवादी को मार गिराया अदम्य साहस राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है मेजर आदित्य प्रताप सिंह
2: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की परिकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति
3: मेजर आशीष कुमार द पैराशूट रेजिमेंट
0: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द 7th बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट ब्रस्कली boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
3: 2 नवंबर 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की. भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था. असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है, मेजर आशीष कुमार.
0: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द पैरा रेजिमेंट डॉनिंग द रेड बेरेट वॉकिंग पास्ट टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड प्राउडली द मेडल शौर्य चक्र बीइंग पिन्ड ऑन हिज प्राउड चेस्ट. अ सोल्जर लिव्स फॉर दिस डे.
3: सिपाही जीडी संजय तिवारी, सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स.
2: सीआरपीएफ के जीडी संजय तिवारी और जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है.
3: 2 नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली. बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया. गोलीबारी शुरू हुई. आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे. बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया. गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सिपाही जीडी संजय तिवारी.
2: सिपाही जीडी संजय तिवारी को, जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
3: सिपाही जीडी फिदा हुसैन डा.
2: और अब अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति.
4: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स.
0: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रिस्क.
4: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया. उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की. अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक.
0: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली, कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र.
4: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
4: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई. जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया. परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया. सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट

0: And now Simon Ram Goyal.
1: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
0: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली, दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज, मेडल ऑफ गैलेंट्री, शौर्य चक्र। सैल्यूटिंग एंड हेड
1: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन, CRPF।
2: और अब CRPF के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
1: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
2: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन CRPF के द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने।
1: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन CRPF।
0: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन CRPF। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
1: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
0: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू, 3rd बटालियन असम राइफल्स।
2: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
2: तालियों के गड़गड़ाहट के बीच राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
3: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट।
0: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट। Briskly walking forward, taking a quick brisk turn, a salute.

0: to Honorable President, Supreme Commander of the Forces.
1: 21 November 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आई। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
0: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, राउंड ऑफ क्लैप्स गोइंग अप इन द एयर, रिसीविंग हिज क्राउड गैलेंट्री अवार्ड, द शौर्य चक्र फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड कोरेज।
1: मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
2: कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ तीन सफल ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें तीन आतंकी मारे गए एवं चार ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
0: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉन्टिंग करेज एंड ब्रावाडो।
1: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
1: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
2: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
1: मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
0: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
1: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद तीन सशस्त्र आतंकियों के शव एवं तीन AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू।
0: गणतंत्र मंडप एकोइंग द लाउड round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our Honorable President and a quick turn
1: Major
0: back to the
1: Shivkant
0: arena.
1: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.

0: पैराशूट रेजिमेंट के मेजर शिवकांत यादव को शौर्य चक्र।
1: मेजर शिवकांत यादव ने एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में दो अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर शिवकांत यादव।
0: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के चौकाहट के बीच शौर्य चक्र।
1: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स।
2: Now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
1: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सुबेदार PH मोसेस।
2: सुबेदार PH मोसेस, a proud soldier of the defense forces of Maa Bharati, our motherland India, receiving his pride medal of honor, saluting and heading back.
1: Major Vivek, the mechanized infantry 42 rashtriya rifles.
0: Mechanized infantry 42 rashtriya rifles ke major Vivek ko shaurya chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
1: 15 mai 2025 ko pulwama zile mein ghera aur talashi abhiyan ke dauran major Vivek ki tukdi आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपने आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर विवेक।
0: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स।
2: Rifleman Mangling Sang Wi-Fi from the 3rd Assam Rifles. Ready to receive.
1: 9 June 2025 को Rifleman Mangling Sang Wi-Fi भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में दो आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई।
2: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, displaying nerves of steel.
1: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar, Parachute Regiment.
0: 21 para vishesh dal ke Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ko shaurya chakra diya ja raha hai.
1: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ne seemavarti ilake mein ek kile band vidrohi shivir par सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए।

0: निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटे आदित्य श्रीकुमार।
1: उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाटे आदित्य श्रीकुमार और ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
2: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
3: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
2: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksanon se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर।
3: For his unprecedented valor, fighting spirit, dedication, Captain Yogendra Singh Thakur is awarded the Shaurya Chakra. And now a salute in turn.
2: Subedar Shamsher Singh, Parachute Regiment.
1: And four para Vishesh Dal ke Subedar Shamsher Singh इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
2: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने के गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह।
1: कर्तव्य के प्रति समर्पण और समझदारी का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
2: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट। श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह।
3: नायक राहुल सिंह मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज करेज अंडर फायर, अ फाइन डिस्प्ले ऑफ व्हाट आवर सोल्जर्स वाउ टू प्लेज।
2: राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स।
1: 33 असम राइफल्स के राइफलमैन दुर्बा ज्योति दत्ता विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए
2: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बाहों पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता।
1: रक्षा अलंकरण से केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं, बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने

0: अपमान करने का अफसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
1: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाथे एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
2: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilnake and Lieutenant Commander Rupai.
1: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा दो के लिए चयनित किया गया था जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्वि सदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय प्रशांत अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की जिसमें आपको एकांत अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके
2: A big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
1: Lieutenant Commander Rupa A.
2: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
3: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र। कल को शांक लांबा रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी।
0: और अब वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष।
3: कल को शांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कल को शांक लांबा।
0: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू उड़ान पायलट।
2: एंड आवर सेकंड वीर चक्र ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू The flying captain from the Indian Air Force.
3: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
2: Group Captain Ranjit Singh Sidhu marching forward to receive his medal, short Veer Chakra, from our Honorable President.
3: Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra, Udan Pilot.
0: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
3: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अत्याधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद

0: इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र।
1: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गर्जन के बीच मानव प्रतिभा ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को।
0: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट।
2: एंड नाउ Group Captain Animesh Patni, dressed in impeccable blue uniform, coming forward.
0: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाडन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
2: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र। एंड एज दे से, डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। गणतंत्र मंडल एकोइंग
0: उड़ान पायलट
2: विद अप्लॉज।
1: और अब ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को आमंत्रित किया गया है, जो कि उड़ान पायलट है।
0: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन की दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
1: असाधारण साहस शौर्य कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा, फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा, आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
2: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज destroying the designated enemy target, receiving his Veer Chakra.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, 1988 Swatantra Medium Battery.
1: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, ab Veer Chakra lene ke liye Manani Rashtrapati ke saath.
3: Lieutenant Colonel Sushil Bisht ne kaman adhikari ke roop mein ek mahatvapurn sainya abhiyan mein uch koti ke sanchalan kaushal ka parichay dete hue lakshit आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए

0: को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
1: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आसानी अधिक नेतृत्व और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
0: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट।
2: Squadron leader, now wing commander Sarthak Kumar, flying pilot, proudly marching forward. A quick turn and salute to our supreme commander.
0: Squadron leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai. Wo uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safaltapurvak sampann kiya और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, विंग कमांडर सार्थक कुमार।
2: विंग कमांडर सार्थक कुमार फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द हाई स्टेक लॉन्ग रेंज ऑस्ट्राइक मिशन विद एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड हीरोइज्म receiving his Veer Chakra.
0: Squadron leader Siddhant Singh, Udaan pilot.
1: Udaan pilot, squadron leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
0: Squadron leader Siddhant Singh ne ek atyant jokhimpurn vayu mission mein shatru ki majboot air defense pranali ko bhedte hue kam uchai par radar se bachte hue pravesh kar lakshya par prabhavi hamla kiya और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह।
1: असाधारण साहस और शौर्य स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, उड़ान पायलट।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स नाउ रेडी टू रिसीव हिज अवार्ड वीर चक्र।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डेप्टी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था। विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, एकोज ऑफ जुबिलेशन इन द हॉल, अ प्राउड मोमेंट फॉर स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक रिसीविंग हिज वीर चक्र।
0: फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर, उड़ान पायलट।
1: माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त अपने सैनिकों की शौर्य गाथा सुनते हुए।
0: फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
1: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर राष्ट्रपति से वीर चक्र लेते हैं।
0: नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट।
2: And now Naib Subedar Satish Kumar from the 4th Battalion Dogra Regiment proudly marching forward.
0: Niyantran Rekha par jab hamari chaukiyan bhishan top aur mortar golibari ki chapet mein aayi to sthiti ki gambhirta ko samajhte hue Naib Subedar Satish Kumar ne mortar platoon ka niyantran apne haathon mein liya aur kai sthanon par tabatod fire kar कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोर्टर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोर्टर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाए। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, नायब सूबेदार सतीश कुमार।
2: Hands going up in a round of applause for Naib Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honourable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
3: Shatru ka mukabla karne ke sivai asadharan veerta ke liye Kirti Chakra. Lance Nayak Minachi Sundaram A, Topkhana Regiment, 34 Rashtriya Rifles.
4: 29 Shauri Chakra, 15
3: ट्रांसनायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांसनायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए।
4: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम।
3: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
2: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
3: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा ने दो आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी के जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा।
2: Round of applause from our Honourable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
3: Major Ashdeep Singh, Kavachit Kaur, 1 Assam Rifles.
4: And now, Agla Kirti Chakra.
3: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह।
4: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने।

0: Moments like these will be remembered by one and all, present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
1: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
0: प्राउड फैमिली विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्राउडली रिसीविंग द कीर्ति चक्र। दिस इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, फ्लाइंग कैप्टन, फ्लाइंग पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स।
1: कैप्टन लालविन ओमा साइलो, पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
1: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालविन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालविन ओमा साइलो।
2: तालियों की कड़कड़ाहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो
3: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
0: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्टमसली, अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट, द फर्स्ट चक्र, शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द आमट कौर, कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर।
3: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
0: ऑनरेबल प्रेसिडेंट वॉकिंग टुवर्ड्स the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
3: Ab Veer Chakra Marno Parant Pradan kiye jayenge। उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
2: उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
3: उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल

0: दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उप निरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा
1: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत पुरस्कार देते हुए
0: दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम गोविंद बिहारी सिंह।
1: ये एक ऐसा अवसर है, इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।
0: राइफलमैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत।
2: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their loss and joy.
0: सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के साथ सेना के समन्वय टुकड़ी के रूप में जम्मू क्षेत्र के एक सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जाबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
2: To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
0: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट 1st बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
1: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्याम बाला जंजाल।

0: एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर की पत्नी को। बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए, गले लगाते हुए उनकी माता को बहुत ही भावुक होते हुए
2: tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr.
0: Lieutenant Shashank Tiwari, Sena Seva Kur, 1st Sikkim Scouts, Maranoparant.
2: And now, the next of kin of Lieutenant Shashank Tiwari, posthumously, from the Army Service Corps, coming forward to receive the honor in the form of Kirti Chakra for their beloved. Greeting our honorable
0: Lieutenant Shashank Tiwari ne 22 May 2025 ko
2: the family
0: Uttar Sikkim ke Durgam Pahadi ilake mein chalaye gaye ek operational gasht ka swechha se netritv sambhala. Gasht ke dauran unka ek agnivir Stephen Subba santulat bigadne se nadi mein ja gira. अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला, लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
2: The mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
1: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति, सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
2: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन वाला सभी श्रोताओं थे रुचि रावत की तरफा बटे प्रणाम पैलाक सेवा सौले। श्रोताओं उम्मीद करनू चाहो कि आप लोग सब स्वस्थ वाला और ये वक्त हम दगड़ जुड़िया वाला। श्रोताओं में बता दम बहुत खुशी महसूस होनी चाह कि भारत की सबसे प्रस्तुत प्रसारण सेवा आकाशवाणी 90 साल पूरा है। श्रोताओं आकाशवाणी ना 1936 में अपनी औपचारिक शुरुआत किया और तब से लेकर

पढ़ी रहा। तो श्रोता उम्मीद कर दिया कि आप लोग जन हमेशा 90 सालों से आप लोगों दगड़ हम दगड़ बड़ा इंचा इन आप लोग हम दगड़ अपड़ू दगड़ू पढ़ा के रख लिया और आप हम दगड़ कार्यक्रम में जुड़े छे वहाँ को पता था हम तब भी चलो लू जब आप हम तक चिट्ठी भेज लिया यानी ईमेल भेज लिया तो हमारे ईमेल को पता चु चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। अब श्रोताओं ज्यादा अच्छी पता नहीं लगा दें कार्यक्रम था अगना पढ़ा दें और आप तक सुना दें इस सुंदर सी गढ़वल गीत स्वर्च मीना कुमोला को कु।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: श्रोताओं, रविवार से पहले आपन सुनी मीना कुमोला का स्वर में सुंदर सी गड़बल गीत और उम्मीद कर दो गीत आपते पसंद आवल। श्रोताओं, अब भगत हो जा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो घड़े क्यों में आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
5: और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और केम्प्टी टिहरी मार्ग पर चल रहे सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया और गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में हुई, जहां ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म सौंपा गया। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने गणना फॉर्म सौंपा। SIR के तहत 7 जुलाई तक BLO प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी। इस चरण में मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे। वहीं पौड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि SIR का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध, त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
11: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLO से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें, और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पे बैठक करते हैं और तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
10: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
12: बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन और अन्य विभागों की 6,940 करोड़ रुपए की 12 प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। श्री धामी ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के कार्यों में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह और मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिनों में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर 50% तक कार्य हो चुका है उन्हें 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। श्री धामी ने अधिकारियों को प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा करने और लंबित प्रकरणों का समय बद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
10: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून जिले के नागथात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव व क्रीड़ा समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केदार सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पुल, पेयजल और विद्यालय से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि जौनसार भाबर प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपनी मेहनतकश, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए जाना जाता है। यहाँ की लोक संस्कृति एकता की भावना को बढ़ावा एवं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा और समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं।
13: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
10: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में पिछले साल आपदा से क्षतिग्रस्त चारधाम यात्रा मार्ग के गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे सुधार व पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार

0: कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए ताकि यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग की बैठक ली। बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण और प्रवर्तन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा मार्गों पर स्थित सभी दुकानों, होटल ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकतम खुदरा मूल्य या निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: जो सैंपल्स हैं खाद्य पदार्थों के, उनको कलेक्ट करने, साफ सफाई देखने, हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितने भी ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और इस तरह के फल फ्रूट सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो लोग इसको देखें और गुणवत्तापूर्ण सामान जो है चार धाम यात्रियों को मिले, ये सुनिश्चित करने का निर्देश मैंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। इसके अलावा जो है कुछ जगहों से ये शिकायत प्राप्त हुई कि दुकानदार जो है रेट ज्यादा ले रहे हैं खाद्य पदार्थों के, उसके संबंध में भी मैंने तत्काल जांच करके कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
0: मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एसएन पांडे ने आज पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासन के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर सुझाव लिए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का स्थलीय स्तर पर आकलन करते हुए जन सामान्य की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
2: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिले में कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधारने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई तकनीक और स्वीकृत बजट के समन्वय से हरिद्वार जिला पशुपालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर आरएस नेगी ने बताया कि जिले में पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से उच्च नस्ल और अधिक उत्पादकता वाले पशुओं का संवर्धन संभव होगा, जिससे पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। और गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले,
5: डिजिटल पेमेंट कर देना।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: श्रोताओं, समाचारों का बाद एकदम फिर से स्वागत है आप सभी को अपने बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत मा। मैं छू आप दगड़ रुचि रावत। श्रोताओं, आज हम विश्व समुद्र दिवस मनाना चाहिए। यो दिवस हर साल 8 जून खुणे पूरा विश्व में मनाए जा। श्रोताओं, समुद्र पृथ्वी को जीवन को महत्वपूर्ण आधार छन। हमारे ग्रह को लगभग 2/3 हिस्सा समुद्रों से ढक्यों छ। यो सिर्फ पानी को विशाल भंडार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को घर भी छ। समुद्र हमते ऑक्सीजन, भोजन, औषधि और जलवायु संतुलन बनाने भी मदद करत। लेकिन यह भी एक चिंता की बात छ कि बढ़दू प्लास्टिक प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और रसायन समुद्र का जीवन थे नुकसान पहुँचाना छिन। कतगई समुद्री जीव जन माछा, कछुआ, डॉल्फिन ये कचरा का कारण खतरा में पुड़िया छिन। समुद्र को संतुलन बिगड़न से पूरु पर्यावरण प्रभावित होणो छ। यही कारण से विश्व समुद्र दिवस मनाए जा ताकि लोगों में जागरूकता फैले जैसा कि अर्ध समुद्र संरक्षण में जरूरी कदम उठाए जैसा का हम छोटा छोटा कदम उठाए कि यूं बदलाव ले सकते हैं। जिनकी प्लास्टिक को कम उपयोग करला, कूड़ा सही जगह फेंकण और जल स्रोतों थे साफ रखण। तो श्रोताओं, अब इन करते हैं कार्यक्रम में अग्नि बढ़दिया और आप सुन सुंदर सी कुमावनी गीत और वांदगढ़ कुछ जरूरी रंत रह बार।
9: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
10: सो इजी।
11: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
13: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
14: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
15: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।

श्रोताओं, अभी आपन सुनी मनोज सिंह का स्वरमय सुंदर सी कुमावनी गीत, और उम्मीद कर दूँ गीत आपते पसंद भी है वालो। श्रोताओं, भोला कार्यक्रम का बारे में आपते बता देना, भोल हम कार्यक्रम में शामिल करला राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुदेसु की किलकारी, तो आप लोग जरूर कार्यक्रम में बढ़िया रहे। और श्रोताओं, अब मिथे यानी फिर दगड़िया रुचि रावत है कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दिया। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी नेहा। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घरों घरों जाके गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में गस्ती बैंड का समणी। राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण कैरी। देहरादून जिला का कालसी विकास खंड में महिलाओं की तरफ बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को सफल मॉडल बनी की उभरी। और हरिद्वार जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कनवाला 12 कार्यकर्ताओं ते सम्मानित करे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज बटी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR का तहत बूथ लेवल अधिकारियों BLO द्वारा घरों घरों जाके गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू हुए गए। ये की औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में हुए, जख ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ते गणना फॉर्म सौंपे गए। वखी सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ते मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमन गणना फॉर्म सौंपे। SIR का तहत 7 जुलाई तक BLO प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घरों घरों जाके मतदाताओं से संपर्क करला और गणना प्रपत्र वितरित करला। ये दौरान मतदाता सूची में नया पात्र मतदाताओं ते शामिल कन मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को न हटोण और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन का वास्ता आवश्यक जानकारी एकत्र करे जाली। ये चरण में मतदाताओं से कै भी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं करे जाला। वखी पौड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरियन बते कि SIR को उद्देश्य निर्वाचक नामावली ते शुद्ध त्रुटि रहित और अद्यतन बनोच, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपना मताधिकार को प्रयोग कर सकूँ।
1: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLO से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें, और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पे बैठक करते हैं और तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में पिछला साल आपदा से क्षतिग्रस्त चारधाम यात्रा मार्ग का गस्ती बैंड का समणी, राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सुधार व पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण करी। उन मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकारियों बटी कार्यों की प्रगति की जानकारी लूंदा दौ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को जायजा लीन। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों ते निर्देशित कैरी की चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इले सभी कार्यों ते निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता का दगड़ा जल्दी पूरु करे जालो। उन बोली कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण का वास्ता लगातार कार्य करने च उन अधिकारियों ते निर्देश देने की बरसात का मौसम ते देखी कि संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखे जाली और सुरक्षा उपायों ते प्राथमिकता दिए जाली, ताकि यात्रा मार्ग पर कै भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर SN पांडे ने आज पिथौरागढ़ में जन प्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासन का दगड़ा संवाद करी। ये दौरान उन जिला का विकास, आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर सुझाव लेन। डॉक्टर पांडे ने बोले कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को स्थलीय स्तर पर आंकलन करी कि जनसामान्य की समस्याओं को प्रभावी समाधान सुनिश्चित कंच।
2: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: उन बोली कि शासन जनता का सुझाव और अपेक्षाओं ते गंभीरता से लेके कार्य करनुच और प्राप्त सुझावों ते नीति निर्माण और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में समाहित किए जानु।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानु जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून जिला में कालसी विकास खंड का हरिपुर गांव में महिलाओं की तरफ से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बने के उभरी। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप का तहत 2024 में स्थापित ई यूनिट ने सैकड़ों महिलाओं ते आर्थिक रूप से मजबूत बनोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभे। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की तरफ बटी स्थापित ई यूनिट में सरसों तेल का उत्पादन करे रीप की जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्तन बताए कि इन यूनिट से हर महीना 70,000 रुपए की आय होनी च और जबकि स्थापना का बाद सी अब तक 24 से 25 लाख रुपए मूल्य को सरसों तेल बेचे भी गए।

0: एक अलावा 4 से 5 महिलाओं ते प्रत्यक्ष रोजगार भी मिली। उन बोली कि यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं ते आत्मनिर्भर बनोणा की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण छे।
1: कालसी ब्लॉक की सीएलएफ है हमारी विकास महिला, उसको सीबीओ लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रतिमाह हो रहा है। और इसमें सीएलएफ से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं, मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही और इस तरह से उनका आय में वृद्धि हो रही है। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं हमारे हॉट और कोल्ड प्रेस, इसमें इनकी सेल्स है, एचओएच में जा रहा है, हमारा एक नीचे आउटलेट खुला है वहां जा रहा है, लोकल लोगों को भी केटर हो रहा है, प्लस हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी की जा रही है।
0: समूह की सदस्य रीना चौहान बोली कि आज महिलाएं उत्पादन से लेके विपणन तक की जिम्मेदारी संभालनी छिन और आर्थिक रूप से सशक्त बननी छिन।
2: विकास महिला क्लस्टर का एनआरएलएम के द्वारा गठन किया गया जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं और तत्पश्चात विकास महिला सेलफ का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिला प्रशासन का, एनआरएलएम का और रीप का, जिन्होंने की हमार को इस काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: हरिद्वार का मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिशन जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं ते आज सम्मानित करे। ये अवसर पर उन सम्मानित कार्यकर्ताओं ते बधे द्यूंदा बोली कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण छ। उन विश्वास व्यक्त करी कि नई तकनीकी और स्वीकृत बजट का समन्वय से हरिद्वार जिला पशुपालन का क्षेत्र नई ऊंचाई प्राप्त कनुच। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य अधिशाषी अधिकारी डॉक्टर आर एस नेगिन बताए कि जिला मां पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ोण खुणी आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक ते व्यापक स्तर पर लागू करे जानु छ। उन बोले कि ई तकनीक से उच्च नस्ल और अधिक उत्पादकता वाला पशुओं को संवर्धन संभव होलु जैसे पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होली। पौड़ी जिला में भू कानून का प्रभावी अनुपालन का वास्ता प्रशासन की तरफ बटी लगातार कार्रवाई करे जाने चे। ये क्रम में धुमाकोट तहसील का ग्राम लुइंठा मल्ला में भू कानून का उल्लंघन से जुड़िया एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने लगभग 27 नाली भूमि ते राज्य सरकार में निहित करी के वे पर कब्जा ले आली। धुमाकोट में उप जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित प्रकरण में भैर का लोगों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदने को मामला संज्ञान में आया छो। मामला की जांच राजस्व अभिलेखों का परीक्षण और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने का बाद नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घरों घरों जाकर गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में गस्त बैंड का समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण करे। देहरादून जिला का कालसी विकास खंड में महिलाओं की तरफ बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को सफल मॉडल बने की उभरी और हरिद्वार जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला 12 कार्यकर्ताओं ते सम्मानित करे गए। ये का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यु अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

सभी किसान साथियों को दीपा बगासी का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि जगत में। किसान साथियों, आज यानी कि 8 जून को पूरी दुनिया विश्व महासागर दिवस मना रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महासागरों के नाम एक पूरा दिन क्यों समर्पित किया गया है? क्योंकि किसान साथियों, महासागर हमारे जीवन, पर्यावरण और पृथ्वी के अस्तित्व से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारी धरती की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। ये केवल जल का विशाल भंडार ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के आधार हैं। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा महासागरों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है। महासागर जलवायु को संतुलित रखते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और अनगिनत जीव जंतुओं का घर हैं। किसान साथियों, महासागरों के महत्व को देखते हुए ही हर वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को महासागरों के संरक्षण, समुद्र में रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं और बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करना है। अब बात करते हैं 8 जून को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस मनाने का विचार पहली बार कनाडा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इस विचार को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी। लेकिन किसान साथियों, आजकल बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री कचरा और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व महासागर दिवस हमें याद दिलाता है कि यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। और ये बिल्कुल सच बात है। आइए किसान साथियों, आज हम संकल्प लें कि प्लास्टिक का कम उपयोग करें और अपने जल स्रोतों को, जैसे नदी है, तालाब है, पोखर है, उनको स्वच्छ रखेंगे और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो किसान साथियों, संकल्प तो हमने ले लिया, लेकिन अभी छोटा सा विराम लेते हैं और सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
1: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
2: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हमारे कई किसान साथी खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी सदियों से करते आ रहे हैं, जिससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी होती है बल्कि एक ही क्षेत्र यानी कि केवल खेती पर निर्भरता उनकी नहीं रहती है और हमारे किसान साथी अपने पशुओं के दुग्ध उत्पादन से अपनी डेयरी व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आज के समय में डेयरी व्यवसाय की मांग भी बहुत ज़्यादा है और आप सब तो जानते ही हैं कि भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और ये उपलब्धि हमारे पशुपालक साथियों की मेहनत और डेयरी क्षेत्र में हुए निरंतर विकास का परिणाम है। दूध एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग पूरे वर्ष बनी रहती है, इसलिए भी डेयरी व्यवसाय को अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। किसान साथियों, डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे अच्छी नस्ल के दुधारे पशुओं का चयन करना आवश्यक है, पशुओं को संतुलित आहार, हरा चारा, सूखा चारा तथा खनिज मिश्रण उचित मात्रा में आपको देना चाहिए, पर्याप्त स्वच्छ पानी भी उपलब्ध आपको अपने पशुओं को कराना चाहिए क्योंकि पानी की कमी का सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। किसान साथियों, अपने पशुओं का नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर आप लोगों को करवाते रहना चाहिए, इससे आप अपने पशुओं में रोग से पहले ही बचाव कर सकते हैं। किसान साथियों, चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी लेकिन अभी वक्त हुआ है वार्ता सुनने का, जिसका विषय है महासागर की अनूठी दुनिया, श्रीमती निशा नेगी से।
5: साथियों, आज है 8 जून और आज हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी का लगभग 71% सतह को कवर भी करते हैं। महासागर दिवस मनाने का अर्थ है कि हमें महासागरों को बचाने की आवश्यकता है। इन महासागरों को बचाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मानव जनित गतिविधियां, अत्यधिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विनाश की कगार पर है। महासागर हमारे ग्रह के फेफड़े हैं जो आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जा रहा है। यह प्लास्टिक न सड़ती है न गलती है, मछलियाँ इसे खाना समझकर खा लेती हैं और मर जाती हैं और विषैले तत्व खाद्य श्रृंखला के जरिए इंसानों तक पहुँच रहे हैं। महासागर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, इससे पानी का तापमान बढ़ रहा है और जल अम्लीय हो रहा है, जिसके कारण रंग बिरंगी मछलियाँ, मूंगे की चट्टाने यानी कोरल रीफ, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, इन सभी समुद्री जीवों को नुकसान हो रहा है। महासागर केवल पानी का भंडार नहीं है, यह धरती के तापमान को नियंत्रित करने वाला एक विशाल एयर कंडीशनर भी है। आधुनिक तकनीकों से व्यावसायिक स्तर पर अंधाधुंध मछलियां पकड़ी जा रही हैं, जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है और समुद्री खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो रही है। तेल रिसाव, समुद्र के अंदर खनन और तटीय विकास के कारण मछलियां और अन्य जीवों का प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहा है। महासागरों को बचाने के लिए जरूरी उपाय, जैसे प्लास्टिक का उपयोग सीमित करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और जिम्मेदार तरीकों से संसाधनों का उपभोग करना। इन प्रयासों से समुद्री जल के बढ़ते अम्लीकरण और प्रदूषण को रोककर जलीय जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन, स्ट्रॉ और पानी की बोतल से बचें। इनके समुद्र में पहुंचने से लाखों समुद्री जीवों की जान खतरे में पड़ जाती है। अगर आप सी फूड खाते हैं तो ऐसे विकल्प चुनें जो पर्यावरण के अनुकूल हों और अत्यधिक मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा न देते हों। जलवायु परिवर्तन महासागरों को गर्म और अम्लीय बना रहा है। ऊर्जा की बचत करें, कारपूल का उपयोग करें और संभव हो तो सौर ऊर्जा अपनाएं। घर और खेतों में उपयोग होने वाले हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों का कम उपयोग करें, क्योंकि अंत में यह पानी के बहाव से समुद्र में पहुंचते हैं जिसके परिणाम घातक होते हैं। महासागरों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हम अभी से सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और सुंदर महासागर नहीं देख पाएंगी। इसलिए हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। समुद्र, नदियों और तालाबों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को साफ और सुंदर रखना चाहिए। आज सरकारें और कई सामाजिक संगठन भी हमारे संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। समुद्र तटों की सफाई, प्लास्टिक पर रोक और समुद्र जीवों की रक्षा के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक महासागरों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। बच्चों और युवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से महासागरों के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। यदि बचपन से ही बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी तो वे ही बच्चे भविष्य में पर्यावरण की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। विश्व महासागर दिवस हमें यह संदेश भी देता है कि प्रकृति की रक्षा करना मानव जीवन की रक्षा करना है। महासागर हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन और रोजगार भी देते हैं। वे हमारी धरती को सुंदर और संतुलित बनाए रखते हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। श्रोताओं, समुद्र की लहरें हमें जीवन का भी संदेश देती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें लगातार बढ़ते रहना है। महासागर की विशालता हमें विनम्र बनाती है और प्रकृति के प्रति सम्मान करना सिखाती है। आज विश्व महासागर दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और महासागरों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। हर छोटी छोटी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती है। यदि हर व्यक्ति जिम्मेदारी निभाए तो हम अपने महासागरों को सुरक्षित रख सकते हैं। आज महासागरों का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियों, रोबोटों और उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। फिर भी महासागर का बहुत बड़ा भाग आज भी अनदेखा और अनजाना है। वैज्ञानिक लगातार नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। लगभग हर वर्ष समुद्र से कुछ ऐसे जीवों की खोज होती है जिन

0: बारे में पहले कभी जानकारी नहीं थी। इससे स्पष्ट होता है कि महासागर केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत का भी महासागरों से गहरा संबंध है। तीनों ओर समुद्र से घिरा हमारा देश प्राचीन काल से ही समुद्र का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हिंद महासागर केवल भारत के नाम से ही नहीं जाना जाता बल्कि यह हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। महासागर हमारी धरती की अमूल्य धरोहर है। इनके बिना जीवन अधूरा है। हमें महासागरों की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनकी सुंदरता और महत्व को समझ सके। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जल है जीवन का आधार, महासागर है प्रकृति का उपहार। इनकी रक्षा करना है हमारा धर्म, तभी सुरक्षित रहेगा आने वाला कर्म। स्वच्छ समुद्र, सुरक्षित संसार, यही होना चाहिए हम सबका विचार। आओ मिलकर शपथ उठाएं, महासागरों को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता श्रीमती निशा नेगी से, जिसका विषय था महासागर की अनूठी दुनिया। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
0: साथियों, आज है 8 जून और आज हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। आज है 8
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, यदि आपके पशुओं में कोई भी बीमारी के लक्षण दिखे, जैसे खुरपका, मुंह पका, गला घोटू, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि जब आपके पशु स्वस्थ होंगे तभी तो आपको उनसे सही उत्पादन मिल पाएगा, है ना। यदि आप डेयरी प्रबंधन तकनीकों को अपनाते हैं तो दूध उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उसके लिए आपने अभी जाना कि आपको अपने पशुओं का ध्यान कैसे रखना है, साथ ही पशुओं के आवास की व्यवस्था पर भी ध्यान दें और वैज्ञानिक तरीकों से ही अपने पशुओं का पालन करें, फिर देखिए कैसे आपको डेयरी उद्योग में सफलता मिलती है। इसके अलावा आप केवल दूध बेचने तक सीमित ना रहें। आप जानते ही हैं कि आजकल डेयरी में घी, पनीर, दही सब मिलता है, तो आप भी इन उत्पादों को तैयार करके बेचें और अधिक लाभ प्राप्त करें। डेयरी उद्योग का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर रहने के अवसर मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक महिला स्वयं सहायता समूह डेयरी से जुड़कर भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकती हैं। और किसान साथियों, अब तो सरकार भी हमारे पशुपालकों के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनमें डेयरी उद्यमिता, पशु बीमा, टीकाकरण कार्यक्रम तथा पशुपालन के लिए ऋण सुविधाएं शामिल हैं। हमारे पशुपालक साथी इन योजनाओं की जानकारी अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों,

किसान साथियों, अंत में तो हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप खेती के साथ वैज्ञानिक तरीके से डेयरी व्यवसाय को अपनाते हैं तो ये न केवल आपकी आय को बढ़ा सकता है बल्कि इसकी सहायता से आप कई और लोगों को रोजगार देकर आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गांव के विकास को गति देने का एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। तो सोचिए मत, डेयरी व्यवसाय की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं और अपने व अपनों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। और आइए किसान साथियों, सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: जरूरी संदेश।
1: रमेश भटेजा, टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड तथा स्वीप आइकॉन जिला निर्वाचन हरिद्वार। सम्मानित मतदाताओं, आपको ज्ञात होगा कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में राज्य भर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन गहन विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रथम चरण 8 जून को प्रारंभ हो रहा है। आगामी 7 जुलाई तक चलने वाले इस चरण में आपके क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर BLO आपके निवास पर इनोवेशन फॉर्म पर आवश्यक जानकारी दर्ज करेंगे। इसके लिए आपको अपना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ देना होगा। विशेष स्थिति में निवास स्थान पर मतदाता के उपलब्ध ना होने पर मतदाता स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से यह फॉर्म भर सकता है। अतः आप सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन है कि निवास पर आए BLO को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे एक सशक्त तथा पारदर्शी लोकतंत्र में आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। आप सभी मतदाताओं का धन्यवाद, आभार।
0: तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों, आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो हमें संदेशों के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। हमारी ईमेल एड्रेस है jagatkrishi@gmail.com। अब अपनी साथी दीपा बकासु को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत और अब समय हो गया है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचार और दगड़ी में कुसुम लता पिलखवाल। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों का वितरण और सत्यापन काम शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी क्षेत्र में गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाट में चल नई सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। देहरादून जिला कालसी विकासखंड में श्रेणी ओरबटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण सफल मॉडल बनबेर उभरी। और हरिद्वार जिले में कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 12 कार्यकर्ताओं के सम्मानित करी गो। अब समाचार विस्तारल। प्रदेश में आज बटी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल अधिकारियों BLO द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों का वितरण और सत्यापन का काम शुरू है गो। यह एक औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में है, जहां ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के गणना फॉर्म सौंपी गई। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमल गणना फॉर्म सौंपी। SIR के तहत 7 जुलाई ताले BLO प्रत्येक मतदान

0: क्षेत्रमा घर घर जबेर मतदाताओं दगर संपर्क करल और गणना प्रपत्र वितरित करल। यो दौरान मतदाता सूचीमा नई पात्र मतदाताओं के शामिल करण, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाण और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधनक लिजी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करी जाल। यो चरण में मतदाताओं धे कुल प्रकार कागजात नीली जाल। वे पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरियाल बता SIR उद्देश्य निर्वाचक नामावली के शुद्ध त्रुटि रहित और नवीनतम बयान छो ताकि हर एक योग्य नागरिक अपू मताधिकारक प्रयोग कर सको।
1: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLO से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पे बैठक करते हैं और तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी क्षेत्र में पिछले साल आपदा क्षतिग्रस्त चार धाम यात्रा बाटक गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाट में चल नई सुधार व पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। उन्होंने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों दे कामों प्रगति जानकारी लेते हुए निर्माण कामों की गुणवत्ता जायजा ली। कैबिनेट मंत्री अधिकारियों का मार्गदर्शन करो कि चार धाम यात्रा बाढ़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण छो। यलिजी सभी कामों के निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता दगर जल्दी पूरी करी जाओ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और मजबूती के लिए लगातार काम करने। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए कि बरसातक मौसम के देखते हुए संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाओ और सुरक्षा उपायों के प्राथमिकता दी जाओ ताकि यातायात मार्ग पर कोई प्रकारक बाधा पैदा नहीं हो। मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर SN पांडेल आज पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासनक दगड़ संवाद करो। यो दौरान उन्होंने जिला विकास, आधारभूत सुविधाओं सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और दोहर जनहित बटी जुड़ी विषयों पर सुझाव ली। डॉक्टर पांडेल को कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कामों की वास्तविक स्थिति स्थलीय स्तर पर जाँच पड़ताल करते हुए जन सामान्य समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करण छो।
2: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: उन्होंने कहा कि शासन जनता के सुझावों और अपेक्षाओं के गंभीरता लिबेर काम करना और प्राप्त सुझावों के नीति निर्माण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में समाहित ले करी जल।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यौ बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादून जिल में कालसे विकास खंडक हरिपुर गौमा सैनियों की ओर बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण सफल मॉडल बनबेर उभरी। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीपक तहत सितंबर 2024 में स्थापित यूनिटल सैकड़ों सैनियों के आर्थिक रूपल मजबूत बनाण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ओर बटी स्थापित यह यूनिट में सरसों तेलक उत्पादन करी जानो। रीपक जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ताल बता कि यह यूनिटल हर महीने करीब 70,000 रुपये आय होने, जबकि स्थापना के बाद से अब ताले 25 लाख रुपये मूल्यक सरसों तेल बेच हेलो। यह के अलावा 4/5 श्रेणियों के प्रत्यक्ष रोजगार ले मिल रो। उन्होंने कहा कि यह यूनिट ग्रामीण श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण छू।
4: कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का

0: सेल्स उनका प्रतिमा हो रहा है। और इसमें सीएलएफ से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं, मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही हैं और इस तरह से उनका आय में वृद्धि हो रही है। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं, हमारे हॉट और कोल्ड प्रेस, इसमें इनकी सेल्स है, HOH में जा रहा है, हमारा एक नीचे आउटलेट खुला है वहां जा रहा है, लोकल लोगों को भी केटर हो रहा है, प्लस हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी की जा रही है।
1: सामूहिक सदस्य रीना चौहान कुणचिकी आज सैनी उत्पादन बटी लिबेर विपम ताले जिम्मेदारी संभाल नहीं और आर्थिक रूपल सशक्त बन नहीं।
2: विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया, जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं और तत्पश्चात विकास महिला सेल्फ का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके द्वारा के 703 यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिला प्रशासन का, NRLM का और रीप का, जिन्होंने कि हमार को इस काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
1: हरिद्वारक मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रल जिल्मा कृत्रिम गर्भाधानक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के आज सम्मानित करो। यह अवसर पर उन्होंने सम्मानित कार्यकर्ताओं के बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधनक गुणवत्ता सुधारण में उनर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण छो। उन्होंने विश्वास प्रकट करो कि नई तकनीक और स्वीकृत बजट के तालमेल हरिद्वार जिला पशुपालन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करल। उत्तराखंड सुदन विकास बोर्डक मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर RS नेगिल बता कि जिल मां पशुओं का नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के व्यापक स्तर पर लागू करी जाल। उन्होंने कहा कि यह तकनीकल उच्च नस्ल और सकर उत्पादकता वाले पशुओं का विकास संभव होल, जैस पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होल। पौड़ी जिल में भू कानूनक प्रभावी अनुपालनक लिजी प्रशासनक ओर बटी लगातार कार्रवाई करी जाने। यह क्रम में धुमाकोट तहसीलक गांव लुईठा मल्ला में भू कानूनक उल्लंघन बटी जुड़ी एक प्रकरण में जिला प्रशासन लगभग 27 नाली भूमि के राज्य सरकार में शामिल कर बीर उमे कब्जा लिहेलो। धुमाकोटक उप जिलाधिकारी बता कि संबंधित प्रकरण में बाहरी मनखियों द्वारा निर्धारित सीमा हबीर सकर भूमि खरीदनक मामला सामने आछी। मामलक जांच राजस्व अभिलेखों परीक्षण और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करी गई। आखिर में मुख्य समाचार आई। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी जेल में गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाटमा चल नई सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। देहरादून जिला कालसी विकासखंड में सैनियों ओर बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण सफल मॉडल बनबीर उभरी और हरिद्वार जिल में कृत्रिम गर्भाधानक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करण वाल 12 कार्यकर्ताओं के सम्मानित करी गो। यो के दगड़े ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
3: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं मोहित चौहान के स्वर में इरशद कामिल के लिखे इस गीत को। संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने। फिल्म है रॉकस्टार।

0: सुखविंदर सिंह, यशिता शर्मा, मनीष कुमार टिनू, फरहान अख्तर और शंकर महादेवन के स्वर में आपने गीतकार जावेद अख्तर के इस गीत को सुना, फिल्म दिल धड़कने दो से। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।
1: क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 का शुभ आरंभ किया गया। अभियान में वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ITBP, STRF और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। 30 सदस्यीय कोर टीम सहित पोर्टरों के साथ कुल 85 सदस्य इस अभियान का हिस्सा हैं। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक अध्ययन से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के आकलन के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाया जाता है। इस दौरान विशेषज्ञ वन्यजीवों, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कर आवश्यक आंकड़े एकत्र करते हैं। देश भर में 1 जून से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान का राष्ट्रीय शुभ आरंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नकली खाद बीज की पहचान जैसे विषयों पर जागरूक किया जाएगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और केंद्र व राज्य सरकारों के कृषि विभाग भाग लेंगे। इसी क्रम में खेत बचाओ अभियान का शुभ आरंभ राज्य में देहरादून के सहसपुर स्थित ढाकी क्षेत्र से किया गया। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। साथ ही किसानों, कृषि विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद कर कृषि भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन व कृषि क्षेत्र के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य कृषि भूमि संरक्षण के साथ साथ किसानों के सम्मान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। चमोली जिले की नीति घाटी में 31 मई से 2 जून तक नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया गया। नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना और युवाओं में फिटनेस व साहसिक खेलों के प्रति जागरूक करना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने मेरा युवा भारत के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। ये एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जन भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और देश के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए देशभर से 500 स्वयं सेवकों का चयन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन स्वयं सेवकों को उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में 2 चरणों में तैनात किया जा रहा है। ये कार्यक्रम युवा नागरिकों को सीमावर्ती गांवों में रहने और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। गांववासियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से प्रतिभागी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक विरासत, विकासात्मक आकांक्षाओं और रणनीतिक महत्व से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होंगे। केंद्र सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज फेज 2 में सीमांत जिले पिथौरागढ़ के 24 और गांवों का चयन किया गया है। इसके साथ ही जिले में वाइब्रेंट विलेज की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से पहले चरण में जिले के कुल 27 गांव चयनित किए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में विकसित किए जा रहे 3B गार्डन यानी बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णा वट के पौधे का रोपण कर किया। इस उद्यान का विकास मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण व संवर्धन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत परागण और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है। उद्यान के आसपास कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग को प्रतिबंधित रखा जाएगा, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इस विशेष उद्यान के बन जाने से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही आमजन में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी ये उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्यान में जामुन, शहतूत, सहजन, तुलसी और सूरजमुखी सहित कई प्रजातियों के पौधों का मिश्रित रूप से रोपण किया जा रहा है। उत्तराखंड को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय

0: ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की ओर से ये पुरस्कार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल द्वारा प्राप्त किया गया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में उत्तराखंड को औसत उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों राज्य को सर्वाधिक उपभोक्ता आवेदन, सर्वाधिक रूफटॉप सोलर संस्थापन, सर्वाधिक डिस्कॉम निरीक्षण और सर्वाधिक विक्रेता पंजीकरण की श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे बिजली बिलों में कमी आने के साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सर्व सेफ फूड परियोजना का विस्तार किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और एक निजी कंपनी के संयुक्त सहयोग से संचालित इस पहल के तहत राज्य के 8 जिलों में 1,500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवसायिक कौशल से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विक्रेताओं के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सर्व सेफ फूड परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। तब से ये कार्यक्रम देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा चुका है। इसी के साथ ही हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। समय है हिंदी वार्ता का। आज आप सुनेंगे हिंदी साहित्य के अनूठे चितेरे विष्णु नागर पर डॉक्टर ममता सिंह द्वारा ये वार्ता।
2: हिंदी साहित्य के अनूठे चितेरे विष्णु नागर। जीवन भी कविता बन सकता है, जीवन भी कविता बन सकता है, बस उसे लिखना आना चाहिए। बहुत कुछ कहने के लिए बहुत शब्द जरूरी नहीं होते। ऐसी विलक्षण भावभूमि पर अपनी रचनाओं का निर्माण करने वाले हिंदी साहित्य के अनूठे चितेरे विष्णु नागर, हिंदी के प्रमुख समकालीन कवि, कथाकार और व्यंग्यकार विष्णु नागर, जिनका जन्म 14 जून 1950 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ। उनका बचपन बेहद संघर्षों में बीता। पिता की असमय मृत्यु के बाद मां ने परिवार को संभाला और जब पहली नौकरी विष्णु नागर जी को मिली तो वो मां के साथ दिल्ली आ गए। विष्णु नागर जी की समसामयिक जीवन, राजनीति और मध्यम वर्गीय विडंबनाओं पर गहरी पकड़ है। पत्रकारिता के माध्यम से भी उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी एक विशिष्ट पहचान दी। वे एक उत्कृष्ट व्यंग्यकार भी थे। उनकी पत्रकार के रूप में यात्रा को अगर हम देखें तो उन्होंने 1971 से दिल्ली में सक्रिय पत्रकारिता में कदम रखा। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, कादम्बनी, नई दुनिया जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों से जुड़कर उन्होंने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया। 1982 से 1984 तक जर्मन रेडियो डोयचे वेले की हिंदी सेवा में संपादन का कार्य किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनैतिक प्रश्नों से व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए पाठक को सोचने पर विवश कर दिया। उनकी कविताओं में सरल शब्दावली, आधुनिक शैली, सहज संवाद एक विशेषता के रूप में दिखाई देती हैं। उनके विशाल रचना सागर के कुछ प्रमुख पोती इस प्रकार हैं। उनके प्रमुख कविता संग्रहों में से मुख्य हैं, मैं फिर कहता हूँ चिड़िया, तालाब में डूबी छह लड़कियां, संसार बदल जाएगा, हंसने की तरह रोना, बच्चे, पिता और माँ। मैं फिर कहता हूँ चिड़िया में नागर जी की चिड़िया घोंसले से मुक्त होकर खुले आसमान में अपनी पहचान बनाती है। उनकी संवेदना शक्ति की एक बानगी आप देखिए, तालाब में डूबी छह लड़कियां, तालाब में डूबी छह लड़कियां, उन्हें मरे दो बरस हो जाएंगे, पांच और आठ और साठ बरस हो जाएंगे, एक शताब्दी बीत जाएगी, वे लड़कियां ऐसे ही नहीं बीतने देंगी ये शताब्दी, वे लड़कियां ऐसे ही नहीं बीतने देंगी ये शताब्दी, कल ही किसी के स्वप्न में आएंगी, कल ही किसी के स्वप्न में आएंगी, ये छह लड़कियां चिड़िया बनकर आएंगी और हरदम तिनके गिराती रहेंगी, छह लड़कियों के मरने से कोई ये न समझे कि उन्हें इतनी जल्दी जीत लिया गया है। विश्वनागर के प्रमुख कहानी संग्रह आज का दिन, कुछ दूर, आदमी की मुश्किल, आख्यान और ईश्वर की कहानियां हैं। उन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे जिनमें प्रमुख हैं हमें देखती आंखें, यथार्थ की माया, गरीब की भाषा, आदमी और समाज। उनका उपन्यास आदमी स्वर्ग में अपनी भाषा की गढ़न, गतिपूर्ण कथानक के कारण विशेष है। विष्णु नागर जी एक कुशल व्यंग्यकार थे। उनके प्रमुख व्यंग संग्रह हैं जीव जंतु और पुराण, घोड़ा और घास, राष्ट्रीय नाक, देश सेवा का धंधा, भारत एक बाजार है। उनके चुटीले व्यंग लेखन को उनकी लघु कविताओं में अक्सर देखा जाता है। न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक विसंगतियों पर उनके शब्दों का पैनापन देखना है तो उनकी कुछ लघु कविताओं को सुनिएगा आप। भुनगा न्याय मांगने गया, भुनगा न्याय मांगने गया, न्यायाधीश ने उसे मसल कर फेंक दिया, न्यायाधीश ने उसे मसल कर फेंक दिया और अगली बारी हाथी की थी, अगली बारी हाथी की थी। न्यायाधीश ने कहा, आपने कष्ट क्यों किया महाराज, न्याय तो खुद आपके घर के लिए निकल चुका है। इसी प्रकार फर्क शीर्षक से उनकी एक लघु कविता में देखिए आप, वे चाहते थे कि मैं बोलूं ही नहीं, वे चाहते थे कि मैं बोलूं ही नहीं और मैं चाहता था कि सिर्फ बोलूं ही नहीं। यूं तो उसमें और मुझमें सिर्फ एक शब्द का फर्क था, यूं तो उसमें और मुझमें सिर्फ एक शब्द का फर्क था, नहीं एक शब्द का क्यों फर्क ही फर्क था, नहीं एक शब्द का क्यों फर्क ही फर्क था। राजनीतिक विसंगतियों पर विष्णु नागर जी ने खूब लिखा और क्या खूब लिखा। लोकतंत्र शीर्षक उनकी लघु कविता आप देखिए, लोकतंत्र चूहे को सौंपो, लोकतंत्र चूहे को सौंपो तो वह रात भर में कुतर डालेगा, लोकतंत्र चूहे को सौंपो तो वह रात भर में कुतर डालेगा, बिल्ली को सौंपो तो उसे चूहा समझकर तुरंत निपटा देगी, गधे को सौंपो तो कहेगा, गधे को सौंपो तो कहेगा पीठ पर रख दो, जहां कहो वहां पहुंचा दूंगा। विकल्पहीनता के दौर में श्रेष्ठ विकल्प कहीं गधाई तो नहीं है, विकल्पहीनता के दौर में श्रेष्ठ विकल्प कहीं गधाई तो नहीं है। विष्णु नागर जी ने सहमत संस्था के लिए तीन संकलन तथा रघुवीर सहाय पर एक पुस्तक का कुशल संपादन किया। परसाई जी की चुनी हुई रचनाओं का संपादन भी उन्होंने किया। कादंबनी में प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण लेखकों द्वारा चयनित विश्व की कहानियों का संचयन बोलता लिहाफ उनके कुशल संपादन का जीवंत प्रमाण है। महिला अस्मिता, महिला सशक्तिकरण उनकी रचनाओं में प्रखर रूप से दिखाई देता है। विष्णु नागर जी कहते हैं कि स्त्री की तरह नहीं, स्त्री बनकर स्वयं को उनकी जगह रखकर देखो। पुरुष खुद को स्त्री की जगह स्वयं को रखकर कहाँ देखता है आज के समाज में। वो कहते हैं कि औरतों तुम रोया नहीं करो, औरतों तुम रोया नहीं करो, तुम इतना गाया करो कि रोना कभी आए ही नहीं, तुम इतना गाया करो कि रोना कभी आए ही नहीं। अधिकार और स्वतंत्रता दोनों पुरुष

0: और स्त्री की समान हों, वे दोनों मित्र हों, प्रतिद्वंदी न हों। वो कहते हैं कि साहित्य का सिर्फ एक काम है, जूझती मानवता के बारे में बात करना। आज विचारशील युवाओं का समाज में अभाव है। साहित्य और कला का यह भी कार्य है कि जड़ को चेतनता की ओर ले जाए और युवाओं में संघर्षशील प्रवृत्तियों को समाप्त कर रचनात्मक प्रवृत्तियों का सृजन करे। विष्णु नागर जी को साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान, साहित्यकार सम्मान, शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया है। कम शब्दों में बड़ी बात कह देना उनकी रचना कौशल को दिखाता है। सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं को बताती और उनका समाधान बताती, सोई हुई रूहों को जगाती उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उन्हीं के शब्दों को सुनिएगा, जो उड़ते हैं जरूरी नहीं पक्षी हों, जो उड़ते हैं जरूरी नहीं पक्षी हों, जो दो पांवों पर चलते हैं जरूरी नहीं कि आदमी हों, जो दो पांवों पर चलते हैं जरूरी नहीं कि आदमी हों। और इसे भी देखिएगा कि मैंने कितनों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया, मैंने कितनों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया, फिर मैं इस पर इतराया, फिर मैं इस पर इतराया कि ये मेरी अपनी आवाज़ है। विलक्षण क्षमताओं के धनी, सहज सरल लेखनी के धनी, कुशल लेखक, कुशल कथाकार, श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ व्यंग्यकार विष्णु नागर भारत में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के स्वर्णिम पृष्ठ हैं जो निरंतर समय और काल की परिधि से निकलकर अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को सिद्ध करते हैं। ऐसे हमारे विष्णु नागर जी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता के अंतर्गत डॉक्टर ममता सिंह द्वारा हिंदी साहित्य के अनूठे चितेरे विष्णु नागर पर ये वार्ता। श्रोताओं, आपको बताते चलें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शेरी नशिस्त, जिसके अंतर्गत प्रतिभागी होंगे जनाब ओम प्रकाश खरबंदा, जनाब परमवीर कौशिक, मोहतरमा मोनिका अरोड़ा, जनाब अमजद खान अमजद, और प्रस्तुत करता है डॉक्टर अनीता तितलियाल। श्रोताओं, साथ ही आपको बता दें कि आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात्रि 10:30 बजे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:10 हो रहे हैं। समय है एक विशेष कार्यक्रम का, सरकार के 12 साल।

0: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
1: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
0: जी।
1: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस को नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं होकर के स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो, जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
0: जी।
1: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
0: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव

0: मारा जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के DBT यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं। तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका। तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है, एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनील जी, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: पैक्स से अपेक्स का प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
2: क्रेडिट सोसाइटीज जी बिल्कुल। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में, अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं, इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
0: तो उनकी जरूरत
2: क्या है? ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सीक्रेट रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में

0: वहां तक चल के आ पाए। हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओस करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओस को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: So that collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past two decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000.

0: per ton. 95,000 means 9,500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees, just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार के वी प्रसाद व प्रभु दत्त मिश्रा. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
6: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र, समय समाचारों का.
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत. भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा. भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा. और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. एक रिपोर्ट.
8: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए. छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया. अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया. लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था. भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
7: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
9: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
7: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लिंक है टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा देश में उर्वरकों का भंडार

0: पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं

0: भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत सुनाने से पहले आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर शिव मंदिर के पास श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय में हम इस समय मौजूद हैं और हमारी मुलाकात हो रही है नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता जी से। राहुल गुप्ता जी पेशे से एक नाड़ी वैद्य हैं जिन्होंने BAMS किया है, MD किया है शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र से और गृह मंत्रालय से सम्मानित हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इन्हें सम्मानित किया है और बहुत से सामाजिक कार्य के लिए इन्हें बहुत से NGOs ने भी सम्मानित किया है, बहुत से अखबारों ने इन्हें इनके बारे में लिखा है और कई अंतरराष्ट्रीय चिकित्सीय सेमिनारों में इन्होंने अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, चिकित्सीय कार्य इनके कई शोध पत्र में प्रकाशित भी हो चुके हैं। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से युवा आयुर्वेद चिकित्सकों और छात्रों को ये मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। राहुल जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी सबसे पहले तो हमारे आम श्रोताओं की जानकारी के लिए बताइए कि एक नाड़ी वैद्य कौन होता है और नाड़ी वैद्य जो परंपरा है भारतीय चिकित्सीय पद्धति में उसका आज भी कितना महत्व है और लोगों को क्या जानने की जरूरत है।
1: धन्यवाद। नाड़ी परीक्षा जो है आयुर्वेद में रोग निदान करने की या रोग को जानने की बहुत पुरानी पद्धति है। इसमें बेसिकली कुछ एक लक्षण या कुछ एक व्याधियां जो रोगी चिकित्सक को बताने में असमर्थ रहता है या बताने में उसको मुश्किल होती है उसको जानने का एक तरीका नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है और इसी वजह से अभी आपको कुछ गिने चुने ही या कुछ बिरला ही थोड़े बहुत नाड़ी वैद्य देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि नाड़ी वैद्य बनने के लिए आपको सर्वप्रथम या सबसे पहले एक उचित नाड़ी वैद्य गुरु ढूंढना पड़ेगा और उसके सानिध्य में रह के उसके साथ साथ रह के नाड़ी परीक्षा सीखनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप वो नाड़ी परीक्षा सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको गुरु की अनुमति चाहिए रहती है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे आपने महाभारत का उदाहरण सुना होगा कि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र होते हुए भी वो उसे प्रयोग नहीं कर पाया था क्योंकि उसके गुरु का आदेश नहीं था। उसी तरह से नाड़ी परीक्षण करने के लिए आपको गुरु से आज्ञा या दीक्षा जरूर लेनी पड़ती है। मैं एक परंपरागत नाड़ी वैद्य हूँ जो नाथ नाड़ी संप्रदाय से आता है। हमारा जो आध्यात्मिक आश्रम है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, श्री विश्व पंडरी। वहाँ से मैंने अपना नाड़ी परीक्षण की दीक्षा प्राप्त करी है और श्री विश्व परंपरा चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत मैं ये अभी नाड़ी परीक्षा कर रहा हूँ।
0: नाड़ी परीक्षण का आज के समय में भारतीय पद्धति है, चिकित्सीय पद्धति है, उसमें कितना महत्वपूर्ण स्थान है और कितना रिलेवेंस है इसका आज के समय में और क्या युवाओं को जानना चाहिए?
1: नाड़ी परीक्षण अपने आप में एक संपूर्ण परीक्षण पद्धति है जिसमें रोगी के शारीरिक रोग के साथ साथ रोगी के आधिदैविक रोग जिसको आम भाषा में या उत्तराखंड की भाषा में भूत बाधा ग्रह बाधा इत्यादि जो जो रोग रहते हैं उनको जानने के लिए भी नाड़ी परीक्षण

0: अपने आप में सक्षम है। बहुत सारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा कि लोगों को कुछ झपट लग गई है, कुछ पकड़ लग गई है, या फिर ग्रह बाधा हो गई है, छल लग गया है। तो इन सब चीजों का भी जो ज्ञान है वो नाड़ी के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा जो शारीरिक रोग हैं उसमें दोषों की क्या स्थिति चल रही है और दोषों के हिसाब से रोग का निदान कैसे किया जाए, वो नाड़ी परीक्षण से करना बहुत आसान होता है। आज के परिपेक्ष में यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो चिकित्सक नाड़ी परीक्षण करने में असमर्थ हैं वो अमूमन मॉडर्न डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो भी रहता है उसका सहारा लेके रोग का निदान बनाते हैं और फिर उस पर आयुर्वेद चिकित्सा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि रोग आयुर्वेद का है तो आपको रोग परीक्षण के तरीके भी आयुर्वेद के ही अपनाने पड़ेंगे। आयुर्वेद निदान पद्धति से रोग का परीक्षण कर उसकी चिकित्सा करने पर रोग जल्दी ठीक होता है। और क्योंकि मैंने बोला कि इसमें एक आध्यात्मिक एंगल भी है, इस वजह से नाड़ी परीक्षण जो है एक संपूर्ण चिकित्सा के रूप में या एक संपूर्ण परीक्षण पद्धति के रूप में आधुनिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से श्रेष्ठ है।
1: तो इस एपिसोड को संपन्न करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नाड़ी वैद्य श्री राहुल गुप्ता से आप अगर कोई चिकित्सीय सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर 7895372936 पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

गीतकार वरुण ग्रोवर के इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने, स्वर पापों का, फिल्म थी दम लगा के हाइशा। आइए अब सुनते हैं गीतकार मजरूह के इस गीत को संगीतबद्ध किया SD बर्मन ने, फिल्म तीन देवियों से किशोर कुमार के स्वर में।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना था लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ के स्वर में, फिल्म थी सिंदूर। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। समय है कार्यक्रम शेरी नशिस्त का, जिसमें कि प्रतिभागी होंगे जनाब ओम प्रकाश खरबंदा, जनाब परमवीर कौशिक, मोहतरमा मोनिका अरोरा, जनाब अमजद खान अमजद, और प्रस्तुत करता है डॉक्टर अनीता तितलियाल।
2: आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होने पर भारत की पूरी आवाम और आकाशवाणी की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद। दोस्तों, आज का दिन वो दिन है जहां पूरा देश आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। आइए इस जश्न में आप भी शिरकत फरमाएं। आकाशवाणी देहरादून ने इस मौके पर शेरी नशिस्त मुनक्किद की है। हमारे साथ हैं अमजद खान अमजद, मोनिका मंतशा, आपका खाकसार परमवीर कौशिक, वरिष्ठ शायर अंबर खरबंदा साहब। दोस्तों, मैं पहले दावत सुखन दे रहा हूं अमजद खान अमजद साहब को इस शेर के साथ। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अमजद खान अमजद साहब।
3: दोस्तों आदाब, आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। गजल का मतलब मुलायजा फरमाए
4: जी इरशाद।
3: मेरे दिल पर अगर गम की घटा तारी नहीं होती, मेरे दिल पर अगर गम की घटा तारी नहीं होती, तो अपने आप से इस दर्जा बेजारी नहीं होती।
2: क्या कहने क्या कहने
3: बहुत शुक्रिया। तो अपने आप से इस दर्जा बेजारी नहीं होती, अमीरों को सताती है बहुत सर्दी भी गर्मी भी।
4: बिल्कुल,
3: अमीरों को सताती है बहुत सर्दी भी गर्मी भी, गरीबों को किसी मौसम में दुश्वारी नहीं होती।
2: क्या कहने,
3: अमीरों को सताती है बहुत सर्दी भी गर्मी भी, गरीबों को किसी मौसम में दुश्वारी नहीं होती। और ये शेर भी मुलाहजा फरमाए, मोहब्बत में वफा करना मेरी फितरत में शामिल है।
2: क्या कहने,
3: मोहब्बत में वफा करना मेरी फितरत में शामिल है, मैं करना भी अगर चाहूं तो गद्दारी
4: नहीं होती।
3: अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत में वफा करना मेरी फितरत में शामिल है।
4: खूब कह रहे हैं भाई।
3: मोहब्बत में वफा करना मेरी फितरत में शामिल है, मैं करना भी अगर चाहूं तो गद्दारी नहीं होती। इसी बाइस मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने।
4: इसी बाईस
3: मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने, गमों को पालना कोई समझदारी नहीं।

0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया,
1: बहुत
0: वाह
1: वाह
0: बहुत शुक्रिया। इसी बाईस मोहब्बत से किनारा कर लिया मैंने, गमों को पालना कोई समझदारी नहीं होती, हमारी ये खता है हम सभी से दिल से मिलते हैं, हमारी ये खता है हम सभी से दिल से मिलते हैं, जमाने की तरह हमसे अदाकारी
1: अरे
0: नहीं
1: वाह
0: होती।
1: वाह वाह वाह
0: होती
1: क्या
0: वाह
1: कहने,
0: वाह वाह
1: वाह
0: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत
0: हमारी ये खता है
1: बहुत
0: हम सभी से दिल से मिलते हैं, जमाने की तरह हमसे अदाकारी नहीं होती, अगर अमजद शरीके गम मेरे वो हो गए होते,
1: हाँ क्या बात,
0: अगर
1: क्या बात,
0: अमजद
1: शरीके गम
0: शरीके गम मेरे वो हो
1: हो
0: गए
1: गए
0: होते,
1: होते,
0: हयाते ना तवा पर ये घड़ी भारी नहीं
1: भारी
0: होती।
1: नहीं
0: क्या कहने
1: होती,
0: भाई,
1: क्या
0: वाह
1: कहने,
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: बहुत शुक्रिया। अगर
1: वाह
0: अमजद शरीके गम मेरे वो हो गए होते, हयाते ना तवा पर ये घड़ी भारी
1: भारी
0: नहीं
1: नहीं
0: होती,
1: होती,
0: हयाते ना तवा पर ये
1: क्या बात
0: घड़ी
1: है, क्या
0: भारी
1: बात
0: नहीं
1: है,
0: होती। बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: खूब बहुत
0: शुक्रिया।
1: खूब।
0: एक मतला और मुलायजा फरमाए, मशवरा मेरा ये है बार बार रहना है,
1: मशवरा
0: मशवरा
1: मेरा
0: मेरा
1: ये
0: ये है बार
1: बार बार
0: बार रहना
1: रहना
0: है,
1: है,
0: मशवरा मेरा ये है
1: बार बार रहना
0: बार बार रहना है, मतलबी जमाना है होशियार
1: होशियार,
0: रहना
1: क्या
0: है।
1: कहने हैं भाई,
0: क्या
1: वाह वाह वाह
0: क्या
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया,
1: जमाने का शेर, वक्त का
0: बहुत
1: शेर है
0: शुक्रिया,
1: साहब,
0: बहुत शुकरिया सर। मशवरा मेरा ये है बार बार रहना है, मतलबी जमाना है होशियार
1: होशियार
0: रहना
1: रहना, वाह
0: है, दिल के गोशे गोशे में उनकी याद बसती है।
1: क्या
0: क्या
1: बात,
0: दिल
1: दिल के
0: के गोशे
1: गोशे
0: गोशे
1: गोशे
0: में
1: में
0: उन
1: उनकी
0: उनकी
1: याद
0: याद बसती
1: बसती है,
0: है, दिल के गोशे गोशे को ताबदार रहना
1: वाह
0: है।
1: क्या कहने भाई,
0: ताबदार
1: वाह
0: रहना
1: भाई
0: वाह
1: क्या
0: वाह
1: खूब,
0: बहुत उम्दा,
1: क्या खूब,
0: क्या खूब
1: बहुत
0: लफ्ज़ का
1: उम्दा,
0: इस्तेमाल
1: वाह
0: किया
1: भाई,
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल के गोशे गोशे में उनकी याद बसती है, दिल के गोशे गोशे को ताबदार
1: क्या
0: रहना
1: बात है,
0: है। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए कि किस तरह सुकून आए, क्यों भला सुकून आए,
1: क्या
0: किस तरह
1: लाया
0: सुकून
1: सुकून
0: आए,
1: आए, क्यों
0: क्यों
1: क्यों
0: भला
1: भला
0: सुकून
1: सुकून आए,
0: आए,
1: वाह
0: आशिकों की किस्मत में बेकरार रहना
1: वाह क्या
0: है।
1: कहने हैं भाई,
0: भाई
1: बहुत उम्दा,
0: आशिकों
1: बहुत
0: की
1: सुंदर,
0: किस्मत में
1: बड़े सच्चे अशआर कह रहे हैं
0: बेकरार
1: उधर भाई,
0: रहना,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया। किस तरह सुकून आए, क्यों भला सुकून आए, आशिकों की किस्मत में बेकरार रहना है, और लाख ये फजा बदले लाख रुत मुखालिफ हो,
1: क्या बात, लाख
0: लाख
1: ये
0: ये
1: फजा
0: फजा बदले
1: बदले,
0: लाख रुत मुखालिफ हो, बन के हमको लोगों का गम गुसार रहना
1: गम
0: है। क्या
1: गुसार
0: कहने भाई,
1: रहना
0: वाह
1: है,
0: वाह
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया,
1: उम्दा शेर है
0: बहुत
1: साहब, वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह,
0: लाख ये फजा बदले लाख रुत मुखालिफ हो, बन के हमको लोगों का गम गुसार रहना है। और मक्ता मुलाजा फरमाए के
1: जी
0: वक्त
1: अता
0: के
1: कीजिए
0: बदलने का
1: जी,
0: तुम असर नहीं लेना, वक्त के बदलने का
1: तुम
0: तुम
1: असर
0: असर नहीं
1: नहीं लेना,
0: लेना, मुफलिसी में भी अमजद बावकार रहना है।
1: बाह
0: क्या कहने
1: कार
0: भाई,
1: रहना, बहुत
0: अरे
1: शानदार, क्या
0: वाह
1: वाह
0: वाह बहुत
1: वाह
0: शुक्रिया।
1: बहुत,
0: वक्त के बदलने का तुम असर
1: असर
0: नहीं
1: नहीं लेना,
0: लेना, मुफलिसी में भी अमजद बावकार
1: बाह
0: रहना
1: रहना,
0: है।
1: वाह वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अमजद खान, अमजद साहब को, अब मैं दावते सुखन दे रहा हूँ मोनिका मंतशा जी को इस शेर के साथ, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा,
0: क्या कहने,
1: वाह
0: वाह
1: वाह,
0: वाह
1: मोनिका मंतशा जी।
2: बहुत शुक्रिया कौशिक साहब, आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने की इस खुशनुमा घड़ी में अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए ये चार मिसरे हाजिर करती हूँ, समाप्त फरमाएं। तहजीब के चराग जलाए हैं चार सू,
1: तहजीब के
0: तहजीब के
1: चराग
0: चराग
1: जलाए हैं चार
2: तहजीब के
1: सू,
2: चराग जलाए हैं चार सू, आकाशवाणी मुल्क की धड़कन बनी सदा,
1: क्या बात, क्या
2: हर
1: बात, वाह,
2: दौर में यकीन का परचम लिए हुए,
1: वाह, क्या
2: हर
1: कहने,
2: दौर में यकीन का परचम
1: परचम
2: लिए
1: लिए
2: हुए,
1: हुए,
2: इसने अदब की दिल से हिफाजत करी सदा,
1: क्या
2: बहुत
0: बात
2: अच्छे,
0: है,
2: बहुत
0: हक अदा
2: शुक्रिया,
1: कर दिया,
2: बहुत
0: वाह वाह
2: शुक्रिया,
0: वाह
2: बहुत
0: वाह
2: शुक्रिया। और एक गजल तहत में
1: जी,
2: आप सबकी मोहब्बतों के
1: आता
2: हवाले
1: आता
2: करती
1: हो
2: हूँ,
0: आता
2: मतला समाप्त फरमाए।
1: जी, आता
2: समझदारी इसी में है दुआ से इश्क कर बैठे,
1: हाँ,
2: समझदारी इसी में है, दुआ से इश्क कर बैठे बुतों

0: को छोड़कर बंदा खुदा से इश्क कर बैठे।
1: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह।
0: बुतों को छोड़कर बंदा खुदा से इश्क कर बैठे। और हुस्ने मतला हाजिर करती हूँ। तलब थी जिंदगी की, तलब थी जिंदगी की, हम कजा से इश्क कर बैठे।
1: क्या बात है, वाह।
0: तलब थी जिंदगी की, हम कजा से इश्क कर बैठे, समझ कर बावफा एक बेवफा से इश्क कर बैठे। समझ कर, बहुत शुक्रिया, समझ कर बावफा एक बेवफा से इश्क कर बैठे। और शेर हाजिर करती हूँ कि सिवाय बेकरारी के न कुछ हासिल हुआ हमको। सिवाय बेकरारी के न कुछ हासिल हुआ हमको, न जाने किस लिए काफिर अदा से इश्क कर बैठे। न जाने किस लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, न जाने किस लिए काफिर अदा से इश्क कर बैठे। और एक ये शेर भी हाजिर करती हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी है, ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझसे इश्क है तुमको। ये मेरी खुश नसीबी है कि मुझसे इश्क है तुमको, मगर अफसोस है तुम किस बला से इश्क कर
1: बैठे। क्या कहने
0: हैं, मगर अफसोस है तुम किस बला से इश्क कर बैठे। बहुत इनायत, इस शेर को देखिएगा आप सबकी खास तवज्जो। लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका, लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका, गुलों से तितलियों से जो सबा से इश्क कर बैठे। गुलों से तितलियों से जो सबा से इश्क कर बैठे। बहुत शुक्रिया, बहुत ना। लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका, लगेगा किस तरह फिर शहर की गलियों में दिल उसका, गुलों से तितलियों से जो सबा से इश्क कर बैठे।
1: मोनिका जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि मोहब्बत का हमें कुछ जायका ऐसा पसंद आया, मोहब्बत का हमें कुछ जायका ऐसा पसंद आया, खता दर की खता हमने सजा से इश्क कर बैठे। खता दर की खता हमने सजा से इश्क कर बैठे। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ समाप्त। यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है, यकीनन मंतशा उस शख्स का फिर डूबना तय है, खुदा को भूलकर जो ना खुदा से इश्क कर बैठे। खुदा को भूलकर जो ना खुदा से इश्क कर बैठे। बहुत मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक गजल तरन्नुम में हाजिर करती हूँ, मतलब समाप्त।
2: इरशाद।

क्या बैठी है मेरी, शुक्रिया। ये जिंदगी जो मेरी बड़ी उलझनों में थी। और ये आखिरी शेर गजल का हाजिर करती हूँ, समाप्त फरमाए। हैरान

0: में थी।
1: बहुत शुक्रिया। और अब मैं दावते सुखन देना चाहूंगी जो अभी तक शानदार निजामत फरमा रहे थे, जनाब परमवीर कौशिक साहब। ये मिसरे उनके लिए पढ़ती हूँ। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। जनाब परमवीर कौशिक साहब।
2: मैं परमवीर कौशिक आकाशवाणी की तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आकाशवाणी को पूरा देश सुनता ही नहीं, महसूस भी करता है। आकाशवाणी को मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। आकाशवाणी शिक्षा से, कृषि से, रोजगार से, संस्कृति से श्रोताओं को दिल से जोड़ता है। यह नेटवर्क आज दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ
3: जी।
2: आहें नहीं भरते कभी शिकवा नहीं करते,
3: आहें नहीं भरते कभी शिकवा नहीं करते,
2: आहें नहीं भरते कभी शिकवा नहीं करते, आशिक हैं मगर यार को रुसवा नहीं करते।
3: क्या बात है, क्या बात।
2: आशिक हैं मगर यार को रुसवा नहीं करते। हम एक सी हालत में सदा रहते हैं कौशिक, हम भर भी अगर जाएं तो छलका नहीं करते।
3: क्या बात है, क्या बात है कौशिक।
2: हम भर भी अगर जाएं तो छलका नहीं करते।
3: बहुत अच्छा।
2: एक गजल
3: जी
2: पेश कर।
3: जी जी इरशाद
2: जी। कौन किसकी सुनता है आज के जमाने में, मोनिका जी।
0: वाह।
2: कौन किसकी सुनता है
4: आज के जमाने में,
2: पलकें भीग जाती हैं दर्द दिल छुपाने में।
4: बहुत अच्छे।
0: वाह।
2: पलकें भीग जाती हैं दर्द दिल छुपाने में, मेरे यार शामिल थे दिल मेरा दुखाने में।
3: मेरे यार शामिल थे,
2: मेरे यार शामिल थे दिल मेरा दुखाने में, आंसू खून के रोए मैंने मुस्कुराने में।
4: बहुत अच्छे। क्या कह

0: शुक्रिया शुक्रिया अमजद भाई। आंसू खून के रोए मैंने मुस्कुराने में, क्या करेंगे रोशन वो दूसरों की दुनिया को, क्या करेंगे रोशन वो दूसरों की दुनिया को, उंगलियां जला बैठे जो दिया जलाने में,
1: क्या कहने भाई,
0: उंगलियां जला बैठे जो दिया जलाने में। अमजद भाई
1: जी
0: शेर देखिए, मेरी कामयाबी पर कल जो तंज करते थे, मेरी कामयाबी पर कल जो तंज करते थे वो भी आज शामिल हैं तालियां बजाने में, वो भी आज शामिल हैं तालियां बजाने में। आप ही के दम से है कायनात में रौनक, आप ही के दम से है कायनात में रौनक, आप ही के दम से है कायनात में रौनक, आप सा नहीं कोई आज के जमाने में। शुक्रिया शुक्रिया। जो तेरी अमानत है गैर को नहीं बख्शी, जो तेरी अमानत है गैर को नहीं बख्शी, सिर्फ तुझको रखा है दिल के शामियाने में। सिर्फ तुझको रखा है दिल के शामियाने में। मक्ता देखिए सर
2: जी,
0: अपनी अपनी मंजिल पर सारे लोग जा पहुंचे, अमजद भाई अपनी अपनी मंजिल पर सारे लोग जा पहुंचे, हम ही रह गए कौशिक रास्ता बताने में। हम ही रह गए कौशिक रास्ता बताने में।
1: बहुत अच्छे।
0: उसको भी मेरी तरह परेशान कर गई,
2: उसको भी मेरी तरह,
0: उसको भी मेरी तरह परेशान कर गई, कैसे कहूं कि दिल की तड़प बेअसर गई।
1: अच्छा वाह,
3: बहुत खूब।
0: उसको भी मेरी तरह परेशान कर गई,
2: कैसे
0: कहूं कि दिल की तड़प बेअसर गई, उसको किसी चमन की बहारों से क्या गरज। मोनिका जी, उसको किसी चमन की बहारों से क्या गरज, जिसकी तमाम उम्र कफस में गुजर गई, जिसकी तमाम उम्र कफस में गुजर गई। और दोस्तों एक नज्म पेश कर रहा हूँ जिसका उनवान है इल्तजा। अजंता की मूरत हो या अप्सरा हो, अजंता की मूरत हो या अप्सरा हो, कोई हूर हो या कि तुम जलपरी हो, ये लगता है ख्वाबों की दुनिया से चलकर हकीकत की दुनिया में तुम आ गई हो, ये लगता है ख्वाबों की दुनिया से चलकर हकीकत की दुनिया में तुम आ गई हो, ये जुल्फें ये आंखें ये सूरत तुम्हारी दीवाना बना देगी मुझको यकीन है, बहुत खूबसूरत है दुनिया में लेकिन तुम्हारी तरह और कोई नहीं है, कहीं चांदनी देख कर जल न जाए, ये चेहरे से आंचल हटाया न कीजिए, मुझे दिल पे दिलदार काबू नहीं है, मुझे देखकर मुस्कुराया न कीजिए, ये शोखी शरारत ये दिलकश अदाएं, ये शोखी शरारत ये दिलकश अदाएं, ये सारे ही अंदाज हैं दिलबरी के, इजाजत अगर दो तो बाहों में भरकर करूं पूरे अरमान मैं जिंदगी के, करूं पूरे अरमान मैं जिंदगी के, जो मिल जाए मुझको मोहब्बत तुम्हारी, मेरी मुश्किलों का समाधान हो जा, हटा लूं मैं हर एक तरफ से निगाहें, तुम्हारी तरफ बस मेरा ध्यान हो जा, मेरी तुमसे बस एक यही इल्तजा है, निगाहों में मुझको जगा दीजिएगा, बसाकर मोहब्बत मेरी अपने दिल में, मेरे दिल की दुनिया बसा दीजिएगा, कभी बेझिझक और नजदीक आकर मोहब्बत की दुनिया को पुरनूर कर दो, अभी तक है गुमनाम कौशिक तुम्हारा, इसे तुम जमाने में मशहूर कर दो, इसे तुम जमाने में मशहूर कर दो। शुक्रिया दोस्तों मैं अब आपके सामने मोहतरम अंबर खरबंदा साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ इस शेर के साथ। गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, गजल का ताज तो सर पर जरूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है।
1: क्या कहने हैं
0: अंबर खरबंदा साहब।
2: शुक्रिया कौशिक साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों 1936 से शुरू हुआ आकाशवाणी का ये 90 बरस का बामानी सफर, इसके लिए मैं तमाम सामईन को जो आज तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और आकाशवाणी की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए चंद अशार पेश करने की इजाज़त आप हजरात से चाहता हूँ। चंद मसारी, जबां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है।

0: खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। यही एक जुर्म है ऐ मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आंखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू
1: बोलता,
0: उसी दिन से मैं खुश रंगिए। ये भी तारुफन चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि खुश रंगिए अंदाजे बयां सीख रहा हूँ। मोनिका जी, खुश रंगिए अंदाजे बयां सीख रहा हूँ। तहजीब व तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, और हर समत से आती है मुअत्तर सी हवाएं, जिस रोज से मैं उर्दू जबान सीख रहा हूँ।
2: क्या कहने,
0: जिस रोज से मैं, जिस रोज से मैं खुशरंगीये अंदाजे बयां सीख रहा हूँ। तहजीब व तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, हर समत से आती है मुअत्तर सी हवाएं, जिस रोज से मैं उर्दू जबान सीख रहा हूँ। गजल की इजाजत दीजिए दोस्तों। मतलब यूं है कि सारे फितूर व फितने उठाने के बावजूद तुम उठ सके ना मुझको गिराने के बावजूद, तुम उठ सके ना मुझको गिराने के बावजूद। और शेर देखें कि आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे, आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे, महफिल में रोज हंसने हंसाने के बावजूद।
2: क्या कहने, क्या कहने,
0: आंखों में तैर जाते हैं कुछ दर्द अनकहे, महफिल में रोज हंसने हंसाने के बावजूद। और शेरियों है कि यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है, यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है। आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद, यादों का एक हुजूम मेरे दिल के पास है। आ ही गए हैं आप ना आने के बावजूद, और मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ, मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद, मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ, मेरा उसे न होना था मेरा नहीं हुआ। नस नस में खून बन के समाने के बावजूद। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कुछ अलग अंदाज में हो गया, वो भी बर्दाश्त करें आप, कि यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन, यादों से मेरी बच नहीं पाओगे जाने मन, सारे खतूत मेरे जलाने के बावजूद।
2: क्या कहने, क्या
0: सारे खतूत मेरे जलाने के बावजूद। गजल यूं कहता हूं कि मतलब है कि वक्त कहता है संभल जाओ कहीं ऐसा ना हो, वक्त कहता है संभल जाओ कहीं ऐसा ना हो, वो भी हो जाए कभी जो आपने सोचा ना हो। वक्त कहता है संभल जाओ कहीं ऐसा ना हो, वो भी हो जाए कभी जो आपने सोचा ना हो। और दिल की हर दीवार पर चिपकी हैं यूं खामोशियां, दिल की हर दीवार पर, शुक्रिया, दिल की हर दीवार पर चिपकी हैं यूं खामोशियां, एक मुद्दत से यहाँ जैसे कोई रहता न हो। गौर फरमाइए शेर पर कि आज भी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है मगर, आज भी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है मगर, शर्त इतनी है तुम्हारी आंख में जाला ना हो। आज भी दुनिया बड़ी ही खूबसूरत है मगर, शर्त इतनी है तुम्हारी आंख में जाला ना हो। और शेर देखें, अब भी उठते हैं मेरे बारे में रह रह कर सवाल, जैसे मुझको दोस्तों तुमने कभी परखा न हो।
2: क्या कहने,
0: जैसे मुझको दोस्तों तुमने कभी परखा न हो। ये शेर भी मोनिका साहिबा, शेर सुनिएगा अमजद भाई। थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वही, थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वही, हाँ ये मुमकिन है कि तुमने गौर से देखा ना। थी गमों की भीड़, थी गमों की भीड़ लेकिन एक खुशी भी थी वही, हाँ ये मुमकिन है कि तुमने गौर से देखा ना हो। मेरा जाती ख्याल है, मैंने इस शेर में बयान किया है कि दोस्तों हालात का तुमसे तकाजा है यही, दोस्तों हालात का तुमसे तकाजा है यही, अब गजल में जुल्फ का रुखसार का चर्चा ना। अब गजल में दोस्तों हालात का तुमसे तकाजा है यही, अब गजल में जुल्फ का रुखसार का चर्चा न हो। मख्ता यूं कहता हूं कि मैं इन्हीं बातों में अंबर उम्र भर उलझा रहा, मैं इन्हीं बातों में अंबर
2: उम्र भर
0: उलझा रहा, ये ना हो वो भी ना हो।

0: ऐसा न हो वैसा न हो,
1: हाँ
0: ये
1: भाई
0: न
1: वाह
0: हो
1: वाह
0: वो
1: वाह
0: भी ना
1: वाह
0: हो,
1: बढ़िया
0: ऐसा
1: बहुत
0: न
1: बढ़िया
0: हो
1: बहुत
0: वैसा
1: बढ़िया
0: न हो।
1: अच्छे वाह वाह वाह
2: बहुत बढ़िया
3: दोस्तों,
2: वाह वाह
3: अभी हम लोग सुन रहे थे अमजद खान अमजद साहब को, मोनिका मंतशा जी को, खरबंदा साहब को, और ये नशिस्त आज यहीं इख्तिताम पजीर की जाती है। शुक्रिया।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेरी नशिस्त FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपकी फरमाइश। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जो कि बनता है आप सभी की फरमाइशी गीतों से। और आप सबके साथ जुड़ रही हूँ आज मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता शर्मा। श्रोताओं, जो हमारे लिसनर्स जुड़ते रहते हैं हमारे साथ, उनको तो पता है और उनकी व्हाट्सएप के द्वारा हम तक फरमाइशें आनी शुरू हो चुकी हैं। और जो नए जुड़ रहे हैं उनको बताते चलें कि 7088-0007-31 इस पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपनी पसंद के गीत और अपने दोस्तों के नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आनी शुरू हो चुकी हैं, तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहले गीत की फरमाइश कर रहे हैं हमारे श्रोता, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, आरती रतूरी अमित, उनके साथ में उनके पति अमित। और उनका कहना है कि उनकी एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया है जो उनके साथ इस गीत को सुनना चाहेगी। तो जी हाँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अवश्य सुनिए इस गीत को। और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो हैं वो हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रज्वल राय। इनके साथ ही जुड़ रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप सभी सुनना चाह रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल से किशोर कुमार के स्वर में इस गीत को, तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार के इस गीत के साथ।

अगले गीत के फरमाइशकर्ता वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान, मास्टर अजहर खान, आजम खान, इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, और साथ जुड़ रहे हैं मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसिद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनब अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदर राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, और इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं हमारे साथ राजेश्वरी सागर और अधिकारी निवास मिलान विहार जीएमएस रोड देहरादून से, और इनके साथ ही जुड़ रहे हैं माल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहिब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर दिव्यम जैन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लोफर से लता मंगेशकर के स्वर में।

बधाइयाँ दे रहे हैं। आप सभी इस बधाई के पात्र हैं हमारे श्रोताओं, आप सब हैं और इसीलिए आकाशवाणी है। आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। फरमाइश करने वाले श्रोता जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनके साथ ही साथ जो हमारे साथ जुड़ने वाले श्रोता हैं कस्बा चिलकाना से नदीम अंसारी, आयशा नदीम, अजीम शान, आलिया अंसारी, अरहम अंसारी और साथ ही गांव कुम्हारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और साथ ही जुड़ने वाले श्रोता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं राजेश्वरी सागर और अधिकारी निवास मिलन विहार जी एम एस रोड से, साथ ही वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा, इनके साथ ही मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म संगम से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में इस गीत को।

अगले गीत की फरमाइश करता है गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज़िश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव। इनके साथ ही येलांदू कोटागुडम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना चिन्नापासी, सुनीता राज, भानुराज, अमित खन्ना आमी, प्यारा बिल्लू। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि ब्लड डोनेशन इज़ नोबल एक्ट टू सेव समवन्स लाइफ। जी हाँ, और साथ ही जुड़ने वाले श्रोता छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े। और साथ ही जुड़ रहे हैं श्रोता व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल। और इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। और साथ ही जुड़ रहे हैं राहत गव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुचिका रामेकर और उनका पूरा रामेकर परिवार। और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। और इनके साथ ही साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ नूरनगर गंज डंडवारा से उज्मा शेख, शिफा शेख, शिफा शेख और रिफा शेख। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हम सफ़र से आशा भोसले के स्वर में इस गीत को।

परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। इनके साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता हैं गांव व डाकघर नीमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर। साथ ही इनके जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ रहे हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से, आप तो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑलरेडी आपका नाम हम ले चुके हैं और बार बार फिर ऐसे सही नहीं रहता है ना। तो छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। और इनके साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ते हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और इनके साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि जुड़ रहे हैं सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। और साथ ही जुड़ने वाले हमारे श्रोता जो कि हैं तारा दत्त जोशी हल्द्वानी से, जी हाँ आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर। और साथ ही जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलियस डिकेस्ट्रो, आइए आप सभी की फरमाइश पर। और साथ ही साथ किशन वंजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन, किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत।

दिनेशपुर गंजनवाड़ा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, तो श्वेता शर्मा को आप इस गीत के बाद देंगे।

0: के साथ ही फिल्म आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और PM स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने

के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।